सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन ज्योति पथ, वाचन मनोज कुमार सिन्हा।
1: ज्योति पथ के पथिक, तू है सूर्य का ही वंश, जो जगत का सत्य तू उसका सनातन अंश। देव दानव दो तटों के बीच का तू सेतु, दिव्यता की प्राप्ति ही मानव जन्म का हेतु।

0: देव और दानव दो कोटियों में शास्त्रों ने समाज को बांटा है। देव जो दिव्यता से विभूषित और दानव जो तमस से अभिभूत हैं। मानव को देव और दानव के बीच का सेतु कहा गया है। देवत्व प्रकाश पथ के प्रतीक हैं और दानवत्व अंधकार पथ के। सत, रज और तम इन्हीं तीन गुणों से संसार विनिर्मित है। किसी में सतोगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की, तो किसी में तमोगुण की। गीता के अनुसार उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी स्वर्ग अथवा परम सुख शांति और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। रजोगुणी बीच की अवस्था में प्रतिष्ठित होते हैं तथा जघन्य गुण कर्म के कारण तमोगुणी को अंधकार में नरकादि लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक ओर प्रकाश या देवत्व का मार्ग और दूसरी ओर अंधकार या दानवत्व का मार्ग है। प्रकाश मार्ग या ज्योति पथ सत्य और अमरत्व का मार्ग है। अंधकार का मार्ग ही तमस, मृत्यु और क्लेश का रास्ता है। उपनिषदकारों के अनुसार अंध तमस प्रविशन्ति ये विद्या मुपास्ते। जो अज्ञानी जन अविद्या अथवा लौकिक भोगादि और ऐहिक सुख को जीवन का ध्येय बनाते हैं, वे ही अंधकार में तमस लोक में प्रविष्ट होकर अनेक दुस्सह क्लेशों से पीड़ित होते हैं। जो विद्या अथवा सत्य का मार्ग अपनाते हैं, वे ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। साविद्या या विमुक्तय विद्या मुक्ति प्रदान करती है। विद्या सत्यानुगामिनी और प्रकाश मार्ग की ओर ले जाने वाली होती है। अविद्या अथवा सांसारिक भोगादि वृत्ति अंधकार, मृत्यु और क्लेश दायिनी होती है। मनुष्य विद्या, अविद्या, प्रकाश और अंधकार, देवत्व और दानत्व के दो विपरीत दोराहे पर खड़ा है। यदि मनुष्य एक बार ये जान ले, अनुभव कर ले कि सचमुच वो ईश्वर का अंश है, उसका निज स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा से अभिन्न है, तो वो स्वतः सत्य, अमरत्व और देवत्व तथा उससे भी ऊंचा ईश्वरत्व के प्रकाशपूर्ण मार्ग पर चल पड़ेगा और स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त कर सांसारिक दुख दावाग्नि से सर्वदा के लिए मुक्त होकर परम सुख, परम शांति, परम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन ज्योतिपथ। वाचन स्वर मनोज कुमार सिन्हा का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है मक्के के कीट और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। मक्का एक महत्वपूर्ण फसल है। तीनों मौसम में इसकी खेती कमोबेश की जाती है। क्षेत्रवार अलग अलग समय पर ये इसकी बुआई होती है। मक्का का उपयोग भी अनेक है, खाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, मुर्गियों का दाना बनाने के लिए और इथेनॉल बनाने के लिए प्रमुख है। मक्का के दाने जो हैं प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। तो जब आप मक्का की खेती करते हैं तो उसमें अनेक तरह के रोग लग जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, अनेक समस्याएं हो जाती हैं। तो कीड़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब मक्का के पौधे को आप बोते हैं

0: तो उसमें दीमक कीड़ा लगता है। दीमक कीड़ा, जिसे आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिट्टी में रहता है और ये अंकुरित होने वाले पौधे को ही काट देता है। उस समय आपको काफ़ी नुकसान होता है। जैसे आप बुआई करते हैं, कुछ दिनों के अंदर जब पौधे उगने लगते हैं, उस समय आपके खेत में पौधे कटे हुए मिलते हैं। कुछ बड़े पौधे होते हैं, उन्हें भी ये काट देता है, जड़ों को नुकसान करता है। तो इसके लिए आप जब जुताई कर रहे हैं बुआई के लिए, उस समय खेत में नीम की खल्ली या करंज की खल्ली मिला दें। इससे जो है ये कीड़ा नहीं लगता है, खेत में आता ही नहीं है। उसके बाद तना छेदक कीड़ा भी लगता है। इसके शिशु तना में छेद करके उसमें आंतरिक भाग को खा जाते हैं, इसलिए तना का अग्रभाग जो है, ऊपर का भाग जो होता है, वो मुरझा जाता है। यदि आप उसे तोड़ें तो एक तरह की गंध आती है, और जब इसका आक्रमण होता है तो मक्का के धड़ में छेद मिलते हैं, वहाँ पर कुछ गंदे पदार्थ भी जमा रहते हैं जिनसे महक आती है। तो इस तरह का कोई भी कीड़ा आपके खेत में आक्रमण कर रहा हो, इस तरह की स्थिति यदि आपके मक्का के पौधे पर दिखाई दे रही हो, तो आप समझें कि ये तना बेधक कीड़ा लगा है। इसके लिए कुछ प्रयोग आपको करने होंगे, कुछ दवाओं का प्रयोग करें, जिसमें कि अंकुरण के 2 सप्ताह बाद लेमडा साय हेलोथ्रीन दवा जो है, 5 EC दवा है, 250 मिलीलीटर दवा, आप 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कीड़ा है वो है फॉल आर्मी वर्म। ये कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, फॉल आर्मी वर्म, आपके क्षेत्र में, कोसी बेल्ट में इसका बहुत ही आक्रमण होता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। शुरू की अवस्था में पिल्लू समूह में पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, फिर तने में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्तियों के निकलने के समय या जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पर बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पिल्लू बढ़ते जाते हैं वे पत्तियों को काट कर खा जाते हैं और वहाँ पर मल भी उनका दिखाई देता है, गंदा पदार्थ वहाँ पर जमा रहता है। भुट्टा जब लगता है उस समय भी भुट्टे को बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो है उसका आप प्रयोग करें, 1 हेक्टेयर खेत में 10 फेरोमोन ट्रैप जो है वो लगा दें। उसमें जो है पिल्लू फंस जाते हैं और उन्हें आप पकड़ करके नष्ट कर सकते हैं। नीम आधारित दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या इमामे क्विटीन बेंजोएट 5 SG दवा जो है वो 2 ग्राम दवा 5 लीटर पानी में घोल बनावें और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के कीट जो हैं मक्का में लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उनसे नुकसान होता है, उनसे आपको फसल बचाना आवश्यक होता है। कभी कभी किसान भाई ये सोचते हैं कि हम यदि घनी बुआई करेंगे मक्का की, नज़दीक नज़दीक बुआई करेंगे तो उससे उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन जब कीट लगने की स्थिति होती है, कीड़ा लगने की स्थिति होती है, तो ये जो है कंसेप्ट आपका फेल हो जाता है। इससे आपको नुकसान होता है, क्योंकि नज़दीक नज़दीक यदि पौधे रहेंगे तो जल्दी कीड़े एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल जाते हैं और इससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप मक्का के कीटों की पहचान करें और उसके अनुसार उपाय करके उनका नियंत्रण करें।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था मक्के के कीट और वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथेन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

हरि ओम शरण के आवाज में आप ये भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम में अगला भजन सुनिए, सुखविंदर सिंह सोनू निगम और साथियों की आवाज में।

इस शब्द के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

0: अभिभावक यह महसूस करते हैं कि उसे दस्त हो रहा है, यानी जो कल शौच कर रहा था और आज के शौच में परिवर्तन है, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है या बार बार ज्यादा हो रहा है, वैसी स्थिति में ORS का प्रयोग जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। और ORS फ्रीली हमारे सभी आशा बहनों के पास और स्वास्थ्य केंद्रों पर ANM बहनों के पास भी उपलब्ध है, और आशा किट के द्वारा भी हम लोग सप्लाई कराते हैं कि ORS की उपलब्धता क्षेत्र में सुनिश्चित की जा सके। तो ये ORS का कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में देना है, यह ज्ञान होना आवश्यक होता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो ORS पैकेट सरकारी तंत्र के अंदर आपूर्ति की जा रही है, उसे साफ और स्वच्छ बर्तन में साफ पानी में 1 लीटर में एक पैकेट को घोलते हैं। पूरा का पूरा पैकेट 1 लीटर हम घोलते हैं और यह घोल सामान्य तापमान पर भी 12 घंटे तक खराब नहीं होता है। इसे आराम से हम प्रयोग कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों को कम देना है, 2 महीने से नीचे के अगर बच्चे हैं तो हम 5 चम्मच तक ORS दे सकते हैं उनके हर 10 के बाद। बड़े बच्चे हैं तो उनको एक चौथाई से लेकर के आधा गिलास तक दे सकते हैं 2 साल तक के बच्चों को, और जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं 10 साल तक के, उनको 1 गिलास तक हम भी आधा गिलास से लेकर 1 गिलास तक दे सकते हैं 1 बार 10 के बाद। तो ये सबसे बड़ा कदम है कि ORS का प्रयोग जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसकी जागरूकता हम जनता में आवश्यक है। कभी कभी अगर उपलब्ध नहीं है ORS हमारे पास तो हम घर पर भी उससे मिलता जुलता बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में 200 ग्राम पानी में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम के आसपास चीनी लेते हैं और 1 चुटकी 2 या 3 उंगली का चुटकी जो बनता है उसमें जो नमक थोड़ा सा उठे उस नमक को, तो ये आवश्यक कदम होता है कि सबसे पहला जरूरी है बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना, यानी उसके अंदर जो पानी की इलेक्ट्रोलाइट्स की शुगर की कमी हुई है उससे उसको बचाया जाए, और अपने से कोई दवा या इलाज न शुरू करें, तुरंत आशा बहन से मिलें। क्षेत्र में आशा बहने हैं, ANM है या स्वास्थ्य उपकेंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन जगहों पर बच्चे को जरूर दिखाएं ताकि उनको बच्चे के देखभाल में और क्या कदम उठाने हैं वो सही से बताया जा सके। मैं यहाँ चाहूंगा कि कुछ और कदम भी बता ही दूं।
1: जी जरूर,
0: ताकि लोगों में यह जागरूकता आ जाए। डायरिया के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा पहले बचाव की पार्ट है, बचाव का हिस्सा है कि अगर बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान पर रखा जाए तो उसे डायरिया होने का कोई चांस नहीं। हम बाहर से जब उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, माँ का दूध दे रहे हैं, तो वह माँ का दूध उसके मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ ही रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी इसके अंदर होती है और कोई मिलावट का कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाए कि माताएं निसंकोच ये ना समझे कि हम कुपोषित हैं या हमको कम भोजन मिल रहा है या हमको कम लगता है दूध हो रहा है। वो 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तन पान कराएं, जितनी बार स्तन पान कराएंगी उतना ज्यादा दूध निकलेगा। स्तन पान कराने की संख्या के ऊपर वह निर्भर करता है, चाहे माँ की पोषण की स्थिति कुछ भी हो। पहला कदम ये है। दूसरा कदम है कि 6 माह पूरा होने पर हम यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार शुरू करते हैं, और वह पूरक आहार 6 माह के बाद आवश्यक है, उसकी मात्रा उम्र के अनुसार धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ भी बंद नहीं किया जाता है, और कम से कम 2 साल तक अगर बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं इस ऊपरी पोषक आहार के साथ, तो उस बच्चे का इम्यूनिटी इतना डेवलप रहता है कि वह डायरिया से बचा हुआ रहता है। तीसरा है बॉटल फीडिंग, जो छोटे बच्चों में कई बार हम अपनी व्यस्तता के कारण या शौक से भी कि हम अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं, बॉटल फीडिंग शुरू की जाती है बच्चों में, जो कि बहुत ही हानिकारक है। और उसको स्वच्छ रखना, स्टरलाइज रखना उस निपल और बॉटल को एकदम असंभव सा है, उसमें वो हम बीमारियों को डायरिया को भी बुलावा दे रहे हैं, तो उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ जब भी बच्चे को खिलाएं तो अपना हाथ साफ करने के बाद, और बच्चा अगर बड़ा हो गया है कभी भोजन में हाथ मारने लायक की उम्र में, तो उसका भी हाथ जरूर साफ करें। और अपना शौच करने के बाद, बच्चे का शौच साफ करने के बाद जरूर हाथ की सफाई रखें, भोजन बनाने से पहले हाथ साफ रखें। कई बार बच्चे शौचालय से बाहर भी शौच कर देते हैं, खासकर छोटे बच्चे, तो उन बच्चों का शौच का डिस्पोजल क्विक होना चाहिए, जल्दी से उसको हम बाथरूम ले जाकर, शौचालय ले जाकर

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है डायरिया या दस्त में ओआरएस का प्रयोग। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विजय प्रकाश राय से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय। आप राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य हैं। आज हम बातचीत करेंगे डायरिया अथवा दस्त होने पर ओआरएस का प्रयोग कैसे करें तथा अन्य सावधानियां।
2: बेसिक संदेश यही है कि जब

0: इसको डिस्पोज करें और जल्द से जल्द पुनः हाथ को साफ कर लें।
1: जी, डॉक्टर विजय प्रकाश राय, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य, आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और दस्त के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू करवाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय था डायरिया या दस्त में ORS का प्रयोग। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय प्रकाश राय से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

0: अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित। 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक का प्रसारण होगा सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन राग तोड़ी। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किरकारी का प्रसारण समय होगा दिन के 10:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे दिन के 10:55 पर। कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12:01 पर। कार्यक्रम रूपक का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवानी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। आईसीसी विमेंस क्रिकेट T20 के वर्ल्ड कप 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्यान्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात्

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदाई ओकीमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोता मित्र, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 28 जून है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब आपको बताते हैं आज और किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिवस है। मरियप्पन थंगावेलु, जो कि भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, इनका जन्म 28 जून 1995 ईस्वी को हुआ था। हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्त का जन्मदिवस भी आज ही है। इनका जन्म 28 जून 1883 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव

का जन्म 28 जून 1921 ईस्वी को हुआ था। जसपाल राणा, जो कि भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उनका जन्म 28 जून 1976 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम में अब जानते हैं आज के दिन का इतिहास और देखते हैं क्या छुपा है आज के इतिहास में। 28 जून 1999 ईस्वी को रोमानिया ने अपनी वायुसेना में रूसी विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। 28 जून 2004 ईस्वी को अमेरिकी गठबंधन की सेना ने इराक की अंतरिम सरकार को संप्रभुता सौंपी। 28 जून 2007 ईस्वी को जाफना के पूर्व प्रधानमंत्री किची मिया जावा का निधन हुआ। 28 जून 2008 ईस्वी को बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक TS नारायण स्वामी को इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। 28 जून 2008 ईस्वी को वेतन आयोग ने पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारियों को 8 जनवरी 2008 को मूल वेतन पर 30% की अंतरिम राहत देने की सिफारिश की थी।

28 जून 2008 ईस्वी को लंदन में एक समारोह में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कुइयां जान के लिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारा हालचाल का आज का अंक अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक सबसे पहले सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

अलीशा चिनॉय की आवाज़ में गाए हुए इस पॉप म्यूज़िक के साथ ही पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन, राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन राग तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गई। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी

0: इसका उल्लेख किया। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ में मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का

0: प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Naresh. News about Prime Minister Narendra Modi's Seychelles visit figure prominently on the front pages of newspapers this morning. The Times of India carries a picture of PM Modi feeding a 194-year-old giant tortoise, Jonathan, considered the world's oldest living land animal, during his visit to the National Botanical Garden there. The Ram Temple Trust has confirmed that its General Secretary Champat Rai and member Anil Mishra have tendered their resignations amid allegations of irregularities in donations, reports in the Star Times. Iran-US trade, fresh attacks in worst escalation post-deal, writes the Financial Express, adding that each side says the other is violating the interim ceasefire. Under the headline, How Schools Breach Children's Data Privacy, the Economic Times reports that photos and videos of school children are posted on school websites and social media feeds without parental consent, potentially violating DPDP Act, exposing kids to online abuse and risks. In its editorial, captioned Plutocracy Gone Crazy, the Statesman writes that artificial intelligence has already taken away entry-level accounting, customer service, reporting and administrative support jobs. Significantly, in the first 10 months of 2025, AI was responsible for 11 lakh layoffs in the US tech sector. The paper adds that Anthropic, the present leader in AI technology, has called for stricter regulation of AI, warning of joblessness and even creation of bioweapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today, to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. U.S. military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ारत-ए-खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमेरिकी फौज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदांबी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकत दारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैन अल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: وزیر اعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے. بعد میں وزیر اعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا. وزیر اعظم نریندر مودی سیشل

0: के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवीत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरका अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने 3 रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हेरमनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तला-ओ नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू ना करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किलात का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
1: उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 बरसों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नज़र की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजे से जामे सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अव्वलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक़दा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे, जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया।

0: था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और ये कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह की गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्ख करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर जरूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वक़ार को भी मुतासिर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की इशात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के फौजी निगरानी के निजाम, मौसलाती निजाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई जुमे के रोज एक तजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी फोर्सेज ने कीकुनामी तेल बर्दार जहाज पर एकतरफा ड्रोन से हमला किया। ये जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीकू ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि आबनए हुरमुज के शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के 3 दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला के जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुन विसिस ने इतला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में आया जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरस गई और ढांचा जाती नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासरा इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं जबकि फुन विसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाति कानून मुतारिफ कराएगी ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदेही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग सेंटर में हिफाजती इंतजामात में कोई कोताही या लापरवाही हो तो वो इसकी इतला ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए हुकूमत को दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कारपोरेशन चलाती है जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े

0: प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
1: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ में मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई ओकी मोतो को

0: अधिक हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: इस बातचीत को आप 101.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार।
3: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहाइश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
2: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, तकनीक ने हमारे पढ़ने लिखने के ढंग को पूरी तरह बदल दिया है। आज का लेखक
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
8: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
9: RBI कहता है,
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
12: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
11: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राजस्व सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड की टेटिया पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत समेत सुशासन युक्त पंचायत का लक्ष्य हासिल करना भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण भी सुना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। श्रद्धालुओं को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो। इस बीच 20 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा के रास्ते चीन में प्रवेश कर गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे निर्देश में कहा है कि डिग्री की छपाई और उनके वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लंबित डिग्रियों को अभियान चलाकर वितरित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियों को छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाए।

0: राज्य सरकार ने जमीन मापी की नई दर तय की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा ₹1,000 तथा अधिकतम ₹4,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹2,000 और अधिकतम ₹8,000 शुल्क देना होगा। विभाग ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सामान्य मापी का शुल्क प्रति खेसरा ₹2,000 तथा अधिकतम ₹8,000 तय किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹4,000 और अधिकतम ₹18,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही अमीन को आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर मापी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि MSMI क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। इस अवसर पर MSMI मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से MSMI क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
1: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSMI को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और पुस्तकों का भी विमोचन किया। बिहार पुलिस ने स्पेशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट अपलोड करने वाले 128 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सोशल मीडिया हैंडल, आईडी और चैनलों को हटाया गया है। पुलिस ने कहा है कि आम जनता की जागरूकता और सहभागिता से फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में 544 केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 993 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। परिषद ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ई प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा विशेष ट्रेन चला रहा है। गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत कर

0: करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
1: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा, आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे। और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों पर अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाती है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति नियमित बनी रहेगी। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सिवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मधेपुरा के पुरैनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थान पर हल्की बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बेतिया SDPO रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव में SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 11,25,606 सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लक्ष्य का लगभग 96% है। पटना जंक्शन से रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ठगी करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग नकली नोटों का बंडल दिखाकर यात्रियों को ठगते थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से दरभंगा के रहने वाले कृष्णा राय उर्फ शान को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे शहजाद भट्टी को संवेदनशील जानकारी भेजता था। वो पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शहजाद भट्टी के संपर्क में था। कृष्णा राय के खिलाफ 24 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। गौरतलब है कि आज के मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह मिलने की उम्मीद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना का मिलर स्कूल प्रेरणा का मॉडल बनेगा। दैनिक जागरण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर लिखा है कि अटकलों पर विराम, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार के परीक्षा माफिया ने अब महाराष्ट्र TIT के पेपर लीक कराया, 3 गिरफ्तार। प्रभात खबर ने बिजली से जुड़ी खबर पर लिखा है, 6 जिलों में बिना ग्रिड मिलेगी निर्बाध बिजली। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, PMCH प्रचार्य हटाए जाने के मामले की होगी हाई लेवल जांच, पूर्व प्रचार्य की प्रेस वार्ता से स्वास्थ्य विभाग नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश

0: विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेडिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey girls,
2: hey, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम नुसरत फतेह अली खान की आवाज में। दोस्तों, गुफ्तगू एक ऐसा जरिया है

जिससे हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे सुलह आमेज गुफ्तगू के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुफ्तगू एक ऐसा ज़रिया है, चाहे वो किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेजेस में बोला जा रहा हो, मकसद एक ही होता है, अपने मैसेज को उन तक पहुंचाना, उनके मैसेज को खुद तक पहुंचाना और एक दूसरे को समझाना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गुफ्तगू के अपने कुछ आदाब होते हैं। हम गुफ्तगू के ज़रिए अपनी राय रखते हैं। बातचीत में हमें एहतराम रखने की ज़रूरत है। कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए, ऐसी गुफ्तगू से बचने और ठहर ठहर कर साफ साफ अल्फाज में बात करना बेहतर माना जाता है। आवाज़ें इतनी बुलंद ना हो कि सामने वाला इरिटेट हो जाए और इतना मध्यम भी ना हो कि सामने वाला उकता जाए। नर्म लहजे में बात करना, करीने से बात कर रखना, ये गुफ्तगू के बेहतर ज़राए हैं। दोस्तों, ये तो हुई गुफ्तगू के आदाब। लेकिन हम इंसान बशर हैं, जिससे खताएं होना आम सी बात है। कभी कभी खताएं इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि दो लोगों के मामलात ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में दो लोगों के बीच जाकर सुलह करवा दी जाए तो ये एक नेक कदम है और एक इंसानियत का बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। इस्लाम में दो लोगों, ख़ानदानों या गिरोहों के दरमियान सुलह करवाना एक बहुत बड़ी नेकी और सदक़ाए जारिया है। ये अमल अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुलह करवाने वाला शख्स जन्नत में भी सबसे पहले दाखिल होगा। गर्ज की सुलह आमेज गुफ्तगू इंसान को सुकूनियत की तरफ मायल करता है। जब इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करके फारिग होता है और सुकून महसूस होता है उसे, तो वो भी खुद में फैसले करे कि मैं भी जब किसी से बातचीत करूं तो मेरे सामने वाला भी इंसान सुकून महसूस करके हमारे पास से जाए। क्योंकि कड़वी बातें करना आदाब के खिलाफ है। किसी को रंजिश करना और कुछ ऐसी बात कह देना जिससे सुनकर इंसान दुखी हो, ऐसी बातचीत से बचने और हर फर्द को बहुत ज़्यादा बचने और एहतियात करनी चाहिए। और संत कबीर दास ने भी तो कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सेहतनामा। जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा की देखभाल कैसे करें, डॉक्टर हसनैन कैसर से शगुफ्ता परवीन की बातचीत। अस्सलामु अलैकुम सामईन हजरात, आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के

0: कि आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तहत हफ्ता में एक दिन बरोजी इतवार को सेहतनामा नशर किया जाता है, जिसके तहत माहिर इमराज के जरिए जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के मद्देनजर हमारे आज के प्रोग्राम सेहतनामा के तहत हम लेकर आए हैं हमारे आज के बहुत ही खास मौजू, दांत जिस्म का एक अहम उज्व, इसकी हिफाजत कितनी जरूरी। इसके लिए हमने डेंटल स्पेशलिस्ट यानी दांतों की माहिर डॉक्टर साइमा अहमद, जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन है, को मदु किया है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: दांत जो कि हमारे जिस्म का अगर कहा जाए कि सबसे खास पार्ट्स में से एक है तो इनकार नहीं। ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो सख्त और पत्थर की मानिंद है। अगर इंसान के जिस्म में ये मौजूद ना होता तो ना जाने कितने ऐसी नेमतों को खाने से इंसान महरूम रह जाता और कुदरत की दी गई बेशुमार बेहतरीन गिजाएं निगल पाना काफी मुश्किल हो जाता। कुदरत ने दांत जैसी बेशकीमती चीजें हमारे जिस्म में मौजूद कर हम पर बहुत बड़ा कर्म किया है। डॉक्टर साहिबा, तो आज हम दांत के मौजू पर आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इससे जुड़ी तमाम ऐसी बातें जो हम में से बहुत सारे लोगों को इसका इल्म बिल्कुल भी ना हो, उन्हें भी सुनने और समझने का मौका आपके जरिए हम सबको मिलेगा। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आपसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि कुदरत ने इंसान को जिंदगी में दो बार दांत दिया है। पहली बार जो दांत आता है उसे हम आम जबान में दूध के दांत कहते हैं, और दूसरी बार जब दांत आता है तो उसे हम मुस्तकिल दांत कहते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम बच्चों पर आते हैं, और बच्चों के जो दूध के दांत निकल आते हैं और 6-7 साल की उम्र तक टूटने लग जाते हैं, तो इस टूटने की तरतीब में बहुत सारी बातें जो घर में बड़ों से सुनने को मिलती है कि अगर दांत हिलने लग जाते हैं तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, या फिर टूट जाए तो टूटे हुए जो खाली जगह है उनको घर के बड़े कहते हैं कि उस पर जबान से प्रेशर नहीं देना चाहिए, दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये रहती है कि दूध के दांत टूट जाने के बाद दांत खूबसूरत सजीले तौर पर निकलें। इसके लिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आप किस तरह के एहतियात की सलाह देना चाहेंगे?
1: जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी या नाना नानी जो भी चीजें कहते थे कि अगर दांत हिल रहे हैं या गिर गए तो जुबान वहां पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसके बारे में ये है कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, इस तरीके से अगर हिल रहे हैं कि अब बच्चों को खाने में तकलीफ हो रही है
0: जी,
1: तो आप उसे डेंटिस्ट के पास जाएं और निकलवा दें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखें कि वो दांत हिल रहे हैं तो उन्हें खाने में दिक्कत आएगी, फिर उन्हें आगे चल के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और फिर और भी कमजोरी, इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो दांत अगर हिल रहे हैं तो निकलवा दें, और उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं, जो पक्के दांत जिन्हें हम बोलते हैं, तो उसके लिए जुबान को इस लिए वहां पे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रेशर देता है जुबान, एक हमें ऐसा लगता है कि जुबान कितना ही प्रेशर दे सकता है, लेकिन वो थोड़ा ही करके उसकी वजह से क्या होता है, वो दांत जब निकलते हैं तो आड़े टेढ़े ऐसे निकल जाते हैं, इस वजह से हम मना करते हैं। खास एहतियात ये देना चाहिए कि जब दांत गिर जाएं तो उनकी सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सुसुम पानी में नमक डालकर कुल्ला करना, या बच्चे अगर छोटे हैं तो सॉफ्ट कपड़े में को उनसे गर्म पानी में उसे डुबोकर उसे साफ करना, ये सब चीजें हैं। और ज्यादा नहीं कि छोटी मोटी चीजों को ही ध्यान में रखकर चला जाए तो सारी चीजें सही होंगी।
0: जी डॉक्टर साहिबा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि मौजूदा वक्त में खान पान का बड़ा मसला है, खुसूसी तौर पर बच्चों में चॉकलेट, च्युइंगम और ना जाने कई ऐसे जंक फूड्स, जिससे बच्चों के दांत तेजी से खराब होते हैं। परमानेंट दांत जब बच्चों के निकल आते हैं तो उनकी हिफाजत बच्चों को या उनके पेरेंट्स को किस तरह से जरूरी तौर पर करनी है, और उनके खान पान पर किस तरह का ध्यान रखना है ताकि दांतों में सड़न या खराबी ना हो, क्योंकि इसके बाद फिर अब नए दांत आने वाले नहीं है।
1: जी, पहले तो ये जब दूध के दांत उनके गिर रहे होते हैं तो आपको बहुत ये चीज चाहिए कि बच्चों को आप सिखाएं, एजुकेट करें कि उनकी एक स्टेज है कि वो बड़े हो रहे हैं।
0: जी,
1: ये बहुत अहम हिस्सा है, लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और एक हिस्सा ये है कि उनके दांत जो होते हैं प्राइमरी से परमानेंट, मतलब दूध के दांत से पक्के दांत आते हैं
0: जी।
1: तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए दूसरा, जब वो दांत आते हैं, अब देखें आजकल दौर चल रहा है चॉकलेट्स या प्रोसेस्ड फूड का, लोग ज्यादातर पैकेज्ड फूड ही
0: इस्तेमाल
1: इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, या इंस्टेंट फूड।

0: देख लें, इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट पोहा, हर चीज़ है, मेहनत करने से लोग कतराने लगे हैं।
1: जी
0: तो मेरा ये है कि आप मना नहीं कर सकती हैं बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है। अगर आप उन पे ये चीज़ बोलेंगे कि बिल्कुल ही ना खाओ, तो उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा जाएंगे। तो आप
1: बिल्कुल
0: उन्हें ये सिखाएं कि कम खाओ, और आप उन्हें सब्जी, जो वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, ये सब हमारे मसूड़ों और दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें ये सब खाने के लिए आप उन्हें इनकरेज करें।
1: बिल्कुल गजाओं का हमारे जिस्म पर, जैसा कि मैम आपने अभी
0: जी
1: गजाओं की बात की, तो गजाओं का हमारे जिस्म पर गहरा असर होता है, चाहे बैरूनी तौर पर हो या अंदरूनी तौर पर। दांत मजबूत हो, दांतों में चमक हो और दांत ज्यादा वक्त तक मौजूद रहे, इसके लिए आप किस तरह की गजाएं प्रिफर करेंगे?
0: मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं,
1: पत्तेदार
0: जी
1: सब्जियां,
0: हाँ, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या ऐसे फ्रूट्स खासकर जो खट्टे होते हैं, और एप्पल हो गया आपको, आप पाइन एप्पल ले लीजिए, अनानास जो आप बोल लें, फिर ग्रेप्स हो गए, आपको जितने फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी है खास करके, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सेब में अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो आपको दांत को साफ करने में भी बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है उसका। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड जब होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर, मतलब जो कंटेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम शुगर लेंगे, तो बैक्टीरियाज को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है बढ़ने के लिए। हम कह लें, एक बैक्टीरियाज नॉर्मली एसिडिक इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: शुगर और कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में एसिडिक इन्वायरमेंट बना देते हैं। वहीं पे जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं, या जो फल होते हैं, वो उस एसिडिक इन्वायरमेंट को हटाकर एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट, जो बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, वो करते हैं। और ये ना समझे लोग कि अगर मैंने फ्रूट्स या फल कहा है तो जूस पीने लगें, क्योंकि जब हम जूस लेते हैं, वो उसमें ज्यादातर शुगर की क्वांटिटी होती है, भले ही वो नेचुरल शुगर हो। लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं, तो हमें उसके छिलके, हम उसके जो फाइबर्स होते हैं, हम हर चीज लेते हैं, तो वो बहुत फायदेमंद होता है। लोग इस चीज को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं आसानी होगी कि जूस ही पी लेते हैं, पैकेज जूस ले लेते हैं, या फ्रूट से ही जूस ले लें, तो वो चीज ना करें। आप फ्रूट्स खाएं, अच्छे से चबाकर खाएं, आपके दांत, मसूड़े, सेहत, हर चीज के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: जी कहा जाता है मैम कि हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस
0: जी
1: जैसी चीजें लेना बेहतर होता है, इससे हड्डियों की भी लाइफ बढ़ती है और दांतों
0: जी
1: की भी। तो आप हमारी आवाम को कैल्शियम और फास्फोरस जैसी मिलने वाली चीजें खास तौर पर बताएं कि वो क्या-क्या खाएं जो उनके इर्द-गिर्द आसानी से अवेलेबल हो।
0: सबसे आसानी चीज तो ये है कि आप दूध ही लें, क्योंकि आजकल आप देखें, जितने भी यूथ आप कह लें, जो अभी की जनरेशंस हैं, वो दूध नहीं पीना चाहते हैं। और आप देखें, पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे करते थे कि दूध पियो, दही खाओ, पनीर लो, लेकिन आज हम हर चीज में चीज, मोजरेला चीज, या आप कह
1: जी
0: लें कोई भी प्रोसेस चीज पे ज्यादा फोकस रहते हैं। आप
1: जी
0: अगर बहुत पुराने जमाने की चीजों को ये सब फॉलो करते रहेंगे, आपको हर चीज मिलेगी, नेचुरल चीजों को अगर आप देखते हैं तो।
1: तो दूध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और
0: जी
1: कहा भी
0: हाँ
1: जाता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड।
0: जी हाँ बिल्कुल सही
1: तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अहम मैसेज है कि वो दूध पे ज्यादा फोकस करें, बशर्ते कि चॉकलेट, च्युइंगम और जंक फूड्स के बनिस्बत। तो मैम अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग दांतों में होने वाले मसाइल से परेशान रहते हैं, मसलन दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और कभी-कभी दांतों से खून का निकलना वगैरह जैसी परेशानी होती रहती है। तो ऐसी तकलीफ से निजात के लिए किस तरह का इलाज और एहतियात करना चाहिए?
0: देखिए, जो आजकल का एक दौर चल रहा है खाने पीने में, जो चीज़ें लोग ले रहे हैं आजकल, तो ये बहुत आम चीज़ हो चुकी है कि लोगों के मसूड़ों से खून आता है, दांतों में दर्द होती है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, तो उसके लिए आप अपने दांतों की हाइजीन, सफाई का बहुत खास ध्यान रखें।
1: जी
0: लोग बोलते तो हैं कि 2 बार ब्रश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन करते नहीं हैं आलस की वजह से, या कुछ भी आप समझ लें, तो 2 बार ब्रश करें आप, कुल्ला ही कर लें। अगर आपको ब्रश करने का वक्त नहीं मिल रहा है, खाना खाकर आप अच्छे से कुल्ला करें, कि खाने के कोई भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें फंसे ना रहें। दूसरा ये होता है कि माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं, फ्लॉसिंग जो होती है धागे से

0: वो नॉर्मली धागा नहीं होता है, एक डेंटल फ्लॉस आता है उससे आप क्लीन रखें। उससे क्या होता है, जो दो दांत में इतना स्ट्रांग कॉन्टैक्ट होता है तो वो जाकर वहाँ पे क्लीन करता है, ब्रश नॉर्मली नहीं पहुँच पाता है। फिर भी अगर आपको हो जाते हैं ये चीज़ें कि दांतों मसूड़ों से खून आ रही है और दांतों में दर्द हो रहा है, तो आप बेझिझक डेंटिस्ट को विजिट कर लें। बहुत लोगों का ये मानना है कि जब हम स्केलिंग या दांतों की सफाई कराते हैं तो खून आने लगता है, हमारे दांत खराब हो गए हैं। ऐसा नहीं है, जब सूजन होती है तो ब्लड वहाँ पे ऑलरेडी आपकी ब्लीडिंग हो रही है,
1: जी
0: और हम डीप क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे, ताकि जब वो फ्रेश ब्लड आता है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है, तो वो हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा कर देती है। आप देखेंगे गांव में जब आप अभी भी जाएंगी तो कैलकुलस उस चीज़ को कहते हैं, जब आप खाना शुरू किया आपने, सफाई नहीं हो रही तो शुरू धीरे धीरे वो बनना शुरू होता है, एक टाइम पे बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है और वो कैलकुलस कहलाता है।
1: जी
0: वो और कुछ नहीं, बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है। तो गांव में अभी भी लोग बोलते हैं कि ये मेरे दांतों को सपोर्ट कर रहा है, और आपने अगर सफाई करके उसे हटा दिया तो वो बोलेंगे मेरे दांत हिल रहे हैं, तो वो उन्हें नहीं समझ आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2018 में ये रिसर्च किया था कि जो गम डिजीज या ओरल डिजीज जो होती है
1: जी
0: वो बहुत सारी और भी डिजीज करती है, जैसे हार्ट के लिए। अब इसमें हार्ट का क्या होता है, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसमें, या कॉलोनीज जो प्लाक वगैरह होती है हमारे माउथ में जब हम सफाई नहीं करते हैं, उसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरिया, तो ये क्या करती है, हमारी आर्टरीज में क्लॉग कर देती है उनको, फिर वो ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर नहीं होती है। दूसरी, अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो अगर ओरल हेल्थ को अगर ध्यान से नहीं, वो अपनी मतलब ओरल हेल्थ को सही नहीं रखती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फीटस, आजकल नॉर्मली लोगों को पता होता है जब बच्चे पैदा होते हैं शुरुआती दौर में उसे फीटस कहते हैं, तो माँ के खून के जरिए ही बच्चों को खाना मिलता है,
1: बिल्कुल
0: तो जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो माँ के खून में जाते हैं।
1: जी
0: और ये लोगों को ऐसा लगेगा कि बस बोलने की बात है, लेकिन ये बहुत, ये स्टडीज की गई हैं और ये प्रूवन है ये सारी चीजें, तो वो माँ के खून से जाके बच्चों तक जाते हैं। और जो आप देखेंगे कई बच्चे होते हैं जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है, तो दांतों की बीमारी बहुत ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेट करती है कि बच्चों के लो बर्थ रेट वेट की वजह से उसमें दांतों की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल, तो किसी भी तरह से दांतों की सफाई को लेकर के
0: जी,
1: नजरअंदाज नहीं करना
0: हर
1: है।
0: 6 महीने पे आपको अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो आप डेंटिस्ट को विजिट कर लें, भले ही आप कोई ट्रीटमेंट ना लें, आप कुछ ना कराएं, आप विजिट कर लें, आप एक बार चेकअप करा लें, तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि हाँ आप सही हैं।
1: बिल्कुल
0: आप खाने पीने में आप देखें, रोज के लिए पिज्जा बर्गर खाते 1,000 500 उड़ ही जाते हैं, तो 100 200 चेकअप की ही नॉर्मली आप देखें कि बहुत कम फीस होती है, या जितनी भी हो तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके लिए खर्च हो रही है, वो किसी और के लिए नहीं खर्च हो रही है।
1: जी मैडम, दर्द में फौरी तौर पर राहत मिले इसके लिए कई लोग लौंग या लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं या कोई और घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है?
0: जी, लौंग का तेल वाकई में बहुत फायदेमंद होता है, और घरेलू नुस्खे मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कई हद तक वो आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घरेलू नुस्खे से ही आप उस ट्रीटमेंट, जो डेंटल ट्रीटमेंट है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको एक हद तक राहत देंगे, लेकिन अगर आपको जरूरत है, मान लीजिए आपके दांतों में सड़न है और आपको दर्द हो रहा है, आपने लौंग खाया, एक टाइम पीरियड के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा। तो आजकल आप देखेंगे होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खे पे लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं इस चीज को लेकर, तो मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है कभी कभी एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप चले, लेकिन जो उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो लेना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल सही मैडम, हमारे मुल्क के देही इलाकों में कुछ लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दौरे जदीद में दांतों को साफ सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, तो क्या दांतों के लिए दातुन का इस्तेमाल सही है या फिर अभी के वक्त में जिस तरह से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाना?
0: देखें, पहले के जो जमाने में या अभी भी आप देखें, हमारे गांव में आप जाएंगी, किसी आपके गांव में ले लीजिए, मेरे खुद के गांव में जब मैं जाती हूँ दादी नानी के घर पे, तो बहुत लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी तक दातुन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब रमजान का वक्त आता है तो बहुत सारे मुसलमान भाई बहन वो लोग भी दातुन का इस्तेमाल करते हैं। तो दातुन मैं बोलूंगी बहुत अच्छी चीज है। लोग
1: जी
0: अब भले ही ब्रश पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक ब्रश पे आ चुके हैं, वो सब भी बहुत अच्छी चीज है, एक मॉडर्न हो रही है सोसाइटी। तो दातुन में मैं आपको बताऊं, उसमें ये सिर्फ नहीं है कि आप उसे चबाएं

0: और ब्रश हो गया, उसका जब हम लोग जो जूस निकलता है वो जब हम लेते हैं, उसके भी अलग फायदे होते हैं। आप किसी भी पेड़ का एक डंडी तोड़ लें और ये करें, हर चीज के फायदे हैं, लेकिन खास तौर पे 5 या 6 ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे आप ले लें नीम। नीम को कहा
1: जी
0: जाता है कि दातुन का राजा, तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत अच्छी। तो ये तो बहुत कॉमन है, नीम सब लोग उसे
1: जी
0: लेते हैं, लेकिन वहीं पे आप देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हम नीम बहुत ज्यादा लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी जो होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप किसी भी चीज को हद से ज्यादा करेंगी, तो अगर आप दातुन नीम कर रही हैं तो एक बार किया, 2 बार किया दिन में बहुत है, और इसके जूस को आप ले लें। दूसरा, आप साल, साल सुना होगा आप लोगों ने, तो साल बहुत फेमस है क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत मीठा होता है, तो वो दांतों को साफ रखने में और मसूड़ों के हेल्दी गम्स के लिए बहुत अच्छा है साल। फिर थर्ड है कोरंजो या करंज हम बोलते हैं उसे हिंदी में। तो

0: लोगों ने तो साल बहुत फेमस है क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत मीठा होता है, तो वो दांतों को साफ रखने में और मसूड़ों के हेल्दी गम्स के लिए बहुत अच्छा है साल। फिर थर्ड है करंजो या करंज हम बोलते हैं उसे हिंदी में। तो अगर हम नीम को बोलते हैं कि दातुन का राजा, तो करंज को बोलते हैं दातुन की रानी।
1: जी
0: तो ये होता है कि जब हम करंज से अपने दांतों को साफ करते हैं और उसका जूस जब जाता है, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपकी
1: अच्छा
0: स्किन बहुत फ्लॉलेस होती है, लड़कियों के
1: ओके
0: लिए खास बोल बता रही
1: अच्छा
0: हूँ,
1: जी
0: तो वो आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा रखती है। फिर महुआ, बिहार में तो ये चीज लोगों को पता ही होगी कि एक
1: बिल्कुल
0: नेचुरली ये अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए भी यूज किया
1: यूज
0: जाता था,
1: हाँ
0: गवर्नमेंट ने इसलिए इसे बैन कर दिया है। लेकिन आप देखें महुआ में, हमारे गांव में ऐसा कहना है कि अगर किसी ने महुआ से अपना दांत चबा लिया तो वो इंसान पत्थर को भी चबा सकता है।
1: मतलब इतनी मजबूती आ
0: जी,
1: जाती है,
0: मतलब ओल्ड एज में भी वो आपके दांत गिरने नहीं देगा,
1: क्या
0: महुआ में
1: बात है।
0: इतनी अच्छी वो चीज है। लेकिन हाँ, वो फिर एक ज्यादा आप अगर लेंगी तो फिर वो नशा होने
1: हाँ
0: शुरू। फिर आता है गड़ा हाथना। गड्ढा का मतलब होता है पानी, जहां पे आप देखेंगी रिवर्स या पानी वाली जगह होती है, वो वहीं पे ज्यादातर निकलते हैं, उगते हैं। तो इसका ये है कि दांत की सफाई, मसूड़ों में हर चीजें कर रहा है, इसके साथ ही आपके ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है बहुत अच्छी। फिर है एक टोटका बिंदी, ये बहुत कम मिलते हैं, जैसे ऊपर के जो सारे मैंने बताया चार पांच, वो कॉमन आपको मिल जाएंगे गांव वगैरह में, लेकिन ये उतने नहीं मिलते हैं। पुराने जमाने में इंस्टेंट रिलीफ कि आपको पेन हो रहा है तो फटाफट आप चाहे ठीक हो जाए या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये टोटका बिंदी बहुत हेल्पफुल था। लोग इसके घुमा लेते थे मुंह में और बहुत जल्दी असर करता था। और ये जो पेट में आप देखेंगे अल्सर्स आजकल बच्चों में बहुत हो गया है, तो
1: जी।
0: टोटका बिंदी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था स्टमक अल्सर्स के लिए।
1: और मैम कहा जाता है कि बबूल भी
0: जी
1: बहुत मुफीद है दांतों के लिए।
0: जी मैंने आपको
1: हाँ
0: बताया कि आप किसी भी पेड़ का तोड़ लें और
1: जी।
0: आपको वो फायदा ही देगा।
1: तो सामईन, जैसा कि मैं हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया, जितने भी पेड़ पौधों का इन्होंने जिक्र किया, ये सारे पेड़ पौधे हमारे मुल्क के किसी न किसी हिस्से में जरूर मौजूद हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल करें अगर मौका लगे तो। कहते हैं कि दांत मजबूत तब रहेंगे जब मसूड़े सेहतमंद रहेंगे, तो दांत और मसूड़े दोनों ही सेहतमंद हों इसके लिए आप अपनी क्या राय देंगी?
0: जी, हर चीज़ का बेसिक यही है कि आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, दांतों की सफाई मेंटेन करनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आप देखें बहुत लोग उंगली से मसाज करते हैं,
1: जी
0: जैसे आप देखें वुजू करते वक्त,
1: जी
0: तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप मसाज करते हैं अपने मसूड़ों को तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ पे, और जहाँ पे भी आप देखेंगे हीलिंग करने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने मसूड़ों को मसाज करें उंगली से एक या दो बार, आप ब्रश कर लें, ब्रश आप 2 मिनट करें, टाइम देखकर अगर आप नहीं हो रहा है तो आपको एक आइडिया तो होगा ही कि हाँ
1: बिल्कुल
0: 2 से 3 मिनट कितना होता है।
1: जी
0: 2 बार करें, बहुत जोर से नहीं करना है वरना वो भी कहीं ना कहीं फिर आपको नुकसान दे। बहुत हल्के हल्के हाथों से कुल्ला करें, कुछ भी खाना खाएं कुल्ला कर लें, कोई भी ऐसे खाने जो चिपचिपे होते हैं, स्टिकी फूड जो होते हैं वो आप अवॉइड करें। अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाएं, कभी कभी खाएं, लेकिन फिर अच्छे से दांतों को उसको अच्छे से क्लीन कर लें उसके बाद आप।
1: कुल मिलाकर यहाँ ये साबित होता है कि हमारे दांत प्रॉपर तरीके से साफ रखना है, क्योंकि हम जो गजाएं लेते हैं तो इसी
0: जी
1: के थ्रू हमारे पेट में जाता है, तो
0: जी
1: इसकी सफाई बहुत जरूरी है। अगर ये साफ रहेगा तभी जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। मैडम, दांत हमारे जिस्म के ऐसे हिस्से में मौजूद होता है जो कि सामने से दिखाई देता है। अगर हम हंस रहे हैं या बोल रहे हैं तो हमारे दांत यकीनी तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दांत टेढ़े-मेढ़े या दांत पर दांत चढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी को भी इस तरह के दांत मंजूर नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी मायूसी का जरिया भी बनता है। तो दौरे जदीद में इसे ठीक करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद है। एक बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगी?
0: अगर मैं मेडिकल टर्म्स यूज़ करूँ तो ऑर्थो ट्रीटमेंट, आम लैंग्वेज में बोलूँ तो लोग ब्रेसेस भी आजकल समझते हैं, या पिन बोलें या वायर बोलें आप, तो वो एक ट्रीटमेंट है। अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं या किसी के आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, तो वो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। हालांकि ये थोड़ा वक्त ज़्यादा लेती है, क्योंकि देखें आप, हम क्या करते हैं, आपके बोन में एक चेंज लाते हैं। तो आपकी जो चीज़ एक बोन है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस चीज़ है, तो उसमें अगर चेंज कर रहे हैं तो वक्त लगेगा ही। तो लोग परेशान होकर आते हैं कि नहीं हमें जल्दी चाहिए, इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। तो एक ट्रीटमेंट होता है, आपको उस पे यकीन रखना होता है और टाइम देना होता है, क्योंकि

0: हमें टाइम लेना हम नहीं चाह रहे हैं, आपकी वो ट्रीटमेंट को टाइम देना पड़ेगा। तो ब्रेसेस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको टाइम दें, 1 साल या 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, आपके दांत सही हो जाएंगे। और आजकल के दौर में आप देखें, पर्सनालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के
1: बिल्कुल
0: लिए,
1: बिल्कुल
0: कॉन्फिडेंस के लिए आप देखें। तो ये चीज़ है, आपको अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं दांतों का रोल बहुत बहुत ज़्यादा है।
1: मैम, आपने अभी दांतों को अंदर करने या दांतों को अच्छा लगने के लिए आपने पिन का सलाह दिया,
0: जी
1: तो इसमें बहुत सारी कुछ एहतियात भी होती हैं, वो भी आप हमारे आवाम को बताएं कि उसमें किस तरह के एहतियात की ज़रूरत है।
0: जब पिन वगैरह लगती हैं तो उसमें कुछ ब्रैकेट्स, मतलब आप मान लें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लगाते हैं। एहतियात आपको बस ये रखना होता है कि आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मतलब आपको एक बार पिन लग गया तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सफाई बहुत आ जानी चाहिए।
1: और उसको छेड़छाड़ भी नहीं करना है,
0: नहीं
1: जिस तरह से डॉक्टर ने लगा
0: जी
1: दिया है पेशेंस के साथ उसको उसी तरह से
0: जी
1: रखना है।
0: आपको सब्र रखना है और सफाई रखनी है,
1: जी
0: क्योंकि 1 साल 1.5 साल तक वो चीज़ आपके दांतों में लगी होती है। अगर आपने सफाई का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि दांत आपके वहाँ पे ख़राब हो जाए। यही अगर आप सफाई का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ से।
1: बिल्कुल, पिन लगा हुआ अगर दांत है तो उसमें
0: जी
1: सफाई भी वैसे ही जनरल करनी है जिस तरह से हम लोग आमतौर पर करते हैं, या फिर उसका कोई और दूसरा टर्म है?
0: सफाई करने के लिए एक तो आप जो हम नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हैं वो करें, कुल्ला बहुत अच्छे से करें, कुछ भी खाएं। एक डेंटल ब्रश आती है, मतलब बहुत छोटी सी पतली सी ब्रश आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पिन लगा रखा है, तो वो ले लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उन वायर्स के अंदर से आपको क्लीन करने के लिए वो हो जाती है, फ्लॉसिंग करें आप, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आप बस एक ध्यान रखते रहें कि साफ़ रहे, आप अपना देखते रहें कि खाना ना फंसा रहे। और एक डेंटल ब्रश जो आती है वो इन पेशेंट्स के लिए ही आती हैं जिन्होंने पेन लगा रखा है।
1: जी, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है मैम कि मसूड़ों का ऊंचा होना या दांतों का बाहर होना जेनेटिक तौर पर भी होता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में पिन लगवाना सही है या फिर उसे जेनेटिक मानते हुए छेड़छाड़ ना करना बेहतर है?
0: देखिए, मैंने अभी कहा था कि पर्सनालिटी आज के दौर में बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा हो गई है, तो जेनेटिकली अगर कोई चीज़ किसी इंसान में है और वो नुकसान नहीं दे रही है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे कोई असर नहीं हो रहा है,
1: जी
0: तो ठीक है आप उस चीज़ को लेकर चलें। लेकिन जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि आपकी एक पर्सनालिटी में वो आपके कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं इंसान वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। दूसरा, कोई भी चीज़ जैसे हमारे दो जबड़े हैं, तो जब
1: जी
0: दोनों सेट होते हैं तो एक प्रेशर, इक्वल प्रेशर होता है पूरे मुंह में। लेकिन जब दांत आड़े टेढ़े होते हैं तो प्रेशर आधा आगे या पीछे, प्रॉपर प्रेशर नहीं लग पाता है। उसकी वजह से हड्डी जो होती है, जो हमारे दांतों को जो पकड़ कर रखती है, वो गलने लगती है।
1: जी
0: फिर उम्र होते ही, ज़्यादा जब उम्र होती है तो उसके बाद क्या होता है, आपकी दांत ढीले हो जाते हैं, निकलना
1: जी
0: शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये सारी परेशानियाँ होती हैं। तो जेनेटिकली होना या ना होना ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी हेल्थ पे उसका असर ना हो। अगर हेल्थ पे असर नहीं हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
1: जी एक उम्र के बाद जिस्मानी तौर पर इंसान के पार पुर्जे कमजोर पड़ने लगते हैं, ये सब जानते हैं, और वो साथ छोड़ने लग जाते हैं। उनमें से दांत भी एक अहम पार्ट है जो कि उम्र के साथ साथ गिरने टूटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ताहयात इंसान को सब कुछ खाने पीने का मन होता है और वे चाहते हैं कि जिस तरह से उनके दांत थे और वे नॉर्मली हर चीज को बड़ी आसानी से चबा और खा सकते थे, तो उसी तरह से वे फिर से खाना चबाना शुरू कर दें। तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं, तो क्या इसका लगाना सही है? इसके फायदे नुकसान और एहतियात के बारे में तफसील से बताएं।
0: देखें, इसका लगाना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी के दांत नहीं हैं वो खाना ही नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो आप सोचें वो इंसान में हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ पे। आप खाने को चबा कर खाते हैं या जब खाने को आप निगल लेते हैं, इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो उसमें आपकी जो थूक है वो बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है, वो उसे मिलती है, आप खाना लेते हैं उसकी पूरी जो न्यूट्रिशन है वो आपको बॉडी को मिलती है। लेकिन
1: जी
0: जब आप खाना सीधा निगल लेते हैं, आपकी डाइजेशन ख़राब होगी, आपके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो बॉडी का होता है वो सब ख़राब होगा। दूसरा, जब हम नकली या आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही है। बहरहाल, बस ये नुकसान है कि अगर आप कहीं लगवा रहे हैं, लगाने वाले की नॉलेज है या नहीं, जब आप नकली जो दांत या आर्टिफिशियल टीथ जो लगाते हैं उसकी फिट प्रॉपर है या नहीं है। मान लीजिए वो ढीला है तो आप खाना खाएंगे।

0: ये खाना उसमें फंस जाएगा, फिर वो क्लीन करने में बहुत मुश्किल होती है। हम पेशेंट को हमेशा ये सलाह देते हैं कि ये आपकी नेचुरल टीथ और आर्टिफिशियल टीथ में बहुत फ़र्क है। आप अब आर्टिफिशियल लगे, आपको सफाई का खास ध्यान देना है उस चीज़ पे। तो अगर वो फिट उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो खाना फंसेगा, फिर आपके आसपास के दांत के लिए भी वो नुकसानदायक होगा। तो लगवाना कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए अच्छी चीज़ है। हाँ ये है कि जो लगा रहे हैं उनके लिए वो चीज़ है कि आप प्रॉपर एक नॉलेज के साथ अगर लगा रहे हैं तो सब सही है।
1: मैडम, अगर दांत मुकम्मल तौर पर झड़ चुके हैं तो क्या तब भी आर्टिफिशियल दांत फिक्स कराया जाना मुमकिन है?
0: जी बिल्कुल मुमकिन है, ये आज से नहीं बहुत पहले से ये चीज़ शुरू हो चुकी है कि देखेंगी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो पूरा पूरा अपना दांत निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी मॉडर्न जब मॉडर्नाइजेशन हुई है तो उसमें ये हुआ है कि अब हम फिक्स उसे करना शुरू कर दिया हम
1: जी
0: लोगों ने। तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। फायदा अगर आप देखें जो रिमूव करने वाला, निकालने लगाने वाला, उसमें ये है कि पहला तो वो आप देखें कॉस्ट एफिशिएंट है वो बहुत, मतलब आपको आपके पॉकेट को बहुत सही पड़ेगा, मतलब कॉस्टली नहीं होता है वो। दूसरा आप उसको निकाल के आप क्लीन कर सकती हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें एक नुकसान ये होता है कि रोज़ रोज़ आपको रात में हम मना करते हैं उसे कि आप नहीं लगा कर सोएं, तो रात में आपको निकालना होता है, उसके सफाई का बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है। जो फिक्स होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि निकालें लगाएं, तो उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन अगर आप क्लीन नहीं करते हैं सही से तो वही चीज़ है कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और ये जो फिक्स वाला होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है उसके कंपेरिजन, अगर हम करें कंपेरेटिवली जो रिमूव वाले होते हैं, तो इन दोनों में बस यही फर्क है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। दोनों ही इंसान को जो वो अफोर्ड कर पाए तो दोनों ही सही हैं।
1: मैम, इसमें एहतियात क्या बताएंगी आप?
0: एहतियात ये है कि आप आपको अपने हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा।
1: और कड़ी चीजें, बहुत सख्त चीजें?
0: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके दांत लग गए मतलब हमने आपको गारंटी दे दी, आप जो भी खाएं, आपने पैसा लगाया तो आप खा सकते हैं। हाँ अब आप बोलेंगे कि पत्थर ही चबा ले
1: जी,
0: तो
1: तो वो तो वैसे भी मुमकिन नहीं है
0: जी
1: ओरिजिनल दांतों के साथ
0: हाँ,
1: भी। जी
0: तो आप नॉर्मल लाइफ अपनी जैसे खाना खाते हैं खाएं, बस यही है। आप देखें हर चीज़ का ये कि आपको सफाई का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, तो
1: बिल्कुल।
0: बस वही है।
1: दांतों के बीच का हिस्सा खराब हो जाने के बाद वो टूट जाता है, तो कई बार उसे डॉक्टर के जरिए उसको भर कर ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो क्या दांतों के लिए ऐसे अमल सेफ हैं? और अगर सेफ हैं तो इसमें किस तरह की एहतियात करने की जरूरत है?
0: जी देखें दांतों के बीच का हिस्सा अगर ख़राब होता है, मतलब दो दांत के बीच, मतलब दो दांत को उसने ख़राब कर दिया है,
1: जी
0: जब भी एक होता है कि आगे की तरफ अगर ख़राब होता है वो एक ही दांत में रहेगा, लेकिन अगर बीच में होता है तो वो दो दांतों को ख़राब कर देगा। शुरुआती दौर में अगर आपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने ट्रीटमेंट करी, आपकी फिलिंग वगैरह कर दी, तो वो सही है, लेकिन अगर आप छोड़ देती हैं, आप ध्यान नहीं देती हैं, तो वो नसों तक जाएगा, फिर हम जो RCT रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है उसका प्रोसेस हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है वो, फिर उस पर कैपिंग वगैरह होती है। तो शुरुआती दौर में ही अगर आपको किसी ने बोला, डॉक्टर को आपने विजिट किया और उन्होंने बोला कि आपकी सड़न है आपको फिलिंग करा लें, तो आप करवा लें ताकि वो चीज़ वहीं पर रुक जाए। एक चीज़ अभी बहुत क्वेश्चन करी जा रही है कि जो अमलगम होती है, एक फिलिंग मटेरियल यूज़ करी जाती है डेंटिस्ट्री में, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो बैन कर दी गई है, तो ऐसा नहीं है, बैन नहीं करी गई है, बहुत सारी स्टडीज़ वगैरह हुई हैं इस चीज़ पर। तो लोगों का ये कहना था कि जो अमलगम बेसिकली क्या होता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, टिन, कॉपर, सिल्वर और मरकरी उसमें ऐड किया जाता है, तो
1: जी
0: लोग ऐसे बोलते हैं कि मरकरी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मरकरी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है वो होती है मिथाइल मरकरी, जो फिश होती हैं उनमें होता है वो, और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लेकिन
1: जी
0: जो मरकरी हम अमलगम या डेंटल फिलिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं वो एक एलिमेंट होती है, तो उसका नुकसान ये होता है जब वो वेपर उसकी होती है वो
1: जी
0: नुकसान देती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना वेपर कि जो हम फिलिंग कराएं वो इतना वेपर निकालेगी कि हमारे बॉडी को नुकसान करे, तो जो हम फिलिंग करते हैं उसमें उतना मर्करी होता ही नहीं है कि उसका वेपर रिलीज और आपको नुकसान करे। तो इस पे बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन लोगों ने भी बहुत रिसर्च करी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि एडवर्स हेल्थ ये प्रॉब्लम्स और अमलगम में कोई रिलेशन नहीं है।
1: तमाम लोग जो चाहे जिस भी उम्र के हों, सबकी चाहत होती है कि उनके दांत

0: मजबूत, सेहतमंद और लॉन्ग लास्टिंग यानी तवील वक्त तक रहे, इस पर आप अपनी किस तरह की राय पेश करेंगे?
1: आपके दांत अच्छे रहें और प्रेजेंटेबल रहें, इसके लिए आपको ये है कि आपको सबसे पहले तो जो खाने पीने हैं उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चॉकलेट्स, कॉफ़ी, टी या पैकेज्ड फूड, इनको आप थोड़ा लिमिट कर लें। मुझे पता है कि रोकना, बिल्कुल रोकना अब इस दौर में मुमकिन नहीं है या इस हद तक लोग
0: बिल्कुल
1: पहुंच चुके हैं, तो एक लिमिट कर लें कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत किया, और आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों को बढ़ा लें अपने डाइट में। ना कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, बल्कि ओरल कैविटी, दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप हाइजीन का ध्यान रखें, ब्रश करें, माउथ वॉश करें, डेंटल विजिट कर लें हर 6 मंथ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप ध्यान में रखें, आप बिल्कुल सही रहेंगे।
0: मैम, दांतों पर क्या अल्कोहल का भी असर होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं।
1: जी, दांतों पे अल्कोहल, इवन आप देखें स्मोक जो करते हैं, जो लोग सिगरेट्स वगैरह पीते हैं,
0: जी
1: इनका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो पहला तो ये कि जो हमारी कैविटी होती है, मतलब दांत होते हैं, उनमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो एक तो इम्यूनिटी ये कम कर देता है। तो आप देखें
0: बिल्कुल
1: कहीं भी अगर इम्यूनिटी आपकी कम हुई तो कोई भी चीज़ हावी बहुत जल्दी हो जाएगी।
0: बिल्कुल
1: तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है, और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है वो फिर आगे के अपने प्रोसेस को, कि दांत सड़न हो जाती है, सूजन हो जाती है, खून आने लगते हैं, तो ये सब के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: मैम, जाते जाते आप हमारे सामईन को क्या पैगाम देना चाहेंगी?
1: मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग पैसे खर्च करते हैं ये सोचकर कि, मान लीजिए आप देखें कि अगर पूरे बॉडी में, हाथ में, पैर में कुछ भी किसी को तकलीफ होती है तो वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और अगर दांतों की ट्रीटमेंट के लिए अगर कुछ हज़ार भी लगेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो मैं ये बोलूँगी, दांत भी आप ही के बॉडी का एक अहम हिस्सा है, तो उन्हें इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। अगर उसकी ट्रीटमेंट में कुछ खर्च हो रहा है तो वो आपके लिए ही हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: एक स्लोगन है, आप देखें कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम ने कहा कि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार, ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार।
0: क्या बात है,
1: तो इस चीज़ को
0: बिल्कुल
1: फॉलो करें और आप सब सही रहेगा, आपके हेल्थ वाइज और हर चीज़।
0: जी हाँ बिल्कुल। सामईन हजरात, हमारे आज के खसूसी प्रोग्राम सेहतनामा के तहत अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के खास मौजू, दांत जिस्म का एक अहम उज्व, इसकी हिफाजत कितनी जरूरी, डॉक्टर साइमा अहमद से शुहदा हसन की बातचीत। अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा, जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा की देखभाल कैसे करें। सामईन हज़रात, वक्त हो गया हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन को अख्तिताम करने का। हमें दीजिए यहीं इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में दिल्ली सिक्स फिल्म के इस गीत को। संगीत AR रहमान का है और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म है एयरलिफ्ट। संगीत अंकित तिवारी का है और गीतकार हैं कुमार।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश जहरा ऐस खान और जैज़ मानक की आवाज़ में, गीत और संगीत तनिष्क बागची का है। फिल्म है सत्यमेव जयते 2।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीती, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की परतीती।
0: वाह, क्या सुंदर दोहा कहा है। सच ही तो है, मन अगर मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। संत कबीर ने भी अपने दोहों के जरिए यही समझाया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना मन होता है।
1: बिल्कुल अनुराग, और तुम्हें पता है कि कल ही तो कबीर जयंती है और कबीर के शब्द आज भी हमें जीवन की राह दिखाते हैं। वे कहते थे कि इंसान को बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने मन की सच्चाई और अच्छे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उनका जीवन भी हमें यही सिखाता है कि मेहनत, विश्वास और सरलता से हर मंजिल पाई जा सकती है।
0: तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे महान संत और कवि कबीर की, जिनकी वाणी ने समाज को नई सोच दी। कबीर के दोहे छोटे जरूर हैं, लेकिन उनमें छिपी सीख बहुत बड़ी होती है।
1: हाँ अनुराग, कबीर ने अपने समय में लोगों को अंधविश्वास, भेदभाव और दिखावे से दूर रहने का संदेश दिया। उनकी भाषा इतनी सरल थी कि आम लोग भी उनकी बातों को आसानी से समझ लेते थे।
0: लेकिन कबीर सिर्फ कवि ही नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक भी थे जिन्होंने प्रेम, भाईचारे और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा।
1: सही कहा, कबीर का मानना था कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पहनावे, जाति या बाहरी रूप से। उनका एक प्रसिद्ध दोहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोए।
0: कितनी गहरी बात है। सच ही कहा है कबीर दास ने कि दूसरों में कमी ढूंढने से पहले अगर हम अपने अंदर झांके तो हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लगेगी। लेकिन कबीर दास केवल एक महान कवि ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे संत भी थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दी।
1: हाँ, मैंने पढ़ा है कि उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे निर्भीक होकर अपनी बात कहते थे और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड तथा भेदभाव का विरोध करते थे।
0: बिल्कुल सही, उनके विचार इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली बने कि उनके अनुयायियों ने एक अलग परंपरा का निर्माण किया, जिसे संत संप्रदाय

0: कहा गया। इस संप्रदाय में दादू, सुंदरदास, गरीबदास और चरणदास जैसे अनेक संत कवि हुए।
1: इसका मतलब है कि कबीर के विचार केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहे।
0: हाँ, कबीर की भाषा भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण था। उन्होंने आम जनता की भाषा में अपनी बात कही। उनकी भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, जिसे बाद में सधुक्कड़ी भाषा कहा गया।
1: उनकी भाषा बहुत सरल और सहज थी, इसीलिए सामान्य लोग भी उनके विचारों को आसानी से समझ लेते थे। लेकिन सरल होने के बावजूद उसमें भावों की अभिव्यक्ति की अद्भुत शक्ति थी।
0: सही कहा, कबीर का उद्देश्य भाषा को सजाना नहीं, बल्कि अपने अनुभव और भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना था। फिर भी उनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य की कमी नहीं थी।
1: हाँ, उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और यमक जैसे अलंकार स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने अनेक प्रतीकों और रूपकों का प्रयोग करके गहरे आध्यात्मिक विचारों को सरल बना दिया।
0: मुझे उनकी उलट बासी शैली बहुत रोचक लगती है। इसमें वे ऐसी बातें कहते हैं जो सुनने में उल्टी या विरोधाभासी लगती है, लेकिन उनमें गहरा अर्थ छिपा होता है।
1: बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा, पहले पूत पीछे भई माई। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लगती है, लेकिन इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन और माया के प्रभाव से है।
0: यही उनकी विशेषता थी। वे कठिन आध्यात्मिक विषयों को भी सरल और प्रभावशाली ढंग से समझा देते थे। इसी कारण उनके काव्य में शांत और अद्भुत रस सहज रूप से उपस्थित हो गए थे।
1: कबीर के विचारों का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उनके काव्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और दुनिया भर के लोगों ने उनके विचारों को सराहा।
0: सच है, उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। वे मानवता, प्रेम और समानता के पक्षधर थे।
1: यही कारण है कि कबीर पंथ में हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से शामिल हुए। उनके लिए इंसान की पहचान उसके कर्म और विचार थे, न कि उसकी जाति या धर्म। इसीलिए आज का विषय थोड़ा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्रसंगों की जिन्होंने सदियों से लोगों के दिल को छुआ है। एक ओर है संत कबीर दास जी, जिनकी वाणी ने समाज को आईना दिखाया, और दूसरी ओर है मुहर्रम, जो हमें त्याग, साहस और सत्य के लिए खड़ा रहना सिखाता है।
0: अरे वाह, यानी आज का सफर होगा शब्दों से आत्मा तक का, जहां एक तरफ कबीर के दोहे होंगे और दूसरी तरफ करबला की कहानी।
1: बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस महान संत से जिनकी पहचान किसी एक धर्म या सीमा से नहीं बंधी थी।
0: तो कबीर नामा म्यूजिकल बैंड द्वारा सुनते हैं एक गाना, साधो देखो जग बौड़ाना।

0: जिनके जन्म को लेकर आज भी कई रहस्य और कथाएं सुनने को मिलती है। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन लोक कथाओं में कई कहानियां प्रचलित है।
1: और एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कहा जाता है कि उनकी माता एक ब्राह्मण महिला थी और परिस्थितियों के कारण उन्होंने बालक कबीर को त्याग दिया। बाद में एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उन्हें अपनाया और उनका पालन पोषण किया।
0: यही कारण है कि कबीर का जीवन शुरू से ही अलग अलग संस्कृतियों के बीच पला बढ़ा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं को करीब से देखा
1: और शायद यही अनुभव आगे चलकर उनकी वाणी की सबसे बड़ी ताकत बना। कबीर ने कभी बाहरी दिखावे को महत्व नहीं दिया। वे कहते थे कि सच्चा धर्म इंसान के भीतर प्रेम और सत्य को जगाना है।
0: संत कबीर न हिंदू थे और न ही मुस्लिम। उन्होंने कवि के रूप में एक आदमी बनकर समाज में फैली बुराइयों को हटाने का प्रयास किया। लेकिन अगर उनके जीवन पर चर्चा हो तो कबीर का जीवन बनारस यानी आज के वाराणसी से जुड़ा रहा। वे पेशे से बुनकर थे। धागे बुनते बुनते उन्होंने समाज को जोड़ने वाले विचार भी बुने।
1: यानी कबीर सिर्फ कपड़े नहीं रिश्ते भी बुनते थे।
0: सही कहा। उनके विचारों से प्रभावित होकर कबीर पंथ नाम की परंपरा भी विकसित हुई, जिसमें कबीर को गुरु और सत्य के मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है।
1: लेकिन अनुराग, कबीर जी पर बात करते करते हम लोग तो मुहर्रम को भूल ही गए।
0: अरे हाँ, भारत में इस साल मुहर्रम का मुख्य दिन यानी यौम आशूरा 10वां मुहर्रम 25 या 26 जून को मनाया गया। और मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसे हिजरी वर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यह इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है।
1: लेकिन मुहर्रम केवल नए साल की शुरुआत नहीं, यह त्याग, धैर्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भी याद है।
0: बिल्कुल सही। और मुहर्रम का संबंध करबला की घटना से है। 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया।
1: इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। उन्होंने सत्ता के दबाव के सामने झुकने के बजाय सत्य और न्याय का साथ चुना।
0: तभी तो करबला की घटना हमें बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता।
1: हाँ, और मुहर्रम का 10वां दिन आशूरा कहलाता है। इस दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है
0: और सिया समुदाय इस अवसर पर शोक और स्मरण करते हैं। जबकि कई सुन्नी समुदायों में आशूरा के दिन रोजा रखने की परंपरा भी है।
1: तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि कबीर और मुहर्रम दोनों हमें एक बड़ी सीख देते हैं। इंसानियत सबसे ऊपर है।
0: बिल्कुल। कबीर ने कहा कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रेम से होकर जाता है। और करबला की कहानी बताती है कि सत्य के लिए साहस जरूरी है।
1: कितनी अद्भुत बात है ना अनुराग, एक संत अपने शब्दों से समाज को जगाते हैं और एक ऐतिहासिक घटना अपने संदेश से पीढ़ियों को प्रेरणा देती है।
0: तो दोस्तों, इतिहास केवल तारीखों का नाम नहीं है। इतिहास उन विचारों का नाम है जो समय गुजरने के बाद भी जीवित रहते हैं।
1: कबीर की वाणी आज भी हमें जोड़ने का काम करती है। उनकी नजर में इंसान की पहचान उसका प्रेम, व्यवहार और कर्म था।
0: और मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अन्याय के सामने चुप रहना नहीं, बल्कि सत्य और नैतिकता का साथ देना चाहिए।
1: सही कहा अनुराग। जब हम कबीर की वाणी और मुहर्रम के संदेशों को साथ रखकर देखते हैं, तो लगता है जैसे दोनों अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं, इंसानियत की मंजिल तक।
0: बिल्कुल आकृति। कबीर ने अपने शब्दों की मसाल से लोगों के मन का अंधेरा दूर करने की कोशिश की। और करबला की घटना ने यह संदेश दिया कि सच्चाई की राह भले कठिन हो, लेकिन उसका महत्व हमेशा बना रहता है।
1: पर अनुराग, मुझे कबीर का एक विचार याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि प्रेम ऐसा दीपक है जो मन के अंधकार को दूर करता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी यह आवाज उनकी हम सबके दिलों तक पहुंचती है।
0: हाँ, कबीर के दोहे सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले अनुभव है। उनके हर शब्द में एक सवाल भी है और एक सीख भी।
1: जैसे कबीर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, वैसे ही मुहर्रम सिखाता है कि मुश्किल के समय में भी धैर्य और साहस को नहीं छोड़ना चाहिए।
0: तो दोस्तों, सोचिए, एक तरफ एक संत है जो अपनी सादगी भरी वाणी से कहते हैं कि मनुष्य को प्रेम और करुणा के रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक घटना है जो बताती है कि सत्य और न्याय के लिए हिम्मत कितना जरूरी होता है।

0: यही तो भारत की खूबसूरती है। यहाँ अलग अलग परंपराएं, कहानियां और विचार मिलकर एक ऐसा रंग बनाते हैं जिसमें प्रेम, सम्मान और भाईचारे की खुशबू होती है।
1: और शायद यही वजह है कि कबीर आज भी हमारे बीच जीवित है। जब कोई व्यक्ति भेदभाव छोड़कर प्रेम की बात करता है, जब कोई सच के लिए आवाज उठाता है, तब कहीं न कहीं कबीर की सोच दिखाई देती है।
0: और जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता, अपने मूल्यों पर कायम रहता है, तो करबला का संदेश याद आता है। मुहर्रम पर याद करो वो कुर्बानी, जो सिखा गया सही अर्थ इस्लामी, ना डिगा वो हौसलों से अपने, काट कर सर सिखाई असल जिंदगानी।
1: पाखंड की दीवारों पर कबीर ने सच लिख दिया, झूठे दिखावों के शहर में आईना रख दिया। तो अब श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
0: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
0: बाल किलकारी होगा और मजेदार,
1: मिलते हैं अगले रविवार,
0: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार,
1: इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
2: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बाल मंडली कार्यक्रम में सभी प्यारे बच्चों को रेडियो दीदी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों का बाल मंडली कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, आज हमारे स्टूडियो में दो प्यारी छोटी छोटी सी बच्ची आई हुई है। कैसी हो आशिका?
1: जी दीदी, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ
0: पहले आप अपने बारे में अपने दोस्तों को बताइए।
1: जी, मेरा नाम आशिका राज है। मैं क्लास 5 की छात्रा हूँ। मेरा एज 10 साल है।
0: अच्छा, और मेरे साथ एक प्यारी बच्ची है राजनंदिनी। राजनंदिनी, आप अपने दोस्तों को बताइए अपने बारे में।
2: मेरा नाम राजनंदिनी राज है। मैं 9 वर्ष की हूँ। मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ।
0: आशिका, हमने सुना है कि आपने कोई खिताब भी जीता है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए कौन सा खिताब आपने जीता है।
1: मैंने मिस जूनियर बिहार 2024 का खिताब जीता है और नन्ही परी लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से भी खिताब जीता है। और जूनियर में भी जाती हूँ ताकि सब कोई देख के मेरे जैसा जाए, और अब मैं नेशनल पे जा रही हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अगले कंपटीशन के लिए। अच्छा है कि आप ज्यूरी के रूप में भी जाती हैं बाहर, ताकि बाकी बच्चे भी आपको देखकर सीख सके, है ना?
1: जी
0: बहुत बढ़िया। आपने भी कभी कंपटीशन में भाग लिया है?
2: जी हाँ।

0: सिंगिंग और डांसिंग।
1: अच्छा, आपको सिंगिंग डांस करना अच्छा लगता है?
0: जी हाँ, वो मेरा प्रोफेशन है।
1: अरे वाह, बढ़िया। आशिका और राजनंदिनी, सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं?
0: जी, थोड़ा थोड़ा।
1: सोशल मीडिया में आप क्या देखती हैं? इसका उपयोग आप किस तरह से करती हैं?
0: अब जैसे पढ़ाई के लिए हो गया, कभी
1: हाँ
0: कभी बोर होते हैं तो गेम्स खेलते हैं,
1: हाँ
0: एंड कभी कभी अगर बोर होते हैं तो वीडियोस देखते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: वीडियो देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं देखना चाहिए, है ना?
0: हाँ
1: पढ़ाई का काम करना अच्छी बात है,
0: हाँ
1: आप कुछ सीख सकती हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, जो पढ़ाई की बात है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसे देखकर उसमें सीख सकती हैं, है ना? राजनंदिनी, आप भी देखती हैं सोशल मीडिया?
0: जी दीदी
1: तो क्या क्या देखती हैं आप?
0: जी, मैं बस पढ़ाई का देखती हूँ और थोड़ी फनी चीजें देखती हूँ।
1: हाँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना पढ़ाई के साथ साथ।
0: हाँ
1: बच्चों, सोशल मीडिया इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग अपनी बातें, वीडियो और जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आजकल कई बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चों, लेकिन इसका सही उपयोग भी करना चाहिए, है ना? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे रील्स आते हैं जिससे हम देखकर अपनी समय की बर्बादी करते हैं, है ना? उसे कोई देखना बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए हमें ज्ञानवर्धक चीजें ही देखनी चाहिए। वैसे तो इसके कई फायदे हैं। सोशल मीडिया हमें नई नई बातें सिखाता है, हम पढ़ाई से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे अपनी कला, संगीत, चित्रकला और अन्य प्रतिभाओं को भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना? कई लोग हैं जो अपनी, अगर कोई अच्छा गाना गाता है, अच्छा डांस करता है, तो वो लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, उसकी पहचान भी बनती है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, दोस्तों से जुड़ते हैं और अपनी प्रतिभा भी दिखाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर मिलने वाली हर बात सच नहीं होती, इसलिए किसी भी जानकारी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई बात समझ में ना आए तो अपने माता पिता, टीचर, बड़े लोगों से पूछना चाहिए। बच्चों, कभी भी अपना नाम, पता, फोन नंबर, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी किसी अजनबी को नहीं बताना चाहिए, है ना?
0: जी
1: कभी कभी
0: हाँ
1: मोबाइल पे ऐसे फोन आते हैं जो आपका नंबर पूछते हैं, या पिन नंबर बताइए या ओटीपी बताइए, तो
0: जी,
1: आप किसी भी अजनबी को अपना नंबर नहीं
0: नहीं
1: बताना
0: बताना
1: चाहिए,
0: है।
1: है ना? और इंटरनेट पर सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित समय के लिए करना चाहिए। पूरे दिन मोबाइल देखने की बजाय पढ़ाई कीजिए, बाहर खेलने जाइए, किताबें पढ़िए और अपने परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताइए।
0: जी हाँ जी
1: करती हैं आशिका?
0: जी
1: याद रखिए बच्चों, सोशल मीडिया एक अच्छा दोस्त बन सकता है यदि हम इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से करें। और अशिका, आपने खिताब जीता है तो ये बातें भी सोशल मीडिया में तो गई ही होगी,
0: जी दीदी
1: है ना?
0: हाँ
1: तो आपको बहुत सारी बधाइयां भी मिली होगी।
0: जी दीदी,
1: अशिका, आप अपने दोस्तों को क्या सुना रही हैं?
0: आज मैं पर्यावरण पे एक कविता सुनाना चाहूंगी।
1: सुनाइए।
0: पर्यावरण का करो सम्मान, यही है जीवन की पहचान। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, धरती माँ को सुंदर बनाओ। स्वच्छ हवा और निर्मल पानी, इनसे खुश रहती है जिंदगानी। प्रदूषण को दूर भगाएं, मिलकर हरियाली फैलाएं।
1: हाँ, तो पर्यावरण का हम कब सम्मान कर सकते हैं? जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि हमारा प्रकृति हरा भरा हो। राजनंदिनी, आप अपने दोस्तों को क्या सुना रही हैं?
0: मैं अपने दोस्तों को हिंद देश की निवासी सुनाना चाहती हूँ। हिंद
1: सुनाइए।
0: देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे जहाँ अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में सब एक है। कोयल की कूक प्यारी, पीपे की तेरे नारी, गा रही है तारना बुलबुल, सारे जन एक है।
1: वाह, बहुत सुंदर। माला में अनेक फूल है, लेकिन माला में जब गुंथना है तो वो एक होते हैं। उसी तरह से हमारा भारत देश, जहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत में रहते हैं। आशिका, आप गर्मियों के छुट्टी में कहीं बाहर घूमने गई थी?
0: जी, मैं अपने नानी के घर गई थी और अब मैं बनारस घूमने जाऊंगी।
1: अरे वाह, बढ़िया, अच्छा है। घूमना आपको अच्छा लगता है
0: हाँ
1: आपको राजनंदिनी?
0: जी हाँ, मुझे पसंद है घूमना। और मैं अभी नानी घर गई थी और मेरी मम्मी मुझे बोली है कि हम लोग वाटर पार्क भी जाएंगे।
1: अरे वाह, गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाना

0: भी चाहिए घूमना, मन फ्रेश होता है ना, थोड़ी पढ़ाई से भी छुट्टी मिल जाती है।
1: हाँ,
0: आप कभी क्रूज पर गई हैं?
1: जो गंगा घाट पे क्रूज होता है उस पर
0: हाँ,
1: गई हूँ।
0: गंगा जी में भी और समुद्र में भी
1: हाँ
0: चलता है
1: होता है।
0: क्रूज,
1: हाँ
0: कैसा लगता है?
1: हाँ बहुत मजा आता है। पहले देख के तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट जब गए तो बहुत ज्यादा मजा आया था।
0: मजा आया ना।
1: हाँ
0: तो बच्चों, क्रूज की यात्रा बहुत ही मजेदार होती है। बहुत बड़ा और सुंदर समुद्री जहाज होता है और गंगा जी में भी चलता है, जिससे लोग यात्रा करने के साथ साथ मनोरंजन का भी आनंद लेते हैं,
1: लेते
0: है ना।
1: हैं।
0: क्रूज पर यात्रा करते समय चारों ओर नीला समुद्र दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन जाने के समय हमें कुछ सावधानियां और तैयारियां भी करनी पड़ती है ना। कहीं
1: जी
0: घूमने जाते हैं तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है ना।
1: हाँ,
0: तो कैसे कैसे तैयारी करनी पड़ती है, जैसे उसमें हम क्या क्या ले जा सकते हैं अपने साथ?
1: अब जैसे हम लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग को वो
0: जैकेट पहनते
1: हाँ
0: हैं,
1: जैकेट पहनना
0: है
1: होता है।
0: ना,
1: हाँ
0: और अपने साथ जैसे कि जरूरी कपड़े भी है, टोपी
1: हाँ
0: है, चश्मा
1: टोपी
0: है।
1: चश्मा और एक एक्स्ट्रा कपड़ा का जोड़ा रख लेना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: जूते रख लीजिए। और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए क्रूज में जाने पे?
1: जी मुझे ये लगता है कि जब हम लोग क्रूज पे जाते हैं तो हमें ये जरूर याद रखना है कि हमें क्रूज पे ज्यादा गहरा है वहां पे जाना नहीं
0: हाँ,
1: है,
0: रेलिंग किनारे
1: रेलिंग
0: खड़ा नहीं होना
1: किनारे नहीं
0: है
1: रहना
0: ना।
1: है,
0: बड़ों के साथ
1: बड़ों
0: रहना
1: के
0: है,
1: साथ रहना है,
0: किसी अनजान व्यक्ति से नहीं बात
1: नहीं
0: करना चाहिए।
1: किसी अनजान व्यक्ति से कुछ चीज नहीं लेना चाहिए।
0: हाँ, और सुरक्षा नियमों का और कर्मचारियों के निर्देशों का पालन भी करना चाहिए।
1: जी
0: और जहाज पर ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, दौड़
1: और
0: के नहीं
1: कूदना
0: कि
1: भी नहीं
0: ऊपर जा रहे
1: चाहिए।
0: हैं
1: हाँ
0: नीचे जा रहे हैं, क्योंकि फिसलने का भी खतरा रहता है। और लाइफ जैकेट या आपातकालीन निकास के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, अगर कोई किसी तरह से दुर्घटना होती है तो हम कैसे बाहर निकल सकते
1: जी
0: हैं। बच्चों, क्रूज पर यात्रा का आनंद तभी आता है जब हम सुरक्षित रहे और सावधानी के साथ यात्रा करें। आशिका, आप कहीं घूमने जाती हैं तो फोटो जरूर लेती होंगी,
1: हाँ
0: है ना। फोटो लेना या फोटो खिंचाना कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है।
0: आपने तो अभी
1: एक
0: अपने खिताब भी जीता है, आपने वहां पे फोटोग्राफी भी हुई होगी,
1: हाँ हुई थी
0: हुई थी ना। तो आपने किस तरह से इसका आनंद लेती हैं फोटोग्राफी का?
1: ये, एक मेमोरी बन जाता है।
0: हाँ,
1: लाइक मतलब ये हम लोग का एक रह जाता है पार्ट की, मैंने ये जीता था,
0: हाँ
1: मैंने ये किया था, ये था।
0: एक यादगार के रूप में एक
1: हाँ
0: फोटो हमारे पास रहता है उस वक्त का, उस पल का,
1: हाँ
0: है ना। आपको कैसा लगता है, आपको शौक है फोटोग्राफी का?
1: जी हाँ
0: आप कहीं घूमने जाती हैं तो फोटो लेती हैं?
1: जी हाँ
0: आजकल तो मोबाइल में ही कैमरा हो गया
1: हाँ
0: है ना। तब तो हर जगह हम लोग फोटो लेते हैं, चाहे वो
1: हाँ
0: बर्थडे हो या कहीं घूमने जा रहे हो या छोटे छोटे पल का भी हम लोग लेते हैं, है ना।
1: जी मुझे अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है ना।
1: हाँ
0: बच्चों, फोटोग्राफी एक ऐसी कला है या कहीं शौक है जिससे आप अपने आसपास की सुंदर चीजों को कैमरे में कैद कर लेते हैं, है ना। जैसे प्रकृति है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, या घर में आपके जो पालतू जानवर है उसके भी फोटो ले सकती हैं,
1: हाँ
0: है ना। और कोई सुंदर दृश्य नजर आ रहे हैं उसका भी ले सकती है तस्वीरें। परिवार के साथ बिताए गए खुशियों भरे पलों का भी आप फोटो ले सकती है। अगर कहीं आप पिकनिक मनाने जा रही हैं, कहीं घूमने जा रही हैं, तो वहां के भी फोटो ले सकते हैं।

0: बच्चों, फोटो खींचते समय बच्चों को ध्यान से देखना और सही समय का इंतजार करना चाहिए। अच्छी तस्वीरें लेने के लिए रोशनी और कोण का भी ध्यान रखना चाहिए। जब सड़क, नदी, तालाब या पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ भी सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं हम फोटो ले रहे हैं, कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, कहीं पानी में बह ना जाए, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी घटना होती है। सेल्फी लेने के चक्कर में कभी कभी पहाड़ों के ऊपर से भी गिर सकते हैं, है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सावधानी से फोटो लें। सुंदर दृश्य का फोटो जरूर लें, लेकिन सावधानी के साथ। और आप क्या सुना रही है राजनंदिनी अपने दोस्तों को?
1: कहानी
0: सुनाइए।
1: कहानी का नाम है एक शेर था और एक चूहा था।
0: सुनाइए।
1: एक बार की बात है, एक शेर सो रहा था जंगल में। जंगल में सब कोई उसके खौफनाक खराटों से भी डरते थे, पर उसको क्या पता था। पर वो छोटा चूहा शहर से आया हुआ था।
0: अच्छा।
1: अब बेचारा उसके पास गया और उसका जो उसका शरीर था शेर का, उसको पसंद आ गया। अब वो उस पर खेलने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, और अब उसकी नींद खराब हो गई शेर की। अब वो उठा और दहाड़ा कि ये क्या है, कौन है, कौन है। फिर उसके बाद उसने बोला, चूहा तो कर गाने गाने खेलते रहा। फिर उसने दहाड़ा और बोला कि कौन है। तो उसने बोला, सॉरी माय मैजेस्टी, मैं था, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ के राजा हैं। तो उसने बोला, वह चल जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बेचारा वो डर गया, अब वो भाग गया। उसके बाद उसके कुछ दिन बाद वो शेर घूम रहा था, उसको वहाँ पे एक जगह मीट दिखा। अब वो तो उसको मीट तो उसको पसंद है। अब वो गया और उसको खाने लगा, पर उसको क्या पता था वो शिकारियों का जाल था। अब वो पकड़ लिया उसको। उसके बाद शिकारियाँ तो गए थे और पकड़ने, तो वो वहीं पे टंगा रहा। और शेर बोला, बचाओ बचाओ, मैं जाल में फंस चुका हूँ, बचाओ। पर उसके डर से जो बाकी थे वो कहीं और चल गए थे, कि बोले थे कि हम लोग कुछ दिन बाद आएंगे, अभी शेर बहुत गुस्से में है। उसके बाद बस चूहा था। अब बेचारे बचाओ बचाओ, फिर वहां पे आया छुपके से। वो वापस से आ गए थे शिकारी, पर वो छुपके से जो जाल था उसको काटा और वो लेके चल गया। और फिर जब आगे थोड़ा चल गए आगे, जहाँ पे थोड़ा सेफ प्लेस लिखा, वहाँ पे बोले कि सॉरी। तो उस शेर ने धन्यवाद दिया उस चूहे को कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। उसके बाद चूहा तो भाग गया, पर और शेर बोला, रुको चूहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों अच्छे से दोस्त बन गए और यहाँ पे कहानी ख़त्म। इस मोरल ऑफ द स्टोरी जो है होता है कि हमें अगर कोई कमज़ोर होता है ना तुमसे, तो एक चीज़ याद रखना चाहिए कि वो किसी चीज़ में अच्छा भी होगा।
0: बिल्कुल। कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर है तो उसे कुछ नहीं आता है, वो भी आपके वक्त पर मदद कर
1: कर
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है।
0: बहुत अच्छी कहानी सुनाई राजनंदिनी। आशिका, आपको उष्णकटिबंधीय दिवस के बारे में पता है?
1: नहीं दीदी जी, मुझे नहीं पता है
0: कोई
1: दीदी।
0: बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन हमें पृथ्वी के उस विशेष भाग के बारे में बताता है जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का मौसम आमतौर पर गर्म रहता है। भारत का बड़ा भाग भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़।

0: छत्तीसगढ़ झारखंड। यहाँ नारियल, केला, आम, पपीता, चाय, कॉफी, मसाले और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे अच्छी तरह से उगते हैं। बच्चों, उष्णकटिबंधीय दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रकृति, जंगल, वन्य जीवों, जलवायु और पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। ये दिन हमें पेड़ लगाने, पानी बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। आप कैसे करती हैं अपने पर्यावरण की रक्षा?
1: जैसे कि हमें जो कूड़ा होता है उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें
0: ऊर्जा की बचत करनी
1: चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आज के लिए धरती में ये बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ, हमारी हरी भरी धरती जो वनों की कटाई के कारण धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है ना, तो हमें जितना चाहिए हमें उतना पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना।
1: और हमें प्लास्टिक थोड़ी कम यूज करनी चाहिए, बल्कि उसके जगह पेपर बैग यूज करना चाहिए।
0: अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है हमारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, प्रकृति हमारी मित्र है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। राजनंदनी, आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाती हैं?
1: जी हाँ।
0: किस तरह का टाइम टेबल बनाती हैं, बताइए।
1: जैसे कि हम लोग तो पहले स्कूल चल जाते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे आते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट, आधा घंटा, फिर 3 से 4 पढ़ते हैं, उसके बाद खेलते हैं, फिर 8 बजे दीदी थोड़ा सा पढ़ा देती है, और सुबह भी कभी कभी जब एग्जाम होता है तो हमें ये याद रखना चाहिए थोड़ा सा रात को और पढ़ लें और सुबह को उठ के सारा चैप्टर रिवाइज कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल। और अपने टाइम टेबल को फॉलो करती हैं?
1: जी हाँ।
0: कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैंने टाइम टेबल बनाया, 2 दिन तो फॉलो किया, उसके बाद भूल गए?
1: नहीं
0: ना, आप करती हैं आशिका?
2: जी दीदी।
0: किस तरह से आप करती हैं, बताइए अपने दोस्तों को।
2: अब जैसे अभी तो छुट्टी है,
0: हाँ,
2: अब जैसे स्कूल खुला रहता है तो सुबह में 5 बजे उठना पड़ता है,
0: हाँ,
2: 5 बजे उठ के 5:30 में बस स्टॉप पे जाना है, उसके बाद स्कूल से आते आते 4:30 हो जाता है, उसके बाद फिर 4:30 से 5 बजे तक थोड़ा सा फ्रेश होकर खाना पीना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं आधा घंटा, तो उसके बाद फिर 6:30 से 7:30 तक।
0: अच्छा, 1 घंटा आप खेलने का। हाँ, खेलना भी बहुत जरूरी है, शारीरिक व्यायाम भी होता है।
2: और उसके बाद फिर 7:30 से 9 o'clock सर पढ़ाते हैं।
0: और जब स्कूल हो या फिर एग्जाम के समय हो तो हमें टाइम टेबल सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, है ना। टाइम टेबल बनाने से पढ़ाई, खेल, आराम या कोई भी काम के लिए अलग अलग समय मिल जाता है। अगर हम टाइम टेबल से काम करते हैं, जैसे सुबह समय पर उठना, स्कूल की तैयारी करना, पढ़ाई करना, खेलना और रात को समय पर सोना, अच्छी आदतें हैं। टाइम टेबल का पालन करने से हर काम सही से होता है। बच्चों, अगर आपकी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो आप एक सिंपल टाइम टेबल बना लीजिए, है ना।
1: हाँ दीदी।
2: हाँ दीदी।
0: और आशिका, आप बताइए, अपने दोस्त के साथ कभी झगड़ा हुआ है आपका?
2: जी जी हुआ है।
0: होता है, किस तरह से झगड़ा होता भी है तो उसको आप सुलझाती हैं?
2: हाँ, सुलझाना पड़ता है, नहीं तो वो लोग गुस्सा होकर घर ही चला जाता है।
0: घर चले जाते हैं? नहीं, दोस्ती में तो झगड़ा भी होता है, दोस्ती भी होती है, लेकिन मना लेना चाहिए दोस्तों को, है ना।
2: हाँ।
0: राजनंदी, आपके साथ दोस्तों के साथ झगड़ा होता है?
1: जी हाँ। मतलब
0: किस बात पे होता है?
1: बात ऐसे ही हो जाता है, कब वो उसको चुगली कर देगी, उसको चुगली कर देगी, फिर जाके हम
0: कंप्लेन कर देती है टीचर को।
1: नहीं कंप्लेन, हम लोग के ग्रुप ही में रहते हैं, हम लोग के 4 ग्रुप है।
0: हाँ।
1: उसके बाद हम असिस्टेंट हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: तो हमको उस लीडर के पास जाना पड़ता है, उसके बाद सॉर्ट होता है।
0: लेकिन सुलझा लेती है ना
1: जी,
0: गुस्सा होके फिर उससे 3-4 दिन बात तो नहीं करती?
1: नहीं,
0: ऐसा
1: नहीं,
0: तो नहीं करती।
1: ऐसा नहीं।
0: हाँ, ऐसा करना भी नहीं चाहिए ना,
1: नहीं।
0: दोस्ती है, कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी टॉफी देके उसे मना भी लेना चाहिए।
1: हाँ।
0: है ना आशिका, आप करती है ना, ज्यादा दिन नहीं ना रुठती अपने दोस्तों से?
2: 1 सेकंड में मना देते।
0: अच्छा, 1 सेकंड में मना लेती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, दोस्तों के साथ कभी कभी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाती है ना, तो झगड़े को बढ़ाने के बजाय आप उसे प्यार समझदारी से भी सुलझा लेना चाहिए। बच्चों, झगड़े के बाद जैसे होता है ना कि उसे हम रिवेंज लेना है, बदला लेना है, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। याद रखिए बच्चों, दोस्ती प्यार, विश्वास और सहयोग से मजबूत होती है। अच्छे दोस्त जीवन की अनमोल संपत्ति होती है।

0: होते हैं और छोटी छोटी बातों के कारण दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए,
1: हाँ
0: है ना?
1: हाँ दोस्ती ऐसी एक पल होती है, दोस्ती ऐसी एक पल होती है जिन्हें ना तोड़ना होता है। अगर ये टूट जाए बंधन तो क्या दुनिया जग जाएगा, अगर दोस्ती ना होती तो ये दुनिया प्रेम से ना भरी होती।
0: अरे वाह, आपने बहुत ही अच्छी, बहुत ही सार्थक बातें बताई कि हमें दोस्ती निभानी चाहिए। राजनंदी, आपने बताया कि आपको गाना गाना अच्छा लगता है,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: अपने दोस्तों को एक गाना सुना सकती हैं?
1: ठीक है।
0: सुनाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण।
1: कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर भी उपलब्ध।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग।
4: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती।

राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना
व्यक्ति की

दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में

कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने

खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां,

0: किताबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च सङ्कल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे डीआरडीओ इत्येतेन रक्षानुसंधान विकास

0: स्वस्य स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु। आम्, जलसञ्चयः तु करणीय एव। वर्षाजलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षाजलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहुधन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मैथिली लोकगीत कलाकार हैं स्नेहा वर्मा और सुरेंद्र नारायण यादव। पहले सुनिए स्नेहा वर्मा से विद्यापति गीत।

0: कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है, अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परूणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: भल हर भल हरी

आंगन आंगन सोहर लगनी, आंगन आंगन सोहर लगनी, सुंदर स्वर में घोरल मधुर आंगन आ

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत। कलाकार थे स्नेहा वर्मा और सुरेंद्र नारायण यादव। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपक राम की शक्ति पूजा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: घर सामानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे है की गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अति पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

अंधकार, केवल अंधकार मेरे जीवन के आकाश में नैराश्य के बादल मंडला रहे हैं। वे चारों ओर से सघन होते जा रहे हैं। मार्ग भयावह बनता जा रहा है। रोशनी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। किधर पैर बढ़ाऊं, क्या करूं? आज मैं सचमुच रावण को मारने में असफल रहा। देखते ही देखते भगवान सूर्य के अस्ताचल जाने का समय हो गया और युद्ध बंद कर देना पड़ा। सबने अपने अपने पराक्रम का परिचय दिया। लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, जांबवान, हनुमान, सबके सब तो लड़ते ही रहे। किसने अपनी वीरता नहीं दिखलाई? पर इसका परिणाम क्या निकला? अरे और तो और, मैं स्वयं देखता रह गया। बिना विजय प्राप्त किए लौट आना पड़ा मुझे। कहां चली गई मेरी रणचातुरी? ओह, कैसा भयानक युद्ध था।

0: मुझे मारने वाला कौन है? कौन मार सकता
1: रावण उन्मत्त होकर हंस रहा है। कैसा अट्टहास कर रहा है वो? ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण आकाश आवाज से कांप रहा है।
0: मैं शिव का पूजक हूं, क्या मैं युद्ध में हार जाऊंगा? मनुष्य मुझे पराजित कर दे, यह संभव है? मेरे सामने किसी का कुछ नहीं चल सकता। मैं

0: आगे बढ़ो, पीछे मत लौटो, मारो मारो, शत्रुओं को समेटो।
1: हनुमान और जाम भगवान एक ही राक्षस बचकर जाने न पाए।
2: लक्ष्मण तुम्हें तो राजा हो, तो ग्रीव और आगे बढ़ जाओ।

0: आज राक्षसों के रुधिर से धरती को लाल कर देना है।
1: मरो पर डरो नहीं, बहादुरो आगे बढ़ो। राम की ओर मैं स्वयं बढ़ता हूं, सावधान।
2: रावण इधर ही आ रहा है। ठीक है, इसका सामना मैं स्वयं करूंगा। इसी क्षण मैं इसके मस्तक को धड़ से अलग कर देता हूँ। सावधान।
3: गीलू, गीला मिला।
1: मैं स्वयं अपनी गर्दन नाप काटने वाला हूँ, फिर दूसरा मेरी गर्दन क्या काटेगा।
2: अरे, गर्दन के कट जाने पर भी रावण जीवित है, वो तो हंस रहा है। अच्छा अच्छा, तो लो,
0: ये रहा मेरा दूसरा।
1: मेरी गर्दन कौन काटेगा? मैं रावण हूं, रावण की गर्दन कट कर भी नहीं कट सकती। चलाओ वाण। रुक क्यों गए? हाथ बंध गए क्या? दिखा लो अपना रण कौशल। चलाओ चलाओ वाण, चलाओ।
2: ओह, ये कैसा देवी चमत्कार है! रावण की गर्दन कटती नहीं कि झुक जाती है। मेरा वाण निष्फल चला जाए, राक्षस मुझे चुनौती दे। क्या रहस्य हो सकता है इसका? आश्चर्य, महान आश्चर्य। क्या मैं दुर्बल तो नहीं हो गया हूँ?
4: प्राणनाथ, आप पर दुर्बलता? शिव के धनुष को तोड़कर आपने सिद्ध कर दिया था कि संसार में आपके समान बलवान दूसरा नहीं है।
2: शंकर के धनुष को भंग करने वाला अप्रतिम वीर मैं?
4: हाँ प्राणवल्लभ, आपकी बराबरी कौन कर सकता है?
2: जानकी, विदेह नंदिनी, पुष्प वाटिका में प्रसन्न मन भ्रमण करने वाली आज अशोक वाटिका में वंदनी बनी हुई है। नियति का कैसा चक्र है ये?
4: प्राणनाथ, आप किस चिंता में डूब गए?
2: मैं सचमुच चिंता के सागर में डूबता जा रहा हूँ। बाहर निकलने का कोई उपाय जो नहीं सूझ रहा।
4: रघुकुल भूषण, आप वीर शिरोमणि हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम के मुख से ऐसी वाणी?
2: हाँ, कभी मैं भी वीर था, पर आज ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं शक्तिविहीन हो गया हूँ।
4: क्या कह रहे हैं आप? वीर सदा वीर ही रहता है। अब तो आपकी वीरता का और अधिक विकास हुआ है। आपकी रणकुशलता पहले से बढ़ी है।
2: देवी, तुम प्रेमवश ऐसा कह रही हो। अपनों के प्रति अति रंजना बहुत अस्वाभाविक भी नहीं होती।
4: प्राणेश्वर, मुझे पहले से ही आपका प्रेम प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। निश्चल प्रेम में अपार शक्ति होती है, ऐसा मैंने अनुभव किया है।
2: अनुभव? अनुभव कैसा?
4: आप पुष्पवाटिका प्रसंग का स्मरण कीजिए प्राणवल्लभ। माता गिरजा ने मेरी प्रार्थना सुनी थी, तभी तो मेरी मनोकामना पूरी हुई।
2: अब तक तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूरी हुई देवी?
4: आपको पति रूप में प्राप्त कर मैं धन्य हो गई प्राणनाथ। इससे अच्छा वरदान और हो ही क्या सकता था?
2: पर मेरा साथ तो तुम्हारे लिए हितकर नहीं सिद्ध हुआ।
4: हितकर कैसे नहीं हुआ? पति के यशो विस्तार के साथ पत्नी का नाम स्वतः हो जाता है। जो सुख दुख में साथ न रहे, उसे सर्धर्मनी कहलाने का अधिकार नहीं रह जाता।
2: ये तो ठीक है, किंतु आज तुम बलशाली रावण की लंका में अपार कष्टों के बीच दयनीय स्थिति में पड़ी हो।
4: कष्ट चाहे जो झेलने पड़े हों, पर मैं अपने को दयनीय स्थिति में कभी नहीं देखती। मेरे पति के सम्मुख लंकापति का क्या अस्तित्व है?
2: तुम रावण की शक्ति को नहीं जानती सीते, इसलिए ऐसा कह रही हो। उसका साम्राज्य सभी साधनों से पूर्ण है।
4: उसका साम्राज्य चाहे जैसा भी हो और वो बलशाली भी भले हो, पर मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जो धनुष यज्ञ में पराजित हुआ उसकी हार आगे भी निश्चित।

0: है।
1: वो कैसे है?
0: ये मेरी आत्मा की आवाज है। पुरुष सिंह, क्यों नहीं अपने प्रभुत्व का परिचय दे रहे हैं आप? भानु कुलभूषण, रावण अंधकार है, क्या सुर के समक्ष उसका अस्तित्व टिक सकता है? प्राणवल्लभ, क्या आप अपने कुल की मर्यादा भूल गए? क्या रघुकुल कायर कहलाने लगा? हाँ प्राणाधार, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम की कातर बानी को सुनकर अपार कष्ट हो रहा है।
1: सीते, सीते, सीते, सीते, रघुवंशी कभी कायर नहीं हो सकता। रावण मुझसे पहले ही पराजित हो चुका है, मैं उससे कभी नहीं हार सकता। मैं उसे फिर पराजित करूंगा, उसे पराजित करके रहूंगा। आह, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा तोड़ी? राक्षसों को मारना ही तो मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ताड़का सुबाहु जैसे न जाने कितने राक्षसों का वध मैंने किया। मैं रावण वध का भी संकल्प लेता हूँ और उसे पूरा करके रहूंगा।
2: रावण वध का संकल्प, रावण वध का संकल्प जैसे बच्चे का कोई खेल है। रावण वध, कौन मेरा वध करेगा?
1: कौन कौन हंस रहा है? कौन मुझ पर व्यंग कर रहा है? कौन है?
2: अभी रावण का परिचय मिलना शेष है। मैं चाहूं तो तापस सहित वानर भालुओं को आंधी के पत्ते की तरह एक साथ ही उठाकर कहीं से कहीं तोड़ूं। रावण की उठती भुजाओं को देखकर आकाश कांपने लगता है। और ये कल के दूध पीते बच्चे मुझे चुनौती देने का साहस करते हैं।
1: फिर वही अट्टहास, वही अट्टहास। रावण सभी साधनों से संपन्न है, तभी तो वो इस प्रकार करता है। तो क्या मैं उसे पराजित नहीं कर सकूंगा? बस तो मैंने भी संकल्प क्यों कर लिया है? संकल्प को पूरा करना ही है। यदि मैं युद्ध से कतराऊंगा तो मेरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा, रघुकुल सदा के लिए कलंकित हो जाएगा, भगवान सूर्य का मुख भी मलिन हो जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध करूंगा। दोनों उत्साह से रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय दूंगा। साहस तो करता हूं, शक्ति तो बटोरता हूं, पर भीतर ही भीतर भय का अनुभव भी हो रहा है। ये मेरी पराजय का संकेत तो नहीं है? यदि रावण विजयी हो गया तो सीता का उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार होगा सीता का? ओ सीते, सीते, क्षमा करना मुझे। तुम्हारा पति दुर्बल सिद्ध हुआ, वो अपने को जनक नंदनी के योग्य नहीं बना सका। जब मैं स्वयं दुर्बलता का अनुभव कर रहा हूं कि लक्ष्मण, हनुमान, जांबवान, सुग्रीव आदि साथियों सहयोगियों से क्या आशा करूं?
3: प्रभु, सेवक का अभिवादन स्वीकार करें।
1: हनुमान?
3: हाँ प्रभु, पर ये क्या मेरे आराध्य की आंखों में आंसू?
1: हनुमान, हनुमान, मेरा आत्मविश्वास घटता जा रहा है।
3: प्रभु, ये क्या आपकी आंखों से मोती जैसे आंसू लुढ़कते जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा जीवन निरर्थक है। मैं जीते जी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्रभु, नहीं देख सकता। सावधान, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, सावधान! मैं पहले ही सावधान कर दे रहा हूं। दसों दिशाओं सावधान! मैं न केवल रावण की लंका को वरन समग्र सृष्टि को उठाकर पी जाऊंगा। सावधान!

0: हट जाओ।
1: पुत्र हनुमान,
0: कौन टोक रहा है मुझे? इस समय मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूँ रावण को भगवान शंकर की कृपा प्राप्त है, किंतु मैं इसकी भी चिंता नहीं करता। यदि मेरा ब्रह्मचर्य ठीक है, यदि मैं हनुमान हूं, तो जैसे बचपन में मैंने सूर्य को निगल लिया था, उसी प्रकार

0: मैं हनुमान हूं तो जैसे बचपन में मैंने सूर्य को निगल लिया था, उसी प्रकार इस बार मैं संपूर्ण सृष्टि को निगल जाऊंगा। जिस सृष्टि में मेरे आराध्य देव को कष्ट हो, उस सृष्टि का अस्तित्व भी मैं समाप्त कर दूंगा। जय श्री राम।
1: पुत्र हनुमान, तुम मेरी बात तो सुन लो।
2: कौन? माता?
1: हाँ, मैं अंजना हूँ। अपनी माता को पहचानने में भी तुम्हें समय लग रहा है पुत्र।
2: क्षमा करो माता, अभी मैं न तो किसी को पहचानने की स्थिति में हूँ और न किसी की कोई बात सुनना चाहता हूँ। जो सृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम को कष्ट दे, उसे मैं ध्वस्त के बिना नहीं रह सकता।
1: तुम महाकाश की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हो?
2: उसे विनष्ट करने माता।
1: महाकाश में भगवान शंकर जी निवास करते हैं, तुम उसे नष्ट करोगे?
2: जब तक भगवान राम का संकट दूर नहीं होता, मैं किसी का भी विनाश कर सकता हूँ।
1: तुम पहले क्रोध को शांत करो बेटे, क्रोध में उचित अनुचित का विचार नहीं रह जाता।
2: तुम मेरा समय मत नष्ट करो माता। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम को आंसू बहाना पड़े, वहाँ उचित अनुचित पर विचार करने का प्रश्न कहाँ उठता है?
1: क्या भगवान श्री राम ने तुम्हें आज्ञा दी है?
2: नहीं, मैंने प्रभु से तो नहीं पूछा है।
1: तब क्या राम स्वयं शंकर जी का सम्मान नहीं करते?
2: अवश्य करते हैं, परंतु मैं प्रभु का सेवक हूँ। वो सेवक कैसा जो स्वामी के कष्ट को दूर न कर सके।
1: तुम राम जी की सेवा में रत हो, इससे मुझे भी प्रसन्नता है बेटे। पर मेरा आग्रह इतना ही है कि विवेक का त्याग कभी नहीं करना चाहिए।
2: फिर स्पष्ट बताओ माँ, मैं अपने आराध्य के दुख को दूर करने के लिए कौन सा कार्य करूँ?
1: भगवान राम का संकल्प पूरा हो, उसके लिए यत्न अवश्य करो, परंतु सृष्टि की रक्षा करते हुए। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे क्रोध के भय से समुद्र अपनी सीमा छोड़ने लगा था, पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे थे, महाकाश कांपने लगा था, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सभी देवता चिंतित हो गए थे। ऐसा महाप्रलय होने वाला था कि इस सृष्टि का अंत हो जाता।
2: भगवान श्री राम का संकल्प पहले पूरा हो जाना चाहिए माता, इसके बाद यदि सृष्टि बच जाए तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर ये बताओ माँ कि इसका समाधान कैसे हो?
1: चिंतन और साधन से सभी कार्य पूरे होते हैं बेटे। तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वे स्वयं ही कोई ना कोई उपाय बताएंगे।
2: अच्छा, तो आज्ञा दो माता। प्रणाम। जय श्री राम।
3: प्रभु।
4: कौन?
3: विभीषण जी, आइए।
4: विराजी।
3: प्रभु, आज आपका मुखमंडल विवर्ण की प्रतीत हो रहा है।
4: लगता है विभीषण, आज मैं युद्ध हारने जा रहा हूँ।
3: पराजय और आपकी? कभी नहीं, हारता तो वह जिसका मन हार जाता है। दुर्बल मन दुश्चरित्र का होता है। जो चरित्रवान है वो चरित्रहीन से हार जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु।
4: विभीषण, रावण हमारा शत्रु है, इसलिए उसके बल को नगण्य समझना भ्रामक है। वो भी पराक्रमी है और अनेक महान साधनों से संपन्न है। उसे पराजित करना कोई खेल नहीं है।
3: नहीं नहीं, रावण पराक्रमी और शूरवीर नहीं, वो लंपट है, दुष्ट है, मायावी है। सबसे बढ़कर वो घमंडी, विवेक शून्य और चरित्रहीन है। उसने मुझ पर पद प्रहार किया, आदि शक्ति स्वरूपा जनक नंदिनी को अपार कष्ट सहने के लिए विवश किया। उसके पाप का घर भर चुका है प्रभु, उसका अंत शीघ्र ही होने वाला है।
4: देखिए काल चक्र कैसा दृश्य उपस्थित करता है। मेरे जानते तो ये युद्ध मनुष्य और वानरों के साथ राक्षसों का नहीं रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महाशक्ति और शंकर की सहायता रावण को कैसे मिल रही है।
3: महाशक्ति और शंकर

0: कर अन्यायी रावण के पक्षधर।
1: मुझे भी कम आश्चर्य नहीं हो रहा है विभीषण, जिधर पाखंड है अन्याय है उधर महाशक्ति की दया दृष्टि है।
0: प्रणाम स्वीकार हो प्रभो।
1: आइए आइए जाम्बवान जी, आपसे भी कुछ आवश्यक विमर्श करना था।
0: प्रातः होने की प्रतीक्षा है प्रभु। आज विजय के पहले भगवान भास्कर ने अस्ताचल जाने की जल्दी कर दी। कल या तो लंका विजय करूंगा या अपनी बलि देकर रणदेवी को प्रसन्न करूंगा, परंतु आज की भांति उदास नहीं लौटूंगा। जय या प्राणोत्सर्ग।
1: आप लोगों की वीरता में मुझे कभी कोई संदेह नहीं रहा जाम्बवान जी, परंतु मैं सोच नहीं पा रहा कि ये जानते हुए भी कि रावण कुपथ पर अग्रसर है, महाशक्ति उसे अभय क्यों प्रदान कर रही है। धर्म मार्ग पर सदा चलने वाला मैं उनका पराया हो गया। ओह, कैसी विडंबना है ये।
0: प्रभु, हमें युद्ध करना है, जीत तो हमारी होगी ही। उद्धत और लंपट ने कब महान कार्य किया है? धोखा धड़ी बहुत दिनों तक नहीं चला करती। आप रावण को अवश्य पराजित करेंगे।
1: जाम्बवान जी, ये युद्ध नहीं शक्ति और शंकर का खेल बन गया है।
0: पर आप तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु।
1: निस्संदेह मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे वाण कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। इसमें कोई दूसरा ही चमत्कार है। मैं बार बार रावण के सिर को काटता रहा, पर हर बार वो पुनः जीवित होकर खड़ा हो जाता था।
0: आश्चर्य है,
1: रावण ने महाशक्ति और शंकर को प्रसन्न कर रखा है।
0: रावण तो पापात्मा है प्रभु, वो अधर्मी है। यदि वो नीच और निर्बल होकर भी आपको त्रस्त करने का दावा करता है, तो उसे आप और आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि आप शुद्ध प्रबुद्ध और सिद्ध हैं। धार्मिक के सामने अधार्मिक कब तक टिक सकता है? रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त।
1: पर उपस्थित युद्ध का क्या करूं मैं?
0: मेरे विचार से जब तक महाशक्ति का वरदान न मिल जाए, तब तक युद्ध में आप स्वयं न जाएं।
1: किंतु इस बीच युद्ध का क्या होगा?
0: आप उसकी चिंता न करें, तत्काल लक्ष्मण नेतृत्व करेंगे। सुग्रीव, हनुमान, नल नील, अंगद और मैं सभी मोर्चा को संभाल लूंगा।
2: प्रणाम प्रभो।
1: हनुमान,
2: आज्ञा कीजिए प्रभो।
1: हनुमान, मैं महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी की आराधना करना चाहता हूँ।
2: इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभो?
1: मुझे 108 कमल चाहिए हनुमान, अधिक हो सके तो और अच्छा।
0: ये अत्यंत साधारण कार्य है प्रभु, मैं हनुमान जी को कमल का पता बता देता हूँ।
2: जाम्बवान जी, तो फिर मैं चलू।
0: हाँ तो चलिए।
3: जय श्री राम, जय श्री राम।
4: ओम सर्व सिद्धिदाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्व सिद्धिदाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्व सिद्धिदाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्व सिद्धिदाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्व सिद्धिदाय श्री दुर्गा देव्यै नमः।
5: मर्यादा पुरुषोत्तम राम साधना में लीन हो गए हैं।
4: सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भयभ्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते।
5: अरे, ये कठिन साधना का विधान।
4: सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। गुणाश्रय गुणमय।
5: अरे, राम की साधना तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। ये क्या, आकाश कांपने लगा, सभी देवता चिंतित हो रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तक घबरा उठे हैं। फिर भी इन्हें अपनी साधना तो पूरी करनी ही होगी। निष्ठा, आत्मविश्वास और योग्यता की जांच किए बिना

0: वरदान देना उचित नहीं, इससे अयोग्य व्यक्तियों को प्रश्रय मिलेगा और योग्य व्यक्तियों के मन को आघात पहुंचेगा। इस प्रकार समाज में अस्त व्यस्तता आ जाएगी। इसलिए धीर वीर राम, परीक्षित तो आपको भी होना ही पड़ेगा। तो छिपकर उठा लूं वो अंतिम नील कमल।
1: पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां।

0: तुम अंतिम कमल क्या हो गया? मैं पूर्णावती कैसे करूं? ओह, विलंब करने से साधना भंग हो जा सकती है। पास में कोई सहायक भी तो नहीं। यह एकांतिक साधना जो ठहरी, विरोध और केवल विरोध। मेरा जीवन भी विरोधों का इतिहास है। पर कोई बात नहीं, मैं साहस और धैर्य नहीं छोड़ सकता। साधना और कर्मठता से कतराना कायरपन है। कोई उपाय तो करना ही है। तो क्या करूं इस समय? ठीक तो है, 2 मील कमल है शेष अभी। यह पुरस्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन।
1: साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये क्या करने जा रहे हैं आप?
0: माँ माँ माँ दुर्गे, आदिशक्ति भवानी।
1: हाँ रघुकुल भूषण,
0: माँ
1: आपकी साधना पूरी हो गई। अब आप बाण निकाल कर क्या कर रहे हैं?
0: अनुष्ठान को पूरा तो करना ही था माता। बचपन में माँ मुझे राजीव नैन कहती थी, अतः जब अंतिम कमल न मिला तो मैंने सोचा क्यों नहीं दाई आंख निकालकर मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूं।
1: नहीं भानुकुल भूषण, बहुत दिनों से जनक नंदिनी आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। अपनी इन आंखों से आप उन्हें देखिए, शीघ्र जाइए।
0: परंतु माता।
1: हाँ हाँ कहिए, आप क्या चाहते हैं?
0: रावण को विजित किए बिना सीता का उद्धार कैसे हो सकता है?
1: आप पूरे आत्मबल से युद्ध कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं।
0: परंतु माँ, रावण को।
1: हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। युद्ध में आपकी विजय अवश्य होगी रघुकुल भूषण। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन।
0: धन्य हुआ, दुर्गा माता का आशीर्वाद पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। लक्ष्मण, हनुमान, जांबवान, अब रात बीत चली, सेना तैयार कीजिए, लाइए मेरा धनुष और बाण। रावण को मारे बिना मुझे चैन नहीं। चलिए अब रणरंग जमाने में विलंब नहीं होना चाहिए। जय माँ दुर्गे, जय माँ।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला

0: मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
3: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घर बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया है बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते?
1: मारुति संगीता पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दुड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दुड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए। हाडु तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी तो मुगिला
1: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी
1: की दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाक
1: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ? हाँ।
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ता किता ता किता ता।

0: तो पहले अंतरा और स्थाई दोनों का याद हो गया, अब दूसरा अंतरा सीखेंगे।
1: दूर दूर

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक न गुवनाक, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल अभी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म अंदाज में।

0: रोटी रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मामा रे मामा रे।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा जी। मैंने काम करवाए है, अभी तक मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित।

0: वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क बनी, मैं 2 बार मुखिया बनी हूँ।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

लीजिए सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

लीजिए सुनिए आरती मुखर्जी और साथियों को। फिल्म का नाम है तपस्या।

लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह को। फिल्म का नाम है बाहर आने तक।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

0: आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्ध पोतों, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार यह आयोजन दुनिया भर में 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी की शक्ति से देश मजबूत होगा और सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि नए अवतार के रूप में यह भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का आज आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इनमें से कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस समय दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई परीक्षा विशेष ट्रेनें चला रहा है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 तैयारा की पहली परवाज के साथ ही भारत ने हवाबाजी के शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में ऐसे 40 मजीद तैयारे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे छोटी और दरमियाना सनअत और एयरोस्पेस के शोबे में तेज़ी आ रही है, रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और ख़ुद कफील भारत का अज़्म मजबूत हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 जंगी बेड़ों दुनागिरी संशोधक और ग्रेड शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आसमान तक लगातार ज़्यादा महफूज और ख़ुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल अक़वामी यौम योग का तज़किरा करते हुए कहा कि इस बार ये इनेकाद पूरी दुनिया में 2500 से ज़्यादा मुकामात पर हुए। भारत में यौम योग में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जनाब मोदी ने कहा कि मग़रबी एशिया में जंग की सूरत हाल के पेश नज़र उनकी अपील पर कुछ जगहों पर मुल्क के आवाम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और सोना की ख़रीदारी और बैरून मुल्क सफ़र को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। जनाब मोदी ने खुशी का इजहार किया कि भारत के लोग इस आलमी बहरान का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इतमाद जाहिर किया कि अवामी हिस्सेदारी की इस क़ुव्वत से मुल्क मजबूत होगा और कामयाबी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क करोड़ों ख़ानदानों को हादसा बीमा का फ़ायदा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का हादसा बीमा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत मौत की सूरत में नज़दीकी अहले खाना को 2 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो इन स्कीमों के बारे में अपने ख़ानदान वालों के साथ चर्चा करें। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने नालंदा यूनिवर्सिटी का तज़किरा करते हुए कहा कि नई शक्ल में ये यूनिवर्सिटी भारत की तकदीर लिख रही है। जनाब मोदी ने 2 साल कबल नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का इजरा किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में शास्त्रों की कदीम रिवायत को फिर से जिंदा किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी और दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी ऐसी पहल पर गौर करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली का मसला आज एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने मुल्क के आवाम से माहौलियात के तहफ़ुज़ की सिमत में लगातार कोशिश करते रहने की अपील की। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के तहफ़ुज़ के सिलसिले में कहा कि बारिश का पानी एक एक बूंद बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन मुहिम में ज़रा भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर ब्लॉक में टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि हर महीने पंचायत की सतह पर इस दिन के इनेकाद से पंचायतों की हमारे तरक्की का रास्ता हमवार होगा। उन्होंने कहा कि दही तरक्की के कामों को इससे रफ्तार मिलेगी। महकमा पंचायती राज की जानिब से हर महीने के आखिरी एतवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि मुख्तलिफ पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में गाँव वालों ने अपने मसाइल से अफसरान को वाकिफ कराया और उनके मसाइल हल हुए। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान आज रियासत के मुख्तलिफ इम्तहान मराकज़ पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त दूसरी नशस्त का इम्तहान चल रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बदनवानी से पाक इम्तहान का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रियासत के बेशतर हिस्सों में जनूब मगरब मानसून की सरगर्मी से हल्की से दरमियाना बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशन गोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत रियासत के शुमाल मशरक के हिस्सों में कई मकाम पर तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2

कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी एक बार फिर जान लें, www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात

0: कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों

0: इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री

0: मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी की पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए शंकर महादेवन और चित्रा को। फिल्म का नाम है परदेश।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है साया। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार MM करीम।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है आंधी, गीत गुलजार के हैं, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पर। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। आज है रविवार, लेकर सूचनाओं और मनोरंजन का संसार आपके द्वार आ चुका है। आपका रेडियो साथी समय ते समय दिन के 3 बज चुके हैं दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं।
1: मन चाहेगी

0: खुशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत, महेश्विन, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आपसे भी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपाकली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार।

अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और इनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
2: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
3: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
2: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी

0: छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
1: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
2: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
1: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
0: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
1: अगर मैं मर्द होती
0: तो फिर
1: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
0: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
2: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
0: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको धक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
1: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
2: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
1: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
2: आते ही होंगे।
1: देखो शकुंतला
0: जी,
1: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
0: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
1: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
0: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
1: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
0: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
1: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
2: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।
3: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
3: देखो तो, तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं?
4: हेलो।
1: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
4: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
1: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
3: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
1: सुनाओ।
3: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
1: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
3: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
4: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
2: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
3: शकुंतला? कौन शकुंतला?
1: तुम जानती हो उसे उमा?
3: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
3: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
1: तब
3: खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
4: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे वो सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
3: जी हाँ।
1: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
3: कैसी चिट्ठी है?
1: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
4: अरे, ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
2: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
1: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
2: कह क्या रही हैं आप?
1: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
2: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
1: चलो, उस बेचारे दुखियारे की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।

0: मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
1: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं। मदद? तुम क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था। ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
1: हों। नहीं, ये बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ। अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट। वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी। भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर। अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
2: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
1: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
0: अच्छा, बाय बाय।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था।
2: क्या मालूम था तुम्हें?
3: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
2: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
3: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
2: ये भी कम हटीली नहीं है।
3: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
2: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
3: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
2: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
3: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
2: फिर
3: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
2: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
4: कंपाउंडर
3: जी, अभी आया।
4: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
3: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
4: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
3: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
4: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, हाँ, हाँ। मैं गाँव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
2: जी बहुत अच्छा।

0: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
1: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
2: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
1: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
0: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
1: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
0: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
1: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
3: आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा आदि दे आती है।
1: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
0: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख जी कब तक चलेगा।
1: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
0: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
1: शाबाश।

0: ये हुई काम की बात।
1: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
2: डॉक्टर साहब
3: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
2: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
3: एक्सीडेंट हो गया क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
4: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
2: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
4: दवाएं क्या हुई?
2: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
4: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
3: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
4: अच्छा,
3: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
4: ठीक है,
2: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
3: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
5: डॉक्टर साहब, एक बात है।
3: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
5: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा?
3: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
5: वो उमा जी के घर में,
4: मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
5: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
3: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
6: डॉक्टर साहब,
3: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
5: डॉक्टर साहब
3: कौन है?
5: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
3: आप कौन है? अरे जानम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
5: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
3: क्या,
5: कुमार स्वामी के घर?
7: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
3: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
7: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
5: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
3: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
5: आपकी बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
3: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
2: डॉक्टर साहब,
3: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
7: उस कमरे में।
3: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
2: आइए डॉक्टर साहब, इधर से
3: चलिए।
7: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं, आंखें खोलो बेटा।
3: कंपाउंडर
4: जी, ये लीजिए दवा का बच्चा।
3: लो।
4: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है और...
3: कोई भी दवा बेकार है।
2: डॉक्टर साहब,
4: डॉक्टर साहब,
2: नहीं नहीं नहीं।
3: कंपाउंडर
4: जी,
3: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
4: जी,
3: चांद निकले काफी देर हो चुकी है।
7: नहीं,
3: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम
2: जाओ। डॉक्टर साहब,
3: कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम लीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस दिया।
2: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब मुझे।

0: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
1: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
2: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
1: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया। आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
2: जाना मां, चलो
1: चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।

0: और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है। इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं। फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा?
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ?
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: अरे डियर भारती तुम आ गई, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई हाँ सुने उमा
0: बारी बा पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हूँ।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती, अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है,
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए चलिए।
0: भाई तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है,
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी है अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
4: एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
1: क्यों क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
4: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोग्य स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और
1: गजब हो गया।
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है?
5: हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
6: चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: सो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दिया था।
1: आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
2: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
3: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
4: डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की। आपको अकेले ही वहां जाना ठीक नहीं था।
3: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है। बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके। तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
3: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
4: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं। वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
3: हाँ। डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
4: जरूर जरूर।
3: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
4: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
3: गुड बाय डॉक्टर।

0: जासूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: उमा,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत

0: की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारतीय खोज में, उसके बारे में बताइए।
1: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले,
0: फुले।
1: और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं
0: बिल्कुल,
1: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये ना तीनों नाम महाराष्ट्र में काफ़ी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम। क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज़्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी और श्याम बाबू ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकता है।
0: अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
1: हाँ, वो
0: आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें
1: करेक्ट
0: तो वो पेज खुल जाएगा।
1: करेक्ट,
0: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
1: हाँ वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते हैं।
0: yes.
1: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना ज़रूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
0: एक व्यापक दृष्टिकोण,
1: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं त्रिपाठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी

0: सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का
1: बिल्कुल
0: और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं, अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स है जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ, बिल्कुल यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊँ वहाँ पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा अच्छा कितना रोल है तुम्हारा। कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो, ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है, बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ।

0: अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे पॉट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन।
1: गजब।
0: और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
1: अरे
0: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर
1: वा,
0: एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। इस तरह से नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था।
1: हाँ।
0: वहां पर तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
0: हाँ,
1: और रातों
0: हाँ।
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता,
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है। और
0: राइट।
1: यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका
0: क्या
1: हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है।
1: वाह।
0: करेक्ट। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कुछ किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने लगे,
1: तुम्हारे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-6, 7-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था। पर
1: जी
0: बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली।
1: करता
0: तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे सादे व्यक्ति थे तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यू

0: की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है।
1: अरे
0: तो
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपरहिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की।
1: जब वो
0: सड़क
1: बहुत बड़े स्टार बन
0: बहुत बड़े
1: चुके थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: तब
0: थी,
1: उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था, और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते
1: है,
0: थे।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: टू
1: है।
0: थाउजेंड थ्री फोर की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूँ मैं।
1: डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह,
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगांवकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल। ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ
1: था।
0: हाँ अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे, उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था। कि दो दो तीन दिन, एक हफ्ता किसी एक फिल्म

0: का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे, तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना,
1: हाँ
0: वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा, तो उससे
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह
0: तो
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी पटना के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शिवांगी
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन ऊर्जा, उत्साह और मुस्कुराहट के साथ बीत रहा होगा।
0: बिल्कुल अंकिता, और अगले कुछ मिनटों तक हम लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन का एक खूबसूरत संगम। तो शुरू करते हैं, आज के कार्यक्रम बेहद खास होगा।
1: आज हम बात करेंगे नेशनल फूड डे की। आखिर खाने का शौक सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी संस्कृति, यादों और रिश्तों से भी जुड़ा होता है। जानेंगे कि खाने का आनंद कैसे हमें एक दूसरे के और करीब लाता है।
0: दोस्तों, इसके साथ ही आज नेशनल इंश्योरेंस डे भी है। जीवन में अनिश्चितताएं कब

0: दस्तक दे दें कोई नहीं जानता है। ऐसे में बीमा यानी इंश्योरेंस सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा और सुकून का भरोसा है। और साथ ही बात करेंगे आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर। उन्हें याद करेंगे, उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और देश के विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान पर भी। और जैसे कि युवानी युवाओं का आपका मंच है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं जॉब अपडेट्स भी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नए अवसर की तलाश में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है।
1: और साथ ही सुनेंगे श्रद्धांजलि। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के अंत में कुछ मजेदार रोचक तत्व भी होंगे।
0: तो तैयार हो जाइए जानकारी, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस धमाकेदार गाने के साथ।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर प्रखंड रोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं जिसका मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्री यानवा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: दोस्तों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म ओम शांति ओम से, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ कबीर की पंक्तियां हम अंकिता से सुने।
4: जी जरूर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में यह दोहा धैर्य रखने की सीख देता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं। कबीरदास जी हमें आत्मचिंतन करना सिखाते हैं।
3: बिल्कुल अंकिता, और कबीर जी की एक और प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी दोस्तों, दूसरों की कमियां खोजने से पहले हमें अपने भीतर की कमियां पर गौर करना चाहिए। यही तो उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि हमें आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। यदि हर व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करे तो समाज स्वतः बेहतर बन जाएगा। इसी के साथ
4: ही ये बताना चाहेंगे कि कबीरदास जी केवल एक महान कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक और आध्यात्मिक विचारक भी थे। उन्होंने दोहे आज भी इतने प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे।
3: बिल्कुल अंकिता, और उन्होंने समाज में फैली उच्च नीच, जात पात, अंधविश्वास और पाखंड का खुलकर विरोध भी किया। उनका संदेश था कि इंसान की पहचान उसके कर्म और चरित्र से होती है, न कि उसके धर्म या जाति से। इसी के साथ दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद।

0: जय कुन्ना पंचायत की जनता।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म विवाह से उदित नारायण और

0: ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म विवाह से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में ये प्यारा सा गीत। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को और आज के खास दिन के बारे में बात करते हैं। आज का दिन भारतीय राजनीति और देश के विकास के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को, जिनकी आज जयंती है।
3: दोस्तों, कई बार इतिहास में कुछ ऐसे नेते होते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए देश को दिशा बदल देते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी उन्हीं नेताओं में से एक थे। उन्हें अक्सर भारत के आर्थिक सुधारों का शिल्पकार भी कहा जाता है।
2: सही कहा शिवांगी। जब वर्ष 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब देश के विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम हो गए थे कि कुछ ही दिनों का आयात करना मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई साहसिक फैसले लिए।
3: उन्होंने अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। दोस्तों, इन्हीं सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी दी। आज भारत जिस मजबूत आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ रहा है, उसकी नींव ही उस दौर की रखी गई एक मिसाल है।
2: इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि वे लगभग एक दर्जन भाषाओं का ज्ञान रखते थे। राजनीति के साथ साथ साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने किताबें लिखी और कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां भी अनुवाद में की।
3: और उनकी सबसे खासियत थी उनका स्वभाव, जो कि शांत, धैर्य और दूरदर्शी सोच हुआ करता था। वे मानते थे कि बड़े बदलाव हमेशा शोर मचा कर नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेकर किए जाते हैं।
2: आज जब हम आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत भूमिका की बात करते हैं, तो हमें उन नेताओं को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इन बदलावों की मजबूत नींव रखी।
3: बिल्कुल अंकिता। और दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव जी का जीवन हमें ये सीख देता है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि नेतृत्व में धैर्य, दूरदृष्टि और सही निर्णय लेने की क्षमता हो, तो चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। इसी के साथ
2: उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं।
4: Take it away!

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हाउसफुल से मिका और सुनिधि चौहान की आवाज में ये मजेदार गाना।
1: अंकिता, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे वातावरण में वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही ये हमारे भविष्य के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
0: वो है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। अक्सर लोग बीमा यानी इंश्योरेंस का केवल एक खर्च समझते हैं, जबकि वास्तव में यह एक ऐसा निवेश है जो कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल बनता है।
1: सही कहा तुमने, जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं जानता है। बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। ऐसे समय में बीमा यानी आर्थिक संबल प्रदान करता है दोस्तों।
0: शिवांगी, सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमा आखिर होता क्या है। बीमा एक ऐसा अनुदान है जिससे व्यक्ति नियमित रूप से एक निश्चित राशि यानी कि प्रीमियम जमा करता है। इसके बदले बीमा कंपनी किसी निर्धारित जोखिम की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
1: यानी बीमा केवल पैसा नहीं बल्कि मानसिक सुकून भी देता है। कठिन समय में परिवार अकेला नहीं रहेगा और उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा।
0: बिल्कुल, आज कई प्रकार के बीमा उपलब्ध हैं, जैसे कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, फसल बीमा, यात्रा बीमा, गृह बीमा और व्यवसाय बीमा आदि। हर व्यक्ति अपनी आवश्यक

0: आवश्यकता के अनुसार बीमा चुन सकता है।
1: आजकल स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य बीमा का महत्व और भी बढ़ जाता है दोस्तों।
0: सही कहा, एक गंभीर बीमारी का इलाज कई वर्षों की बचत समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है तो इलाज इसका बड़ा हिस्सा बीमा के माध्यम से कवर हो सकता है।
1: इसी तरह जीवन बीमा परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। यदि परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो बीमा राशि परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
0: किसानों के लिए भी फसल बीमा बहुत उपयोगी है। प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने अंकिता। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे हमें यही संदेश देता है दोस्तों कि बीमा केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि जिम्मेदार जीवन की पहचान है।
0: यदि आपने कभी आज तक अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बीमा नहीं कराया है तो आज ही जानकारी प्राप्त करें और सोच समझकर सही निर्णय लें।
1: याद रखिए, सुरक्षित भविष्य वही जिसकी तैयारी आज से हो। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म राउडी राठौर से श्रेया घोषाल और साजिद वाजिद की आवाज में ये गाना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कार्यक्रम के अगली तरफ। आज का स्पेशल सेगमेंट है स्वरांजलि, जिसमें हम सुनेंगे कविता आशीष रंजन जी से।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं तीक्ष्णांशु उत्सव स्वरांजलि के इस मंच से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। श्रोताओं, अक्सर हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन सच ये है कि हर देखा हुआ दृश्य सिर्फ एक दृश्य नहीं होता। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बस गुजरते नहीं, हमारे भीतर उतर जाते हैं और फिर चुपचाप हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ समय पहले मैं भी एक ऐसे ही चौराहे पर खड़ा था, जहां जिंदगी अपने अलग-अलग रूपों में मेरे सामने से गुजर रही थी। भीड़ थी, शोर था, हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन उस भागती हुई दुनिया के बीच कुछ एहसास ऐसे थे जो बिल्कुल स्थिर थे, और शायद वही सबसे ज्यादा सच्चे थे। वही खरे खरे अचानक ये एहसास हुआ कि हर चेहरा जो हम देखते हैं वो उतना सरल नहीं होता जितना पहली नजर में लगता है। कुछ चेहरों पर सुकून होता है लेकिन अंदर हलचल, कुछ में ठहराव दिखता है लेकिन भीतर एक लगातार चलती हुई तलाश। और शायद हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तलाश में हैं, कुछ ऐसा जो हमें पूरा कर सके, या शायद हमें हमारे ही किसी अधूरे हिस्से से मिला सके। उसी पल एक खामोश सा सवाल मेरे भीतर जगह बना गया, बिना किसी शोर के लेकिन बहुत गहराई से। और उसी एहसास को, उसी अनकहे सवाल को शब्द देने की छोटी सी कोशिश है ये कविता। प्रस्तुत है भूख का चौराहा। वह चौराहा रोज जैसा ही था, बस उस दिन मेरी नजर थोड़ी देर के लिए ठहर गई। एक और मजदूर खड़े थे, हाथों में औजार नहीं थे, आंखों में इंतजार था, उन्हें काम चाहिए था। मजदूरी कम हो तो भी चलेगा, मजदूरी उनके लिए कोई मोल भाव नहीं था, वह उनकी घर की रोटी का दूसरा नाम था। यह भूख सीधी थी, निर्दयी थी और शायद सबसे सच्ची भी। उसी चौराहे से एक युवा मंत्री का काफिला गुजरा, काले शीशे, धूप का चश्मा, चेहरे पर आत्मविश्वास। उनकी भी एक भूख थी, पर वह भूख पेट की नहीं थी, पहचान की थी, सत्ता की थी, तालियों और कैमरों की थी। कुछ भूख दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत कुछ निगल जाती है। बगल के परीक्षा केंद्र में बच्चों की भीड़ लगी थी, हाथों में प्रवेश पत्र थे, दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। सरकारी नौकरी की परीक्षा थी, उनकी भूख सुरक्षित भविष्य की थी, सम्मान की थी, एक ऐसे कुर्सी की थी जिस पर बैठकर माँ बाप चैन से सिर उठा सके। थोड़ा आगे एक पिता खड़े थे, बेटी ने ठंड में नारियल पानी मांगा, पिता ने बिना सोचे उसे दिला दिया, जब खुद खाने बैठे तो बिना घी की लिट्टी से काम चला लिया। उनकी भूख त्याग की थी, ऐसी भूख जो खुद को कम करती है ताकि किसी और की दुनिया पूरी हो सके। और मैं अपने मित्र को परीक्षा दिलाने आया था, लेकिन मेरे दिमाग में अपने पढ़ाई का स्केड्यूल चल रहा था, बैकलॉग बढ़ रहा था। मेरी भूख शायद खुद से आगे निकल जाने की थी, किसी दिन पीछे मुड़कर खुद को छोटा ना पाने की थी। तभी समझ में आया कि भूख सबको है, बस भूख के रूप अलग अलग हैं। किसी की भूख जिंदा रहने की है, किसी की बेहतर बनने की, और किसी की बस और ज्यादा होने की। मन में एक सवाल उठा,

अगर किसी दिन दुनिया से सारी भूख खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या तब भी प्रगति होगी? क्या तब भी प्रतिस्पर्धा बचेगी? क्या तब भी इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा? शायद नहीं। फिर एहसास हुआ, समस्या भूख नहीं, समस्या यह है कि कुछ लोगों की भूख सिर्फ पेट तक सीमित रह गई है। अगर मजदूर की भूख सिर्फ रोटी तक सीमित ना रहे, अगर छात्र की भूख एक परीक्षा में केंद्र ना हो, अगर नेता की भूख सत्ता नहीं समाधान बन जाए, और अगर पिता का त्याग मजबूरी नहीं एक विकल्प हो, तो उस दिन भूख खत्म नहीं होगी, पर उसका स्तर जरूर ऊंचा हो जाएगा। भविष्य की दुनिया में भूख मिटाने की नहीं, भूख को न्याय देने की जरूरत है, क्योंकि जब भूख बराबरी से बटी होती है तो वही भूख प्रगति बन जाती है, प्रतिस्पर्धा बन जाती है, और इंसानियत के साथ साथ इनोवेशन का रास्ता खोलेगी। और शायद एक सभ्य समाज की यही पहचान होगी कि वहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए कोई भूखा ना हो, और हर किसी को बेहतर बनने की भूख इज्जत के साथ मिले। धन्यवाद।

0: अभी हमने सुना फिल्म एनिमल से ये गीत जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। दोस्तों अभी अभी आपने सुना ये गीत और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल शिवांगी, आज का विषय सुनते ही शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, क्योंकि बात होने वाली है खाने की। आखिर खाना किसे पसंद नहीं होता?
0: सही कहा अंकिता आपने। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल फूड डे की। ये दिन हर साल 28 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य सिर्फ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना नहीं, बल्कि ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि भोजन हमारी सेहत, ऊर्जा और जीवन शैली का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: अक्सर हम फूडी शब्द सुनते ही सोचते हैं कि जो हर समय बाहर का खाना खाए वही फूडी है, लेकिन असली फूडी वो है जो हर तरह के भोजन का सम्मान करे और स्वाद के साथ साथ पोषण का भी ध्यान रखे।
0: बिल्कुल। और दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खासकर युवा वर्ग फास्ट फूड और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के खाने ज्यादा खाते हैं और कभी कभी खाना छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर ये आदत पड़ जाए तो ये हमारे शरीर पे दिखने लगता है, जिससे हमारी सेहत को नुकसान होता है और हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं।
1: जैसे कि थकान, मोटापा, कमजोरी, ध्यान न लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे खान पान की आदतों से जुड़ी होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी थाली रंग बिरंगी और संतुलित हो।
0: बिल्कुल। श्रोताओं, हमारी थाली में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, साबुत अनाज और महत्वपूर्ण पर्याप्त पानी भी होना चाहिए। ये सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि दिमाग को भी सक्रिय रखता है और साथ में हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही एनर्जेटिक रहती है।
1: दोस्तों कहा जाता है सादा भोजन उच्च विचार। और एक बात और जो अक्सर हम भूल जाते हैं वह है नाश्ता। सुबह का पौष्टिक नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का आधार होता है, इसलिए नाश्ता छोड़ने की आदत से बचें।
0: और अगर युवा वर्ग, अगर आपको बाहर का खाना बहुत बेहद पसंद है तो बस आप मात्रा का ध्यान रखिए। ये मतलब इंश्योर कीजिए कि आप साफ सुथरे जगह पे खाना खा रहे हैं और कोशिश करें कि घर का भोजन भी खाएं।
1: आखिर कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जब हमारा भोजन अच्छा होगा तो हमारा शरीर और हमारा सोच दोनों स्वस्थ रहेंगे।
0: आइए इस नेशनल फूड डे पर हम अपने पसंदीदा खाने का स्वाद ही नहीं बल्कि अपने शरीर का भी सम्मान करें, क्योंकि स्वाद कुछ पल की खुशी जरूर देता है, लेकिन पौष्टिक भोजन पूरी जिंदगी का साथ निभाता है।
1: याद रखिए दोस्तों, फिट रहना किसी फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि अच्छी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है।
0: बिल्कुल अंकिता। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ आइए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लुटेरा से मोनाली ठाकुर की आवाज में ये प्यारा सा गाना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं आज के जॉब अपडेट्स।
1: कर्मचारी चयन आयोग SSCC 10+2 कैंडिडेट हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,000 पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। इसकी क्षणिक योग्यता ये है दोस्तों कि आपको 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.ssc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
0: साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों में आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी में BE या BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को निम्न नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रतन धन पायो से शान की आवाज में ये प्यारा सा गीत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के कुछ रोचक तथ्य। हम आज बात करेंगे अपने शहर पटना के बारे में। दोस्तों, अंकिता, क्या तुम्हें पता है कि पटना दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है? इसका इतिहास लगभग 2500 साल से भी अधिक पुराना है दोस्तों।
1: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि पटना सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं, बल्कि इतिहास की भी राजधानी है।
0: सही कहा आपने। एक और रोचक बात, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय

0: पाटलिपुत्र पूरी मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। उस दौर में यह दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से गिना जाता था।
1: यानी कि पटना की पहचान सिर्फ आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। सच में अपने शहर पर गर्व होना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है
0: और गर्मी के साथ साथ मॉनसून का सीजन शुरू भी होने वाला है। इस गर्मी से बचने के लिए आप पर्याप्त पानी, अपनी सेहत का ध्यान और साथ ही कॉटन कपड़े पहनिए
1: और साथ ही नारियल पानी पीजिए, धूप से बचाव कीजिए। मेरा तो मानना है कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि स्किन को बचा कर रख सके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमने बात की है नेशनल फूड डे पे भी, जिसने हमने जाना कि कैसे हमें अपने थाली में न्यूट्रिशन बरकरार रखना चाहिए और खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पर्याप्त मात्रा में भोजन ऑन अ डेली बेसिस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमें बीमारियां या फिर सेहत में
1: बराबर प्रोटीन, बराबर कार्बोहाइड्रेट, फैट सब एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए।
0: बिल्कुल अंकिता। और जब हम सही भोजन लेते हैं तो हमारा मन भी अच्छा होता है और साथ ही जो हम काम करते हैं वो उसमें भी पूरी ऊर्जा के साथ वो काम होता है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे एक विनम्र करना चाहेंगे कि आप हमें अपना फीडबैक बताइए। उसके लिए हमारा
1: ईमेल आईडी है feedback@patna.gmail.com। कृपया अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें और हमें बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हमें दीजिए इजाज़त।
0: धन्यवाद।

श्रोता नमस्कार, आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता, आइ भारतीमे मिहिर कुमार झासँ कथा सुना बेटीक बियाह, संगहि पंकज कुमार पांडे आइ गीत सुनौता, मुदा आउ पहिने हमरा लोकनि किछु गप कऽ लै छी। श्रोता, दुनिया भरिक नागरिक के जीवन मे संसद के भूमिका, हुनक लोकतांत्रिक अधिकार के सुरक्षित राख आ सरकारक जिम्मेवारी उल्लेख करबाक उद्देश्य सँ सब वर्ष 30 जून के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाओल जाय छै। जो एहि दिवस के जड़ में जाकर देखी तो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम सँ नागरिक लोकन के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करब मुख्य उद्देश्य थिक एहि दिवस के। एकर माने भेल लोकतंत्र के बढ़ावा देव, संगहि आन आन देशक संसद अपन अनुभव के आदान प्रदान क आपसी सहयोग के मजबूत करैत अछि। जनता के प्रति सरकार आ जनप्रतिनिधि के जवाबदेही बनल रहे, एहि गप के विशेष ध्यान रखबाक लेल मनाओल जाइत अछि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित भेलाक बाद वर्ष 2018 से एहि दिवस के शुरू कयल गेल।

संसदीय संवाद के बढ़ावा देवे वाला पहिल वैश्विक संगठन छल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। एकर स्थापना 30 जून 1889 को भेल छल। ताहि लेल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के स्थापना दिवस 30 जून को राखल गेल। त ई छल जानकारी आजुक जे दिवस अछि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एहि संदर्भमे। श्रोताब गप करब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के संबंधमे। पीवी नरसिम्हा राव देशक नवम प्रधानमंत्री छलाह। 28 जून 1921 आंध्र प्रदेशक करीमनगर में हुनक जन्म भेल छलनि आ 23 दिसंबर 2004 के हुनक मृत्यु भेलनि। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 धरि ओ अपन देश भारत के प्रधानमंत्री छलाह। जखन ओ प्रधानमंत्री बनला ओहि काल देशक विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर धरि कम भ गेल छल। देशक सोना के बन्की राखा पड़ल छल। ओहि समय रिजर्व बैंकक गवर्नर छलाह डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश के आर्थिक संकट सँ बचेबाक लेल डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनाओल गेल। ओहि समय सँ देश में आर्थिक उदारीकरण लागू भेल छल। स्वतः पीवी नरसिम्हा रावक शासन काल में देश में पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा भेटल छल। 73 संविधान संशोधन क के संविधान में भाग 9 में एकरा जोड़ल गेल। वर्ष 2024 में भारत सरकार दिस सँ पीवी नरसिम्हा राव के हुनक योगदानक लेल भारत रत्न से सम्मानित कयल गेल। पेशा सँ कृषि विशेषज्ञ आ वकील पीवी नरसिम्हा राव के संगीत सिनेमा आ नाटक में रुचि छलनि। ओ हिंदी अंग्रेजी सहित कतेको भाषा के जानकार छलाह। हुनक जयंती पर हुनका शत शत नमन। श्रोता आओ हमरा लोकनि आब कार्यक्रम दिस बढ़ै छी। पहिने सुनी पंकज कुमार पांडे सँ ई गीत।

बाबूके पूछथिन तऽ कहथिन जे हँ नहि कहला अछि, मुदा एखन तक नहिओ नहि कहलथि हँ। तहन छठिक भोरका अर्घ्य दिन अरुण बाबू अपन भैया संजय बाबू आ एक आओर छोट भाइक सङ्ग संजय बाबू गाम हुनक मित्रक भाइ ओहिठाम हुनक बालकक विवाहक प्रस्ताव लऽ पहुँचलाह। ओसभ बड़ा आदर भाव व्यक्त केलथिन। हुनक बहिनो जे संजय बाबूक सङ्गी सेहो छलथिन बजलाह जे संजय बाबू अहाँके बहुत पैरवी कऽ रहल छथि, कथा तऽ बहुत आबि रहल छैक। संजोगसँ लड़का आयल तऽ छलाह मुदा चुनावक काजमे व्यस्तताक कारणे ड्यूटी पर चलि गेलाह अछि। अहाँ लोकनिक प्रस्ताव आयल अछि तऽ ओहिपर पूर्ण रूपे विचार कयल जायत। चुनावक बाद अहाँ सब जाकऽ लड़का देखाबू, तकर बाद अहाँक प्रस्ताव पर विचार कयल जायत। आ जखन संजय बाबू एहि कथामे पड़ल छथि तऽ बुझू 95% अहाँक काज भऽ गेल। चुनावक बाद अरुण बाबू लड़काकेँ देखबाक लेल लड़काक कार्यस्थल पर गेलाह। ओतय हुनक पिताजी सेहो पहुँचल छलखिन, लड़का देखबामे फोटोसँ बहुत बेसी सुन्दर, सुशील आ 6 फीटक जवान। अरुण बाबू पुलकित भऽ उठलाह, लड़काक पिताजीसँ बात भेलनि। ओ कहलथिन जे हमसब अहाँक ओहिठाम आ अहाँक बचियासँ अपन बच्चाक विवाह करब, ताहिसँ पहिने हम अहाँक बचियाके देखबनि। अरुण बाबूक भैया तुरंत गछि लेलखिन जे अहाँ जतऽ देखब कोनो बाधा नहि। 11 फरवरीकेँ लड़कीकेँ देखबाक प्रस्ताव भेल। दुनू पक्ष सँ परिवार लड़का आ लड़कीकेँ देखलाह। लड़का पक्षकेँ लड़की आ लड़की पक्षकेँ लड़का पसंद पड़लनि। लड़का आ लड़की सेहो एक दोसरकेँ देखलथि, दुनू प्रसन्न छलाह, दुनू परिवार प्रसन्न रहय। फल मधुर वस्त्राभूषण आदिक आदान प्रदान भेल। दुनू खुशी खुशी अपन अपन घर जाइत गेलाह। आब विवाहक दिन निश्चित करबाक लेल दुनू पक्ष फेर एकत्रित भेलाह। पंडित जी के बजाओल गेल। पंडित जी 8 मई, 19 जून आ 26 जून के नीक दिन निश्चित कयलथिन, मुदा लड़काक कक्का कहि देलखिन जे 8 काठ नहि नीक होयत, 19 जून के करू तऽ 17 जून के शगुन आ 19 जून के विवाहक दिन आ 24 जून के दुरागमनक दिन निश्चित भेल, मुदा लागै छलै जे बहुत दिन अछि। अरुण बाबू सब दिन पटनामे रहल छलाह, ताहि हेतु प्रस्ताव देलखिन जे विवाह पटनामे हुए तऽ नीक, नहि तऽ गाममे हुए। अरुण बाबूक भैया कहलखिन जे अपने सब जतऽ कहबै ततै विवाह हेतै। ताहिपर हुनक समधि दरभंगामे विवाह करबाक प्रस्ताव देलथिन आ प्रस्ताव बिना कोनो झिझक सब मानि लेलनि। एकर बाद दरभंगामे बैंक्वेट हॉल तकबाक प्रयास शुरू भेल। एकठाम निश्चित करबाक पूर्व अरुण बाबू अपन समधि सङ्ग सङ्ग संजय बाबूसँ सेहो कहलखिन। ओ सब कहलथिन जे अहाँ ठीक कऽ लिअ, अहाँ विजय थोड़े करबै। ठीक कऽ लेलाक बाद बैना सेहो दऽ देलथिन, मुदा बादमे ओसब कहलथिन जे ई हॉल ठीक नहि अछि, दोसर हॉल करू। ओसब ओहिठाम जाकऽ अपन बात सब बतेलखिन। ओ हॉलवला सब बात बुझि अपन हिसाबे बात केलक। ओकरा अरुण बाबू अपन भैयाक सङ्ग जाकऽ ठीक कऽ लेलाह। नव जगह नव स्थानपर सब व्यवस्था केनाइ बड्ड कठिन। पटनासँ जा जाकऽ हॉल देखू, डेरा देखू, किएक तऽ विवाहक 4 दिनक बाद 22 जूनके चतुर्थी आ 24 जूनके द्विरागमन। 10 दिनक लेल ओकर सब व्यवस्था केनाइ एतेक आसान नहि छल, मुदा भगवानक कृपासँ अरुण बाबूक सङ्गीक बहिनो LIC के DO साहब छलाह, जिनका सहयोगसँ सब काज आसान भऽ गेल। कुटमैती ठीक भेलासँ ओ एतेक प्रसन्न भेलाह जे कहलथिन ई सब हमर भार, जेना व्यवस्था चाहबै जेहन व्यवस्था चाहबै सब भऽ जेतैक। सएह भेलै, तते सुन्दर डेरा ताकि देलनि जे अरुण बाबूक पूरा परिवार गामसँ सासुर धरि सब आबि शगुनसँ विवाह धरि ओतहि रहलाह। अरुण बाबू निश्चिंत छलाह, हुनक एकटा सार आ बालक दुनू काज सम्हारने छल, अपने आ DO साहब पूर्ण निगरानी करैत छलाह। जे दिन पहिने बहुत दूर बुझाइत छल से कोना बीत गेल पते नहि चलल। 17 जूनके अरुण बाबूक सबसँ बड़का भाइ दिल्लीसँ एलखिन। 19 आदमी 5 टा गाड़ीसँ शगुन करब बरक ओहिठाम गेलाह। यथोचित यथासम्भव सब चीज अरुण बाबू देलथिन, समझि सेहो खुशी छलखिन। शगुन सम्पन्न भेल, सब आदमीके आदरपूर्वक धोती कुर्ता पाग दोपटा सहित विदाइ कयलनि। 19 जूनके 1:30 बरियातीक सङ्ग 10:30 बजे बर अयलाह। इन्द्र भगवान खुशी भऽ वर्षासँ बर बरियातीक स्वागत कयलथिन। सब बरियातीके माला पाग आ शालसँ सम्मानित करैत आसन देल गेलनि। बिगजी नाश्ताक सङ्ग बरियाती लोकनि बैसल रहलाह। ओम्हर जयमालाक तैयारी छल। जयमालाक बाद विवाह पूर्व फोटोग्राफी भेल। परिछन विवाह विधिपूर्वक सम्पन्न भेल। पंडित प्रोफेसर रतन झा विवाह सम्पन्न करौलनि। एम्हर बरियाती सबकेँ इच्छापूर्वक माछ मासु रसगुल्ला आम आदिसँ पूर्ण अच्छौ कराओल गेल। भोजनक बाद घूघट दऽ सब बरियातीकेँ विदाइ करैत अरुण बाबू खुश छलाह। विवाह सम्पन्न भेल।
बरियाती गेलाक बाद

अरुण बाबू सब सेहो अपन डेरा अबित गेलाह। सब खूब खुशी छलाह। वर तँ विवाह दिस छलाह। एम्हर समधि आ बरियाती सब अरुण बाबूक सखा सम्बन्धी आ परिवारक व्यवहार सँ बहुत खुशी भेलाह। आ अरुण बाबू जे खानदानी शिक्षक छलाह से अपन विभाग जिला स्तरीय पदाधिकारी के अपन जमाइ देखि आ हुनक सुशील सज्जन परिवार के देखि गदगद छलाह। हुनका दुनू सँ बेसी खुशी छलाह संजय बाबू जे एहि विवाहक सूत्रधार छलाह। 2 वर्ष पूर्व जाहि कथाक ओ चर्चा कयलनि ओ कुटमैती कोनो विघ्न बाधाक बिना सहर्ष सम्पन्न भेल। ओ गदगद छलाह जे वर आ कन्या दुनू पक्ष संतुष्ट आ खुशी छथि। ओ बजलाह हमर प्रयास जे सार्थक छल आइ फलीभूत भेल। एहि तरहे खुशी खुशी सब अपन अपन घर जाइत गेलाह। अरुण बाबू तँ परिवारक संग डेरा जाइत गेलाह। हुनका सबकेँ द्विरागमन तक एतहि रहबाक छनि। कहल गेल अछि बियाह सँ विधि भारी सब दिन सब विधि रोज चुमाओन। 22 जून के चतुर्थी भेल। टेम्पू सँ समय अरुण बाबू के ओहिठाम।

0: अरुण बाबू तो परिवारक संग डेरा जाती गला। हुनका सबके द्विरागमन तक एतहि रहबाक छनि। कहल गेल अछि बियाह सँ विधि भारी सब दिन सब विधि रोज चुमाओन। 22 जून के चतुर्थी भेल। टेम्पू सँ समेत अरुण बाबू के ओहिठाम भारक संग अपना पोखरि सँ माछ मरबा कऽ पठेलखिन। सब खूब बढ़िया सँ बनल। 24 जून के 4 टा छोट भाई बरियाती आयल। द्विरागमन करा कऽ लऽ गेलथिन। लौकिक विधिक संग भरपूर हास्य रुदनक बीच काज सम्पन्न भेल। अरुण बाबू सेहो अपन रुदन रोकि नहि सकलाह। जे दिन बहुत दूर बुझाइत छल से कोना बीत गेल पते नहि चलल। एहि तरहें अरुण बाबू अपन पैघ बचियाक विवाह खुशी खुशी सम्पन्न कयलनि। एहि खुशीमे हुनका कतेक कष्ट दौड़ बढ़ा करऽ पड़लनि, मुदा काज इच्छित रूपे सम्पन्न भेलनि। सब कष्ट बिसरा गेलनि। इएह जीवनमे होइत छैक। लक्ष्य भेट गेलापर ओकरा भेटबामे जे कष्ट उठबऽ पड़ैत छै से मोन नहि रहैत छै। आब अरुण बाबू आ हुनक समय दुनू परिवार खुश अछि। दुनू वर कन्या के आशीर्वाद दैत छथिन जे हिनका लोकनिक जीवन पूर्ण सुखद सुंदर आ सुफलित हुए।
1: हाँ श्रोता, जहन बेटी के बियाह नीक से भऽ जाइ छै, बेटी के घर बस गेल, तहन दुनू परिवार सुख शांति से अपन गतिविधि के आगा बढ़े छथि। धन्यवाद दियन मिहिर कुमार झा के हुनक कथा बेटी के बियाह के लेल। आओ हमरा लोकनि पंकज कुमार पांडे से सुनी ई अगला गीत।

पंकज कुमार पांडे। श्रोता ई छलथि पंकज कुमार पांडे सुना रहल छलथि नचारी। श्रोता देखू एखन गर्मी अपन रंग देखा रहल अछि, दिन हो चाहे राति, बढ़ैत तापमानक कारण कतेक रास समस्या बढ़ि गेल अछि। गर्मी मासमे स्वस्थ रहब सबसँ पैघ चुनौती बनि जाइत अछि। लू लागब, देहमे पानिक कमी जकरा डिहाइड्रेशन कहल जाइ छै, उल्टी दस्त सन समस्या बढ़ि जाइत अछि। एनामे ई जरूरी जे गर्मीसँ बचबाक लेल आ गर्मीमे स्वास्थ्य नीक बनौने रखबाक लेल सावधान रहब आवश्यक। सबसँ पहिल सावधानी ई जे अपनाके हाइड्रेट राखी, माने देहमे पानिक कमी नहि होवऽ दी, पानि पीबैत रही। घरसँ बहराय काल सङ्गमे पानि जरूर राखी। पहिल प्रयास ई राखी जे दुपहरिया रौदमे बाहर निकलसँ बाँची, मुदा बेगरता पड़ैत रहै छै। तऽ बेगरताक कारणे बाहर निकलऽ पड़े तऽ हाथ पैर माथ मुँह नाक सबके बढ़िआँसँ झाँपिके बाहर निकली। सूती कपड़ा पहिरी, सूती कपड़ा देहके गर्मीसँ बचबैत अछि। देह झाँपल रहत तऽ शरीरक तापमान संतुलित बनल रहत। स्वतः गर्मी मासमे भोजन पर सेहो विशेष ध्यान राखब जरूरी थिक। भोजनमे तेल मसाला आ तरल बघारल वस्तुके सेवन करबासँ बाँची। खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज सन पानिवला फलक सेवनसँ स्वास्थ्य नीक बनल रहत। भोजनमे अनाजक सेवन थोड़े कम कऽ दी आ पीबयवला सामान जेना लस्सी भेलै, छाँछ, शरबत, एकर सभक सेवन बेसी करी। दिनमे ठंडा जगह पर रहक प्रयास करी। घरक नेना के आ माल मवेशी के रौद में नहीं बहरा दी। नीक सँ आराम कयला सँ सेहो गर्मी में स्वास्थ्य नीक बनल रहत। साफ सफाई पर ध्यान दी। साफ सफाई घर हो वा घरक अगल बगल हो, स्वच्छता जरूरी थिक। बाइस सामान खेबा से बची, टटका बनल भोजन सँ स्वास्थ्य नीक बनल रहत। श्रोता यह सब किछु उपाय छै जे गर्मी सँ बचाव में मदद करत। तकरा बादो जँ चक्कर आबे, उल्टी वा दस्तक संभावना होए, तो बिन देरी के ने डॉक्टर से जरूर संपर्क करी। आ श्रोता आओ हमरा लोकनि पंकज कुमार पांडे से सुनी ई झूमर।

श्रोताई छलथि पंकज कुमार पांडे, सुना रहल छलथि झूमर। पंकज कुमार पांडे के आजुक सब गीत के लेल मन से धन्यवाद दियन आ आब विदा लेबाक बेर भ गेल। तऽ श्रोता आजुक भारती में आई बसेतबे, अगला कार्यक्रम धरि पवन के विदा दियो। नमस्कार।

अभी आपने मैथिली कार्यक्रम भारती सुना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, ये जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शाम 6:05 पे आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:10 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल।

शाम 7:47 पर जिले की हलचल। श्रोता, हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का वक्त है 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9, 9:15 पर उर्दू समाचार खबरें।

रात्रि 10:45 पर आप सुनेंगे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा, रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे।

आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर, 7:15 पर और 7:52 पर और रात्रि 9:30 में आप सुन सकेंगे।

प्रणाम, ई आकाशवाणी के पटना केंद्र ह। अरुआ कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि जून के महीना में स्वदेशी C-295 विमान के पहला उड़ान के साथ ही भारत विमानन क्षेत्र में एगो बढ़न कामयाबी हासिल कैले बा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कहले हां कि यह समय देश में ऐसन 40 गो औरी विमान बनावल जा रहल बा। ऐसे सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्यम क्षेत्र औरी एरो स्पेस क्षेत्र के बढ़ावा मिली, रोजगार के नया अवसर पैदा हो रहल बा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प मजबूत हो रहल बा। श्री मोदी कहले हां कि ए महीना कोलकाता में 3 गो युद्धपोत दुनागिरी, संशोधक आ अग्रय के जलावतरण कैल जाई। भारत समुन्दर से लेके आकाश तक लगातार ज्यादे सुरक्षित आ आत्मनिर्भर बनत जा रहल बा। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चर्चा करत कहले हां कि ए बेरा ई आयोजन में दुनिया भर में 2500 से ज्यादे जगह पर भइल ह। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोग भाग लेले बाड़न। श्री मोदी कहले हां कि पश्चिम एशिया में लड़ाई नियन माहौल के देखत वहां के अपील पर कुछ जगह देशवासी लोग एकजुटता देखौलस ह आ सोना के खरीद औरी विदेशी यात्रा के कुछ समय खातिर टाल देले बा। श्री मोदी खुशी जाहिर कैले हां कि भारतीय लोग ए वैश्विक संकट के मिलजुल के मुकाबला कर रहल बा। श्री मोदी भरोसा जतौले हां कि जन भागीदारी के ए ताकत से देश मजबूत होई आ सफलता मिली। प्रधानमंत्री कहले हां कि सरकार देश के करोड़ों परिवार के दुर्घटना बीमा दे रहल बिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिल रहल बा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के चर्चा करत कहले हां कि ई विश्वविद्यालय एगो नया अवतार के रूप में ई भारत के भाग गढ़ रहल बा। श्री मोदी दो

0: वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर के उद्घाटन कैले रहले। श्री मोदी कहले हाँ कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ के पुरान परंपरा के फिर से जिंदा कैल गइल बा। ए पहल खातिर नालंदा विश्वविद्यालय के बधाई दिले हाँ आ दूसरा विश्वविद्यालय के भी ऐसन पहल पर विचार करे के निहोरा कैले हाँ। प्रधानमंत्री कहले हाँ कि जलवायु परिवर्तन के समस्या आज एगो बढ़हन चुनौती बन गइल बा। श्री मोदी देशवासी लोगन से पर्यावरण के बचावे खातिर अपील कैले हाँ। आखिर में प्रधानमंत्री पानी बचावे के बारे में कहले हाँ कि बरखा के पानी के एक एक बूंद बचावे के चाही। साथ ही कहले हाँ कि कैच द रेन अभियान में तनिको ढिलाई ना होखे के चाही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहले बाड़न कि मन की बात कार्यक्रम हर एक आदमी के भावना के आधार बन चुकल बा। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनला के बाद पत्रकार लोगन से बातचीत करत श्री नवीन कहले हाँ कि ई देश भर में अलग अलग जगह पर हो रहल सकारात्मक क्वेश्चन के सामने रखे के एगो बढ़हन मंच बा। भाजपा के बढ़हन नेता आ सांसद रविशंकर प्रसाद कहले हाँ कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम दुनिया के सबसे प्रभावी आ प्रेरणा देवे वाला कार्यक्रम बन गइल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के शुरुआत कैले हाँ। ए मौका पर सभा के संबोधित करत श्री चौधरी कहले हाँ कि हर महीना पंचायत स्तर पर ए दिवस के आयोजन से पंचायतन के पूरा विकास के रास्ता साफ हुई। वो कहले हाँ कि ग्रामीण विकास के कामन से ऐसे गति मिली। पंचायती राज विभाग की ओरी से हर महीना के अंतिम इतवार के सब ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस के आयोजन कैल जाई। एकरा साथ ही आकाशवाणी के पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाचार भई समाप्त भई।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता ये सुने फिल्म संगीत।

उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म पापा कहते हैं का ये गाना। इस गाने को लिखा तो जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण, कभी आपने सुना फिल्म सातवां आसमान में? इसी गाने के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स् देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः सञ्चेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इण्डिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि 40 विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से

0: लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षम न्यगादीत यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्रीमोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना सम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान्, यत्र INS दुनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
0: कोलकाता में INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीनां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयीकृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स् देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स् आफ् दि ब्लू होरिजन् प्रदत्तः।

0: संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ दि ब्लू हॉरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशल्स देशे भारतस्य यूपीआई तंत्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमति पत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेश मंत्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् संपूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मंत्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः। गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिक तैल वाहक पोतस्य उपरि ड्रोण आक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्य स्थानकेषु वायु प्रहाराः कृताः। अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 आरभ्यते। इति वार्ताः।
1: पटना से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एफएम बुलेटिन।
2: पटना से प्रसारित
3: ये आकाशवाणी पटना का विविध भारती केंद्र है। अब आप खालिद रशीद से एफएम पर समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्ध पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार यह आयोजन दुनिया भर में 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से देश मजबूत होगा और सफलता मिलेगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में यह भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करते रहने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि

0: मन की बात कार्यक्रम जन जन की भावनाओं का आधार बन चुका है। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी कार्यक्रम बन गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला उद्यमी योजना के तहत शेष बची लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपराध को लेकर सरकार की नीतियों को फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, जहानाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर भोजपुर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन 30 जून तक स्थगित कर दिया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने भी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। सभी स्कूलों में 4 जुलाई तक वर्ग 8 तक पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही होगा। FM पर समाचार समाप्त हुए।
1: हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र पटना से बोल रहे हैं, FM बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कुछ अपनी पसंद के फिल्मी गाने कार्यक्रम आप ही के गीत में। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म शिव शक्ति के इस गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। गीत शलील शैलेंद्र का है और संगीत आनंद मिलिंद का है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। ठाकुरबाड़ी रोड पटना से आप हैं अनुराग, पंकजा, आशीष, विपिन, आकाश, राजू, दिव्या, सोना और सौम्या। इसी गीत को सुनना चाहे फ्रेजर रोड पटना से निशा, पलक, निहारिका, संगीत नवांश और राजीव ने।

बरसते हैं, बादल है हम बरसते हैं, मीठी सुबह दिल की अगन हम तो बुझाएंगे। अरे हम जो यहाँ पे आए हैं।

आवाज़ सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों को फिल्म आपकी खातिर में, आप सभी श्रोताओं की पसंद पे। आप हैं ब्योरमोर पटना से दिव्यांश, शिवांश, चुलबुल, युग और उनके परिवार के सभी सदस्य, अनुराधा कुमारी, आकाश कुमार, रागिनी सिन्हा, संजय सिन्हा, ये गर्दनीबाग पटना से आप हैं। गांधी चौक रोपड़ से आप हैं हरदेव मीका, बलवेदर मीका और मीका बीरक।

0: किशोर कुमार साथियों का फिल्म आपकी खातिर के गीत के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप ही के गीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र पटना से बोल रहे हैं FM बैंड के 102.5 MHz पर। अब आइए सुनते हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
2: नमस्कार, राजेश हैं। हाँ, पहचान गए, क्या सोचे हैं? आज का दिन है, रविवार का दिन है और वायदे के अनुसार हम तो आ गए रोजगार कार्यक्रम लेकर। आपके फोन कॉल्स आए थे, ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे रोजगार कार्यक्रम के विषय में। हाँ, उसमें जो बातें कही जाती है ना, उसके विषय में आप लोगों ने अपनी अपनी जिज्ञासा जाहिर की है। सबसे पहले हम एक बार वैसे सुनने वालों को बता दें जिन्होंने आज से हमें सुनना शुरू किया है कि ये रोजगार कार्यक्रम जो है हम लेकर आते हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की।
3: तो आप अभी सुन रहे थे ICC वेमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुने प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से ममता का आंचल ये कार्यक्रम लेकर आ गया। आप सारे लोग अब तक जान चुके हैं और जिन्होंने आज से हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है उनको बता दें कि ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है, उनके लिए है जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है और वो समझ रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी है या बहुत बड़ी कुछ बीमारी हो गई है या उनके किस्मत में यही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है तो एक कोई बीमारी छोटी सी हो सकती है, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए और निश्चित रूप से आपको बच्चा होगा। और IVF पद्धति आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल पद्धति है वैसे कपल के लिए जिनको शादी के 2-3-4 साल हो गए अभी भी बच्चा नहीं है। और IVF भी अगर सही समय पर करवाया जाए ना तो सक्सेस रेट बहुत है, 10 में से 6-7 कपल को सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। इस कार्यक्रम ममता का आंचल में हम डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से बातचीत करते हैं, IVF विशेषज्ञ हैं और बहुत ही उम्दा IVF सेंटर है श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी भिकना पहाड़ी मोर पटना में, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम अपनी सोशल

रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार के अंतिम व्यक्ति तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे और वो इसका लाभ उठाए। आपसे भी आग्रह है कि अगर आपकी नजर में अगर कहीं भी कोई कपल है ऐसा, तो उन तक आप बातें पहुंचाइए। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में इस तरीके की समस्या है, बच्चा नहीं है आपके, बेटा बेटी या पतो किसी को भी बच्चा नहीं है, तो आप उन्हें ये नंबर जो हम दे रहे हैं दे दें या आप खुद बात कर लें। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, 9162562266, 9162562266। इस नंबर पर बात करें और समस्या का समाधान निकलवाएं। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हाँ इलाज होता है, इलाज कराएं और बच्चा पाएं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चकैयार हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर, आज हम इनको बुलाते हैं और सबसे पहला सवाल हम आपसे पहले

0: बच्चा नहीं है, आपके बेटा बेटी या पतो किसी को भी बच्चा नहीं है, तो आप उन्हें ये नंबर जो हम दे रहे हैं दे दें, या आप खुद बात कर लें। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, 9162562266, 9162562266। इस नंबर पर बात करें और समस्या का समाधान निकलवाएं। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हाँ इलाज होता है, इलाज कराएं और बच्चा पाएं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चकैयार हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर, आज हम इनको बुलाते हैं और सबसे पहला सवाल हम आपसे पहले बता देते करेंगे कि निसंतानता क्या होती है, एक बार फिर से वैसे कपल के लिए जो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं या जो नए जुड़े हैं हमसे उनके लिए। डॉक्टर श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: डॉक्टर श्रद्धा जैसा कि आपने सुना पहला सवाल, बिना लाग लपेट के निसंतानता क्या होती है, हमें बताएं एकदम घर के मेंबर की तरह।
1: बिल्कुल, ये जानना जरूरी है हर उस दंपति के लिए जो बच्चा की इच्छा कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप सही समय पे इलाज कराएंगे तभी आपको आपको जल्दी बच्चा ठहर जाएगा। तो निसंतानता उस दंपति को कहते हैं, वैसे दंपति को जिनके शादी के एक साल हो गए और पिछले एक साल से वो कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहते हैं।
0: अच्छा,
1: और अगर एक साल हो गया तो अब जरूरी है जांच कराना, जांच ये जानने के लिए कि कहाँ दिक्कत है, पुरुष में दिक्कत है, औरत में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है या बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है।
0: कारण बता रहे
1: हैं। बिल्कुल, अगर जो भी कारण हो अब आप जांच कराएं और इलाज कराना शुरू करें। लेकिन अगर दो साल हो गया है और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले और उन्हीं से इलाज कराएं। क्योंकि निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका बीमारी बेहतर समझेंगे, आपका सही इलाज करेंगे और सही समय पे इलाज करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा
0: जी,
1: उस दंपति को बच्चा ठहरने की जो क्षमता है वो घटते जाएगी। क्योंकि बच्चा ठहरने के लिए एक सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो उम्र होता है
0: जी, जी।
1: तो जैसे जैसे उम्र निकलता जाएगा बच्चा ठहरने का जो जो क्षमता होता है उस दंपति का वो घटता जाएगा,
0: कम होता जाएगा।
1: तो हाँ, सही समय पे आप अगर निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलते हैं और सही इलाज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको बच्चा ठहर जाएगा।
0: आपको बच्चा ठहर जाएगा मतलब डॉक्टर श्रद्धा ने साफ साफ कह दिया कि एक छोटी सी बीमारी है निसंतानता, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए जरूर इसका समाधान निकलेगा। बहरहाल ममता का आंचल ये कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम बता रहे हैं आगे से, हाँ अपनी तरफ से, और संकोच नहीं करना है, अगर थोड़ा सा भी कोई हाँ हिच है, कोई समस्या है तो आप बात कीजिए 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। हम आगे से नंबर दे रहे हैं इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि डॉक्टर साहिबा खाली होंगी नहीं होंगी या हम पूछे नहीं पूछे, देखिए बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं और रास्ता जरूर निकलेगा। एक बात बताते हैं, श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, हम जानते हैं आपका राजेश जानता है कि बहुत ही उम्दा संस्थान है, डॉक्टर श्रद्धा सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट के बीच में एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। जहां तक पैसे की बात है, अगर पैसे से कोई संकोच है, अमूमन पैसा मांगने में या पैसा नहीं होने पर संकोच होता है, तो अब संकोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, ध्यान से सुनिएगा, 24 महीने के अंदर आपसे पैसा लेगा धीरे धीरे टुकड़ों में EMI पर। आप इलाज करवाइए ना, संतान सुख प्राप्त कीजिए ना, पैसा तो होता रहेगा, पैसा जाता रहेगा और आपके गोद में आपके घर में किलकारी गूंजती रहेगी। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आपने तो ये सारी चीजें बता दी, निसंतानता कारण इलाज क्या है इसका, वो भी छोटे में बता दीजिए थोड़ा, अगर घर में भी अगर महिलाएं या पुरुष अगर।
1: बिल्कुल, निसंतानता का इलाज जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है लाइफस्टाइल से, यानी कि अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। जिनका वजन, अगर औरत का वजन ज्यादा है तो वजन कम कीजिए, अगर वो दंपति में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब लेता है तो उन चीजों को बंद करना होगा, घर की बनी हुई साग सब्जी खाइए, बाजार के जंक फूड्स जो होते हैं वो सब खाना बंद कीजिए, ताकि ये भी छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे बच्चा जो निसंतान दंपति अपनाए तो उनको

0: बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर ये सब भी आप कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो अब ज़रूरत है कि अब आप गोलियां खाएं। बहुत लोग को ये सिर्फ गोली सुई और इंजेक्शन
1: निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के बाद,
0: बिल्कुल निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के बाद, क्योंकि वो जानते हैं क्या सही गोली है, क्या इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चा ठहरने के लिए। तो अगर बहुत इनफैक्ट 70% लोग तो सुई दवाई से ही उनको बच्चा ठहर जाता है, 80% लोग को,
1: जी जी,
0: लेकिन वो 20% जिसको बच्चा नहीं ठहरा, मतलब अब उनका बीमारी गहरा है, तो अब उनको इलाज की जरूरत है। इलाज अब उनको हो सकता है कुछ छोटे दूरबीन के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको लैप्रोस्कोपी हिस्टरोस्कोपी कहते हैं, हो सकता है वो करना पड़े, हो सकता है उनको IUI करना पड़े। लेकिन जिनको इन चीज़ों से भी नहीं बच्चा ठहर रहा है, तो अब ज़रूरत है IVF कराने का। IVF एक बहुत ही सटीक तरीका है निसंतान दंपतियों के लिए बच्चा ठहरने का, और इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। जितने भी इलाज है आप गोली सुई और भी कुछ करा लीजिए, लेकिन IVF से बच्चा ठहरने का जो चांस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कोई दंपति अगर अपना IVF कराता है तो 60-70% लोग को बच्चा ठहर जाता है।
1: इसीलिए तो कहते हैं संकोच नहीं करना है, इलाज कराना है ना,
0: बिल्कुल
1: आवाज उठानी है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है। रास्ता आसान हो जाएगा और आसान होगा इस नंबर से जब आप डॉक्टर श्रद्धा से बातचीत करेंगी या करेंगे। 9162562266 9162562266। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फोन किया है और पूछना लाजमी भी है। बहुत जगह कहा जाता है कि सस्ते में IVF हो रहा है और बहुत जगह कहा जाता है महंगे में IVF हो रहा है, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने सुना है कि IVF पद्धति में थोड़ा खर्च होता है, तो क्या जो सस्ते में कर रहे हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या क्या क्यों कैसे सस्ते में हो रहा है?
0: देखिए, ये तो जानना पड़ेगा, सस्ता अगर कुछ हो रहा है तो वो मतलब जो IVF का सस्ता और महंगा क्या आप बोल रहे हैं वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जो इलाज करा रहे हैं उस चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है कि नहीं। सस्ता में ऐसा ना हो कि जो इंजेक्शंस जो कि IVF के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, कहीं उस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कहीं लैब क्वालिटी जो लैब मेंटेन हो रहा है कहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, क्योंकि IVF लैब को माँ का गर्भ बोला जाता
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो माँ का गर्भ जितना स्वच्छ होता है उसी तरह से IVF लैब को मेंटेन करना होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कहीं वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, या फिर कहीं जेनेटिक जो होता है सेफ्टी प्रोटोकॉल जो कि सबसे जरूरी और हर दंपति हर माँ बाप का हक है, कहीं वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है
1: जी।
0: अगर इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, इन चीजों का स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, मतलब वो IVF जो हॉस्पिटल है वो मेंटेन्ड है, वहाँ सही काम हो रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप इन सभी चीजों के जहाँ आप इलाज करा रहे हैं वहाँ इन सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं।
1: श्रद्धा, IVF एंड मैटरनिटी एक वाजिब सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, इसको अन्यथा ना लेंगी, क्या ये सारे मापदंडों पर खड़ा उतरता है?
0: बिल्कुल, हमने जो अपना हॉस्पिटल हमारा जो श्रद्धा IVF है इसमें गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट ARTI रूल है
1: जी,
0: हमारा हॉस्पिटल उसी तरह से बना है। PCPNDT का जो रजिस्ट्रेशन होता है हमने वो कराया है, और हम समझते हैं हर दंपति का दुख जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, इसलिए हम हर दंपति को जो उच्चतम जो स्तर होता है, जो ना हम इंजेक्शन के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं
1: जी,
0: ना IVF लैब का जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और हम जो भी करते हैं हर चीज पेशेंट को समझाते हैं ताकि पेशेंट समझ सके कि क्या इलाज हो रहा है, ताकि हम उनको सही इलाज कर पाए जिससे उनको अच्छा रिजल्ट मिले और जो पेशेंट भी सेटिस्फाइड रहे।
1: एक सवाल और, अगर पेशेंट जाता है क्लिनिक में तो उसको तो ये पूछने का हक है, पूछ सकता है ये सारी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर पेशेंट का हक है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपका खर्चा कितना होगा, उसमें कोई हिडन कॉस्ट छुपा हुआ खर्चा
1: exactly.
0: तो नहीं है
1: हाँ, हाँ.
0: और अगर ये जो खर्चा है उसमें उसका ब्रेकडाउन पता होना चाहिए हाँ. कि इस खर्चे में आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगी।

0: और कुछ अलग से अगर खर्चा होगा तो वो पहले दिन ही पता होना चाहिए, ताकि पेशेंट हर तरह से प्रिपेयर्ड हो और निसंतानता का इलाज उनके लिए बोझ ना हो, बल्कि ये रास्ता उनके लिए मधुर हो, ताकि जब बच्चा मिले वो और अच्छा खुशी का पल मिल
1: खुशी का पल मिले खुशी का पल मिले बिल्कुल सही है। देखिए, सारी बातें हम खोल के रख देना चाहते हैं ममता का आंचल इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी से डॉक्टर श्रद्धा हर सप्ताह नियम से आ रही हैं, वर्षों से, आपको जानकारियां देने, आपको सचेत करने। एक बात बता दें, पैसे की चिंता अगर है तो उसकी चिंता कीजिए नहीं, है ना। सस्ता या महंगा नहीं, क्वालिटी देखिए, का सुविधा मिल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। श्रद्धा आईवीएफ में 24 महीने में आप ईएमआई पर पैसा दे सकते हैं और वही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आपको मिलेंगी। बड़े बुजुर्गों, आपके लिए नंबर हम बता रहे हैं, पहले नोट कीजिए एकदम आराम से, 9162562266। और नंबर एक बार रिपीट कर रहे हैं, 9162562266। चलते चलते कुछ कहना है डॉक्टर श्रद्धा तो बोल सकती हैं, बताइए।
0: मैं ये कहना चाहती हूँ हर दंपति को जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, ये सफर डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपका ये सफर सुखद हो। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम चार कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थामेंगे और इस सफर में हम आपका साथ देंगे, ताकि आपको भी जल्दी संतान सुख प्राप्त हो।
1: और चलते चलते हम भी एक बात कहना चाहते हैं, चुप्पी किसी चीज का समाधान नहीं है, चुप्पी तोड़िए, विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से बात कीजिए और अपने लिए एक खुशनुमा जिंदगी तलाश लीजिए। और इसके लिए चलते चलते एक बार फिर से हम श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी का नंबर बताना चाहेंगे।
2: आपने अभी प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल सुना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुने प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
4: नमस्कार, राजेश हैं। हाँ, पहचान गए, क्या सोचे हैं, आज का दिन है, रविवार का दिन है और वायदे के अनुसार हम तो आ गए रोजगार कार्यक्रम लेकर। आपके फोन कॉल्स आए थे, ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे रोजगार कार्यक्रम के विषय में। हाँ, उसमें जो बातें कही जाती है ना, उसके विषय में आप लोगों ने अपनी अपनी जिज्ञासा जाहिर की है। सबसे पहले हम एक बार वैसे सुनने वालों को बता दें जिन्होंने आज से हमें सुनना शुरू किया है, कि ये रोजगार कार्यक्रम जो है हम लेकर आते हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से, चौंकिए नहीं, चौंक गए कि गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कब से आ गया। आ गया भैया आपके बच्चों के लिए। हमने पहले भी कहा था कि आप ही की फरमाइश थी कि हम गोरौल में कोई ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाएं, हाँ, जिससे हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का भला हो सके, खास करके युवतियों का और वैसे युवक का जो बाहर नहीं जा सकते फाइनेंशियली, हाँ, किसी कारण से बहुत कमजोर हैं या जाने में असमर्थ हैं। तो आ गया गोरौल में, पहले बीसी और बीबीए आया और अब गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एएनएम जीएनएम के कोर्स और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी एकदम दस्तक दे रहा है। आपको पता लगाने की जरूरत है। हाँ, जंदाहा वालों आप भी, महनार वालों आप भी, भगवानपुर तो एकदम सटले है, बगले में है, इसके अलावे हाजीपुर से भी लोग जा सकते हैं, पास में ही है, मुजफ्फरपुर वाले भी आ सकते हैं। गुणवत्ता, एकदम गुणवत्ता की गारंटी है। ये श्री राज ग्रुप का इंस्टीट्यूट है गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी के देखरेख में चलता है। बुधवार को आप सुनते हैं ना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम, जहां पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने, उसी ग्रुप का है ये। सिर्फ आपके लिए, आपके अनुरोध पर वहां खोला गया है, कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी। काहे कि हेल्थ सेक्टर में अगर जो जाना है ना, तो पढ़ाई के साथ साथ, क्लासरूम पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल का

0: करना बहुत जरूरी है, व्यवहारिक शिक्षा। और हम तो बार बार कहते हैं आपसे, कहते हैं ना, अरे सोचिए नहीं, कहते हैं ना, करे कि कोना बात, अरे वही कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। जी हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कीजिएगा ना तो नौकरी कर सकते हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्वरोजगार भी कर सकते हैं, हाँ आप उससे भी धनोपार्जन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, यानी नाम शोहरत पैसा सब कुछ लिया जा सकता है इससे। हम नंबर बता देते हैं, नोट कर लीजिए, जरूरत होगा ना तो फोन करके पूछिएगा। आ तो हम कहेंगे कि सीधे संस्कार नगर गोरोल चले जाइए, वहीं पर है गोरोल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नंबर है 9162413233, 9162413233, या दूसरा एगो नंबर बहुत आसान है 9155558888। और अब चलिए चलते हैं, आप एक बार फिर से डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं।
1: बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के लिए जहां प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि जो गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है, और आपने चर्चा की कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल खुलने वाला है या पटना में श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल इस ग्रुप का है, यहाँ प्रैक्टिकल या फिर आप पीएससी से एसोसिएट करेंगे उनको, तो जानना चाहते हैं कि क्या इस संस्थान के साथ हॉस्पिटल का होना आवश्यक है।
2: बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है, और धरातल पर है, सिर्फ कागज पर नहीं। एक बात ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को निश्चित रूप से अपना अस्पताल होना जरूरी रहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अपना अस्पताल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बेसिक चीजों की जानकारी होने के लिए सबसे पहले अपना अस्पताल होना चाहिए, और एडवांस के लिए एडवांस हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो बेसिक चीज के लिए अपना अस्पताल अगर नहीं रहेगा संस्थान के पास, तो बेसिक चीजें कैसे सीख पाएंगे। और खुद अब एक मैं डॉक्टर के होने के नाते मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र को अगर विकसित करना है तो उसको बेसिक चीजों को डे टू डे से ही, डे फर्स्ट डे से ही उसको ज्ञान दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह एडवांस चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं कहीं थोड़ी छोटी बेसिक चीजें भी बहुत बड़ा कारगर होता है मरीज को ठीक करने में। तो बेसिक चीज को बताना जरूरी रहती है। फंडामेंटल जितना भी, जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, फंडामेंटल जितने भी प्रक्रियाएं होती है नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, उसको मैं हम लोग सब लोग सबको उसको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपना अस्पताल होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, अगर रेगुलर क्लासेज और रेगुलर प्रैक्टिकल अगर चलता है
1: जी,
2: तो बच्चों में उत्साह भी बढ़ता है, जिज्ञासा भी बढ़ती है, और पढ़ने की ललक भी बढ़ती है। तो ये हमारा मूल मंत्र ही रहा है कि हम बच्चों को उन्नत शिक्षा के साथ साथ बेहतर प्रैक्टिकल और बेहतर क्लासेज देने का हमेशा काम कार्य करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा पूंजी है,
1: सबसे बड़ा पूंजी है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, इसलिए दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हेल्थ से संबंधित कहीं भी अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसका अपना अस्पताल होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लासरूम स्टडी के बाद अगर सामने प्रैक्टिकल आपको मिल जाए ना, तो आप में कंसेप्ट क्लियर बहुत जल्दी हो जाता है और आप उसका लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि फील्ड में जाकर के तो आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें ही आपको जाननी होंगी।
2: लगातार हम दो साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं गोरौल में, अब जाकर करके कंस्ट्रक्शन लगभग हमारे अनुकूल हुआ है, और तब से हमने इसको शुरुआत किया है। तो दोनों तरह फैकल्टी के कोर्सेज, जैसे बीबीए बीसीए का और उसके बाद पैरामेडिकल और नर्सिंग का, ये शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसका अभी भी हमारे अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जिसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो उन बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, कि हम बहुत जल्द उसको पूरे कर लेंगे और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। सुनहरा भविष्य पैरामेडिकल के साथ, नर्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पैरामेडिकल को और नर्सिंग का क्षेत्र को ऑप्ट कीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा मांग वाली क्षेत्र है और सबसे सहज और सुलभ आपको मुकाम तक ले जाता है। नौकरी के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो बच्चों के लिए अभी के

0: में नर्सिंग का क्षेत्र है।
1: यही सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इनका कंफ्यूजन क्लियर कर दें, ये जो संस्थान सुन रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार में आप सुनते थे ना एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उसी ग्रुप का और सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्री राज ग्रुप, जो कि पटना में बुधवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम। पैरामेडिकल है पारस, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बातचीत करनी चाहिए, गार्जियंस आपके लिए भी मैं बात बोल रहा हूं, माता पिता बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो 9162413233 डॉक्टर साहब का एक नंबर ये है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155 55 हाँ 8888 यानी 9 1 4 2 5 और 4 2 8। और ये संस्थान है जो है अपना गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोरौल स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा पीएससी के तरफ बढ़िएगा तो संस्कार नगर है। अगर आप गोरौल स्टेशन से आ रहे हैं तो दाएं बाएं तरफ आपको ये संस्थान पड़ेगा। डॉक्टर साहब रोजगार से संबंधित बातें कुछ लोगों ने पूछी है, शंका व्यक्त किया है कि क्या यहाँ गोरौल जैसे छोटे जगह से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या बीबीए का कुछ भी, तो क्या रोजगार मिलने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी, यानी कि संस्थान गांव का है तो।
0: हाँ अच्छा, देखिए ये एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों भी आपको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कोई जगह छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी मान्यता होती है और मान्यता सरकार देती है। हमारा जो काम होता है, कॉलेज का जो काम होता है, सरकार के करिकुलम को पूरा करना, सरकार के कोर्स को जो सिलेबस है उसको पूरा करना, और सरकार का काम होता है परीक्षा लेना और सर्टिफिकेट देना, और बच्चों तुम्हारा काम है पढ़ करके पास करना, पढ़ाई करके पास करना, ये तो आपका काम है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं, अगर हमारा सिलेबस जितना है उसे हम पूरा कराते हैं, अगर तुम क्लास कर लिया हाँ। तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, एक बात है। दूसरी बात, तुम जो है वो रिकॉग्नाइज संस्थान में एडमिशन लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा सरकार लेगी और सरकार सर्टिफिकेट देगी, इसके लिए भी उसमें सरकार उसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि कहाँ का इंस्टीट्यूशन, उसमें ये लिखाता है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त
1: जी।
0: और उसके बाद ये लिखा रहता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रहता है। तो यह सब लोग को पता है कि बिहार स्वास्थ्य जब खुद सर्टिफिकेट देगी तो इसमें ई फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए निश्चिंत होकर करके आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं,
1: एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और भैया राजेश तो हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और उसमें अगर हेल्थ में आपने पढ़ाई कर ली है ना तो स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, वैसे संस्थान से पढ़ाई की अगर आपने हेल्थ सेक्टर में जहां क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आपको प्रॉपर सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब का नंबर हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 9162413233 और 9155558888 और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम याद रखिए गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री राज ट्रस्ट ग्रुप का ये संस्थान है, श्री राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का सिस्टर कंसर्न है जो गोरौल में खोला गया, जिस कैंपस में एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बीसी और बीबीए के लिए है उसी कैंपस में है ये, उसी कैंपस में है ये, और आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। बहरहाल एक सवाल डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पैसे की उस तरीके से बहुत नहीं है, बहुलता नहीं है, क्या जो मिलेगा 4 लाख रुपया उसी में हमारा ये तीनों कोर्स अगर हम कोई भी करना चाहें तो हो जाएगा क्या?
0: देखिए दो कोर्स में है, इसमें बिहार सरकार ने दी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें से है जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है
1: जी।
0: एएनएम को डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत रखा है
1: हाँ।
0: तो उसमें बिहार सरकार अनुदान नहीं देती है हाँ, उसमें स्कॉलरशिप मिलता है
1: हाँ।
0: स्कॉलरशिप तीनों में मिलता है, उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पैसे मिलते हैं जीएनएम और बीएससी में
1: हाँ।
0: लेकिन बाकी एएनएम जो है वो सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता है
1: अच्छा।
0: जीएनएम में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उसके बाद स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं, बीएससी में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से

0: यही व्यवस्था सरकार ने बनाई है और तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको भी चलना होता है।
1: हमको भी चलना होता है, लेकिन हम चल के आ गए गुरौल आपके पास, तो गुरौल में आ गए हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम सारे कोर्सेज को, और पहले से बीबीए और बीसीए है एसएस प्रोफेशनल में, कैंपस एक है, आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो आज के रोजगार कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आए और जानकारियां दिए और चले गए। अब जिम्मेदारी आपकी, आप क्या करेंगे? हम तो कह ही सकते हैं ना, आपसे कह सकते हैं युवा साथियों, माता पिता से कह सकते हैं, बड़े बड़े भाई बहन से कह सकते हैं, और अपने रेडियो के माध्यम से विशेषज्ञ बुलवा के कहवा सकते हैं। तो वो तो अपना कर्म कर लिए, अब मर्जी आपकी है। गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाइए, ज्यादा जानकारी लीजिए और नंबर लिख लीजिए, अगर जो जरूरत हो तो पूछ लीजिएगा, 9162413233 9162413233। और दूसरा नंबर है 9155558888 9155558888 ये नंबर है। गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से ये कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे थे। टेक्निकल पढ़ाई हम बार बार
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए आपको लिए चले दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस टी20
4: क्रिकेट वर्ल्ड कप। गुड मैच ऑफ एशली गार्डनर स्मृति, एंड दैट मेक्स स्मृति मोर कॉन्शियस दिस टाइम, शी ड्राइव्स डांसेस डाउन द विकेट, प्लेज ऑन फुट फुल टॉस एंड इनफ टाइम टू क्रॉस फॉर अ सिंगल। सो शेफाली ऑन स्ट्राइक 22 विदाउट lost 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
5: ये लगा आभा का छक्का.
4: This was outside the off stump, loose delivery, and Shefali is not going to give away anything on that, and she actually targets the loose delivery and she was on to the target, launches it over the long off boundary for six. So 1-6 and 1-4 off Ashleigh Gardner. She is one of the most successful bowler of Australia, and they were actually trying, but Shefali Verma comes on top of the ball and launches it over for a six. That moves Indian score to 28 with 1-6 and 4 boundaries and 3.5 overs, 28 without loss. Again in the air, but lands safely on the left hand side of Ashleigh Gardner, and that brings to end of Ashleigh Gardner's over. She has given 13 runs in that over, and Indian score 29 without loss at the end of 4.
6: कमाल की बल्लेबाजी रही है इस ओवर में शेफाली वर्मा की। अश्विन, जिस तरह से फ्लाइटेड गेंदों पर उठाकर ऊंचे स्ट्रोक्स खेले हैं शेफाली वर्मा ने, पहला मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए, और दूसरा तो कमाल का स्ट्रोक था कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने स्पिन गेंदबाजी पर जिस तरह से आक्रमण किया है वो दर्शनीय है। बांग्लादेश के विरुद्ध भी जो 53 रन की पारी उन्होंने खेली थी 24 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था, उसमें भी हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजी को वी में उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया है, पावर प्ले में, जबकि घेरे में ज्यादातर फील्डर्स हैं, घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स हैं, और मिड ऑफ के ऊपर से जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं वो दर्शनीय है, काबिले तारीफ है, और बिल्कुल सही है इस मुकाबले में भारत के लिए जिस तरह से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है भारत को। तो भारत का स्कोर 29 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद। शेफाली वर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 14 रन पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद, और स्मृति हैं 15 पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद। नए ओवर की शुरुआत पैरी करती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन, लूसी हैमिल्टन की जगह पर पैरी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। रनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, आत्मविश्वास में आते हुए ये दोनों बल्लेबाज, और प्रहार करते हुए, आक्रमण करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के ऊपर, और यह जरूरी है और एक साझेदारी की जरूरत है भारत को। 4.1 ओवर के बाद भारत 29 बिना किसी विकेट पर। शेफाली वर्मा है सामने पैरी के, ओवर द विकेट, लंबी ऊंची कद की पैरी, मिडल और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद फ्लिक करना चाहती थी, बीट हुई, मगर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। भारत का स्कोर हुआ 30 बिना किसी विकेट पर। अच्छी क्रिकेट यहां पर लॉर्ड्स के इस मैदान में, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला,

0: इस मुकाबले को जीतना ही होगा और जीत के लिए चाहिए एक अच्छा लक्ष्य जो कि ऑस्ट्रेलिया को देना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सके और इसके लिए जरूरी है साझेदारी का होना और गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण का करना। गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर करना चाहती थी, बीट हुई। डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी करती हुई पहली 114.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फेंकी हुई गेंद, हालांकि हवा में ज्यादा स्विंग नहीं और टिप्पा खाने के बाद भी गेंद सीधी रही, मगर स्टीयर करने के प्रयास में बीट हुई थी शेफाली वर्मा, जो कि इस समय 9 गेंदों का सामना करने के बाद 14 पर बल्लेबाजी कर रही है। 30 भारत का स्कोर 4.2 ओवर के बाद। पेरी की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है वहां पर। जब तक गार्डनर थ्रो करेंगी, बेथमोनी के दस्तानों में एक रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 15-15 दोनों का स्कोर। स्मृति और शफाली का अच्छी बल्लेबाजी करती हुई 4.3 ओवर के बाद भारत 31 बिना किसी विकेट पर। स्मृति सामना करेंगी पेरी का। इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं।
1: के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

मशीन गन से भारी तादाद में निकलती गोलियों ने कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोल दिया। उधर से दुश्मन सेना के तेज होते कबायली हमले और इधर सिख रेजिमेंट की डी कंपनी के धाकड़ जवान जिनके कदमों की आहट

0: की वादियों में हलचल मचा दी। शत्रु लगातार भारतीय सेना का निशाना बनते रहे और उनके कई बंकरों, असलाहों, राइफल्स, मशीन गन्स और गोला बारूद पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के हमले की जद में आ रहे कई दुश्मन सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। दोनों ओर से होती घमासान जंग में दुश्मनों के हौसले पस्त थे, क्योंकि बिशन सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी को हर दिशा से धावा बोलने का एक अचूक मंत्र दिया। वो स्वयं बाईं तरफ से हमला बोलते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे और इस अफरा तफरी के माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मशीन गन और फिर अपनी संगीन से दुश्मनों को मौत की घाट उतारा। इस गुत्थम गुत्था में उनके शरीर में भी बहुत चोटें आईं और शरीर से बहुत सारा खून बह गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन के 5 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की ही भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच
1: जा रहे मैच का आंखों देखा हाल सुना। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बेटा और दो बेटी के बाप अरुण बाबू।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आज कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमान क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को तेजी मिल रही है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारतीयों के सामूहिक प्रयास से हम विकट स्थितियों में भी हमेशा विजयी रहेंगे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों

0: के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में ये भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए।
1: जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन की भावनाओं का आधार बन चुका है। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है।
2: पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने एक शब्द दिया है कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी कार्यक्रम बन गया है।
3: प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। और आपने देखा होगा, इसमें राजनीति की एक बात नहीं कर प्रेरणा की बात कर देश के विभिन्न भागों में जो स्वस्फूर्त प्रेरणादायी काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते।
0: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। हमारे बांका संवाददाता ने बताया कि जिले में 1123 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अररिया जिले के 19 केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। अन्य जिलों में भी कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हो गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की

0: शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
1: आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था खड़ा किया है कि साल में 12 बार बैठक होगी। साथियों, अभी तक टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 2 अक्टूबर कभी 26 जनवरी, ये सब हम लोग समय तय करते थे। लेकिन अब पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक जो अंतिम इतवार होगा उस दिन पंचायत विकास दिवस मनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला रोजगार योजना के तहत शेष बचे लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी।
1: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई है उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपराध को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा।
1: बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। अब हम छोड़ नहीं सकते, जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया। एक रिपोर्ट।
2: महिला हितैषी ग्राम पंचायत विषय को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाएगा। मधुबनी जिले के महिनाथपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है, इनका विकास अत्यंत आवश्यक है।
3: पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि हमारा जो पंचायत है सबसे नीचे की इकाई और सबसे मजबूत इकाई सशक्त हो, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित हो और हमारा पंचायत इकाई मजबूत हो।
2: दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन पथ निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। मधेपुरा के मानिकपुर पंचायत में जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शेखपुरा जिले की सभी 49 पंचायतों में पंचायत विकास शिविर आयोजित किया गया। शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया समेत विभिन्न जिलों के पंचायतों में विकास दिवस पर शिविर लगाकर पंचायतों में छूटे हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई और पंचायतों के समग्र विकास का संकल्प लिया गया। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बक्सर, भोजपुर, भभुआ, पटना, जहानाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर भोजपुर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन 30 जून तक स्थगित कर दिया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन

0: आवेदन किया है। सभी स्कूलों में 4 जुलाई तक वर्ग 8 तक पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही होगा। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊआ कटहरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। संबंध में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से कई हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण तथा सामग्री बरामद की है। 28 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत आज विभिन्न जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बांका, सुपौल, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में पोलियो मुक्त अभियान के तहत बच्चों को जीवन रक्षक दवा की 2 बूंद पिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज दिघल बैंक प्रखंड के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने डोडरा पुल का अप्रोच जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। बांका जिला कार्यान्वयन समिति की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
1: जिले में मुहर्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी, जबकि जुलूस मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। राज्य में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जी रामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुंगेर के जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और भागलपुर के 41 प्रतिभागी शामिल हुए। बिपार्ट पटना के मास्टर ट्रेनरों के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और ऑनलाइन मॉड्यूल की जानकारी दी। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने कहा कि प्रशिक्षण किसी भी नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन की आधारशिला है और यह अधिनियम ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विश्ववर्ती श्रावणी मेला और कांवर यात्रा की तैयारियां जिले में तेज हो गई है। मुंगेर से गुजरने वाले 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पेयजल, स्वच्छता और स्नान संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 295 चापाकलों की मरम्मत शुरू कर दी है। इसके अलावा 30 नए चापाकल लगाए जाएंगे। 150 अस्थायी तथा 20 अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार ने गैर मजरूआ जमीनों की अवैध खरीद बिक्री रोकने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिले के 18,741 प्लॉटों को रोक की सूची में शामिल किया गया है। जिला अवर निबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि सूची में शामिल किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी और निबंधन से पहले सभी भूखंडों का विभागीय रिकॉर्ड मिलान किया जाएगा। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अब भी बड़ी संख्या में लाभुकों की KYC और आधार सीडिंग लंबित है। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1,49,301 पेंशनधारियों में से 27,167 ने KYC नहीं कराया है, जबकि 1,707 लाभुकों का आधार बैंक के खाते में से लिंक नहीं है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक

राजीव रंजन ने सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन इस बार जमालपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। IRCTC के अनुसार 14 जुलाई से शुरू होने वाली 13 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी, रामेश्वर कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मीनाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल पर जिले में LPG आधारित आधुनिक शवदाहगृह स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नगर निगम को इसके लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने 45 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा चुका है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। परियोजना पूरी होने पर लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह 3 जुलाई को किला परिसर स्थित परीक्षा गृह में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति सह राज्यपाल सैयद अता

0: योजना पूरी होने पर लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 3 जुलाई को किला परिसर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति सह राज्यपाल सैयद अता हसनैन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान द्वारा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बिलिया गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद के उपयोग तथा नियमित मिट्टी जाँच के महत्व की जानकारी दी। बख्तियारपुर में आयोजित बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तारापुर के सिनितिक केसरी ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। डीएवी बोकारो के छात्र सिनितिक की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एडीआर भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी।
1: आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं?
0: देखो चौबे, औकात में रहो।
1: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
0: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
1: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
0: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
1: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
0: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
1: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
0: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
1: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
0: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाब जादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू। अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
0: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई।
1: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
0: हो जाए हाँ, यहां मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए हाँ।
1: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
0: चक्कर, हसीना का चक्कर।
1: तो ये बात है, अमा भाई आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
0: ओफो।
1: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
0: अरे अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है, यहां तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
1: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
0: अरे खजूरी तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला।
1: थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
0: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ।

0: बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ, गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए?
1: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
1: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
0: हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे।
2: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
1: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
0: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
2: नहीं तो?
0: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
2: हाँ हाँ और क्या,
0: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
2: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर?
0: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
2: जब आप गाना गा रहे थे?
0: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
2: हाँ हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
0: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
2: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
0: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
2: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की?
0: ओफो,
2: देखिए देखिए परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
2: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
0: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
2: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
0: आपने मुझे बुलाया साहब?
3: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
0: धन्यवाद साहब।
3: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
0: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
3: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
0: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
3: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
0: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष।
3: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
0: जी आपकी मेहरबानी से।
3: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
0: जी मैं कुछ समझा नहीं।
3: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर, माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
0: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ? आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
3: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
0: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
3: फिर क्या हुआ?
0: फिर मन में उमंगे
3: पतंगे,
0: नहीं साहब उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
3: फिर
0: कुछ नहीं साहब।
3: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
0: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है। मुझे

0: भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने
1: फिर
0: लगी।
1: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: नहीं, पैर कुर्सी के नीचे।
0: सॉरी सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
1: कैरी ऑन कैरी ऑन।
0: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
1: ओहो बताइए ना,
0: किसी परी के साथ उड़ रहा हूं, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूं।
1: क्या बातें कर रहे हो?
0: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
1: ओहो, आप भी किस मौके पर कहां की बात ले बैठे? कहां गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
0: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा, प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
1: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
0: ओह सॉरी सर।
1: और वो गाना?
0: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अरे उठो भी, क्या सोते में लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
0: अरे बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
2: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
0: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
2: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
0: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
2: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
0: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक मीठी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अगला गाना फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाज़ों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज़ में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज।
1: यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया।

0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की

0: क्षेत्रों में भारत स्पेशल सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख

0: किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 7 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण

0: Target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाक़ियात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में ख्वातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अख्वामी मैच में मेज़बान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज़ जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जहां मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशेल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफ़ायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तम से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हेरमिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खत्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जराइम के तईं अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यह पुरवक़ार एजाज दिया। वज़ीर-ए-आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलमु मईशत आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और इस्माल आइलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तईं उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں

0: नेज आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वज़ीरे आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक़वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इदा किया।
1: सेशेल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी रियालिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है, जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खुसूसी एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरिकी अफ्रीका के इस जज़ीरा-नुमा मुल्क के 3 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ विक्टोरिया पहुँचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वज़रा ने माहौलियाती तहफ़ुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिल तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ़ और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरतेहाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुज के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास्ता

में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास्तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाजह रहे कि मगरबी एशिया तनाज़े की वजह से यहाँ खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गईं, जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। पेरिस में एफिल टावर और लुएर म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुजवी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गाँव के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। अहमदाबाद में आज ABC मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है।
और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल टी20 बैन अल-अक्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155

0: रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: श्री चरनी की ये एक अच्छी बात है कि वो स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करती हैं, बल्लेबाज को ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं देती हैं और गुड लेंथ पर उनका टिप्पा रहता है अराउंड द विकेट। ये गेंद इस बार इस गेंद में फ्लाइट थी, ओवर पिच जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर पेरी ने और गैप मिला और गेंद सीमा रेखा।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
2: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
3: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।
1: आया, आया।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था,

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेड्स मनु, रांझणा, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओ, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

तकलीफें अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: फिल्म किनारा। फिल्म मासूम।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: फिल्म फिर कब मिलोगी।

0: और फिल्म नमकीन। आज का छाएगीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि।

0: भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: Meri Seshel ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi आपस